आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जीवन में प्रेम, सुंदरता और मधुर भावनाओं का संदेश देता है फूल और पुष्प। फूल अपने रंगों और खुशबू से वातावरण को खूबसूरत और सुंदर बना देते हैं, वैसे ही प्रेम और अपनापन भी जीवन को खुशियों से भर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में स्नेह, सरलता और सकारात्मकता बनाए रखने से हर दिन और हर मन सुंदर बन सकता है।

मेरा मन तेरा प्यासा, ये गीत हम आप सुनेंगे। ये गीत प्रेम और अपनत्व की गहरी भावना को व्यक्त करता है। ये गीत मन की उस चाहत को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपने प्रिय के स्नेह के साथ की कामना करता है। प्रेम जीवन को मधुर बनाता है, रिश्तों में विश्वास और अपनापन भरता है। ये प्रेम ही है जो हमें ये सिखाता है कि सच्चा स्नेह जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना देता है, और यकीनन दुनिया प्रेम पर ही टिकी हुई है। तो चलिए सुनते हैं रफी साहब की आवाज में ये गीत।

जीवन और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में हमें आगे बढ़ने, सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जबकि प्रेम जीवन में मिठास, अपनापन और खुशी भरता है। प्रेम देखा जाए तो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि परिवार, मित्रों और समाज के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना भी व्यक्त करता है। प्रेम से जीवन में विश्वास, सहारा और सकारात्मकता आती है। जिस जीवन में प्रेम होता है वो अत्यधिक सुंदर, अर्थपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। इसी प्रेम और सद्भाव के साथ जीना ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। और हम आप भी तो प्रेम के इसी डोर से बंधे हुए हैं, तो इसी के साथ भोर सुहानी का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि तदनुसार 22 मई 2026 सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब वक्त है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर इंग्लिश न्यूज, 6:10 पर कार्यक्रम अर्पण सुन पाएंगे। सात बजकर दस मिनट का समय होगा गोल्ड सुप्रभात का, 7:30 पर आज सवेरे, 8:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी, 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, 11:10 का वक्त होगा तस्वीर का, और आज तस्वीर में आप सुनेंगे सापूतारा गुजरात के बारे में।

12:10 का वक्त होगा एक कदम बुजुर्गों की ओर कार्यक्रम का। एक बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। तीन बजकर दस मिनट पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मन भावन। चार बजकर तीस मिनट का वक्त होगा कार्यक्रम परिक्रमा का और 5:10 पर आप सुनेंगे पानी पर लिखी कहानी। गुमराह स्वर कुसुमलता, परिकल्पना निर्देशन प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे सांझ ढले। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान

0: 51 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulis, in New Delhi today. Mr. Christodoulis arrived in New Delhi yesterday from Mumbai. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. The President of Cyprus is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Constantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vaftis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulis to India in his current capacity. The first international Big Cat Alliance summit, which was scheduled to take place in New Delhi on 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। साथियों, मन में जब ये भाव आ जाए तो फिर कोई उलझन हमें देर तक घेर नहीं सकती। और अगर बात करें हम श्री कृष्ण और उनकी मुरली की, तो उनकी मुरली की धुन तो जैसे सब पर जादू कर देती थी। उनकी बाल लीलाएं हमें मासूमियत सिखाती हैं, तो गीता का ज्ञान हमें जीवन जीने की राह दिखाता है। और शायद यही वजह है कि हर युग में, हर दिल में कान्हा बस

मन करे कृष्णा कृष्णा, धड़कन करे कृष्णा कृष्णा। साथियों, कृष्ण जिसे भी छू लेते हैं उसे अपने रंग में रंग देते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है और इस कारण जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो अखंड आनंद के साथ हम भी जुड़ जाते हैं।

0: KIR at 90.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
3: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
2: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
3: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
2: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड आरोप।

साथियों, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी विपत्ति के समय आपको आपके ये सात गुण बचाएंगे, और ये सात गुण हैं आपका ज्ञान या आपकी शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, आपकी सच बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं हम फिलहाल 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम अर्पण के जरिए, और 6:34:44 पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूं मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण, और अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय गान का। तो आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस पाठ को और लेते हैं आनंद भक्ति रस का।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना, इसे बालकांड से लिया गया था। और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, क्योंकि कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि 7:10 पर कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में आपसे एक बार फिर मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को आज्ञा दीजिए। और अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में। समाचार बुलेटिन के बाद आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।

0: अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्य उत्तरे अवदत् यत् राहुल गांधिनः नकारात्मक राजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं अमेरिकाञ्च स्वाभाविक सहभागी रूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वांटम कम्प्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्र लुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादक द्रव्याणां क्रय विक्रयणं अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रित मत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्च न्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषण दलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलं आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषण संस्थाः शंकयन्ति। एकोनविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञात भुशुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरंगा तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडा चक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलं 91 धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33,200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 44,100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोज, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि

0: या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का यह फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटन्स के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road, Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders.

दोस्त, सुबह अगर चाय की खुशबू से शुरू हो और खिड़की से छन कर आती हल्की हल्की हवा हो, बैकग्राउंड में बज रहा हो 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कोई गोल्डन क्लासिक, तो यकीन मानिए पूरा दिन खूबसूरत बन जाता है। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात, और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जनाब कहते हैं कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि साथ निभाने से बनते हैं। और जिंदगी की राहें यकीनन आसान नहीं होती, लेकिन अगर कोई हमसफर दिल से हमारे साथ चल रहा हो तो फिर हर मोड़ खूबसूरत लगने लगता है। फिलहाल 7:15 पर हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां एक चीज दिमाग में आ रही है जिसे हम कहते हैं रीडिंग हैबिट, यानी पढ़ने का शौक, जो ऐसा लगता है कि अब लगभग खत्म सा होने लगा है बच्चों में। और बच्चों की बात खास तौर से कर रहे हैं हम, क्योंकि साल का ये वो समय है जब स्कूल्स में समर वेकेशंस रहती हैं और रीडिंग हैबिट को कल्टीवेट करने का ये बेस्ट टाइम होता है। गर्मियों के लंबे दिनों में कुछ वक्त किताबों के साथ बिताया जाए तो बच्चों में क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और समाज के मौजूदा मुद्दों और पहलुओं पर समझ और संवेदनशीलता में भी सुधार होता है, जो हमारे इन भावी नागरिकों को आने वाले समय में सशक्त नेतृत्व प्रदान करने का कैलिबर भी देता है और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाने में मदद भी करता है। तो फिर आज पेरेंट्स इन छुट्टियों में नन्हे शैतानों को पॉजिटिव चीजों में एंगेज करने की कोशिश करें और उनमें रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देने की कोशिश करें। चेंज आपको डेफिनेटली

दिखाई देगा। फिलहाल हम चेंज करते हैं अपनी बात को और आपको सुनवाते हैं लता जी और मन्ना डी का गाया ये क्लासिक सुपरहिट सॉन्ग फिल्म श्री 420 से। और 7:17 पर आप हैं इस वक्त 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ अपने फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात में। और गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

7:25 पर एक बार फिर स्वागत है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो में, जिसका नाम है गोल सुप्रभात। और गोल स्टूडियो से आज इसमें आपका साथ दे रही हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और वक्त चूंकि ज्यादा नहीं बचा है, तो आपको जल्दी से मैं ये बता दूं कि आज का दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तौर पर अपनी एक खास पहचान रखता है, और आज ही मनाया जाता है पारसी धर्म का एक शोक दिवस, जिसे कहते हैं जरसोस्त नो दीसो। इनके बारे में हम बात करेंगे म्यूजिकल जिंदगी में 8:45 पर और 9:10 पर। दिल का मेल बॉक्स आप सुनेंगे 10:30 और 11:10 पर। तस्वीर में आज आपको गुजरात में सापुतारा हिल स्टेशन की सैर पर लेकर चलेंगे। दोपहर 2:30 से 3 आप सुनेंगे प्रोग्राम उन्नत किसान, जिसमें आज का विषय रहेगा कृषि क्रियाओं द्वारा ऊसर भूमि सुधार, और इसमें शामिल होंगे एक्सपर्ट डॉक्टर खजांची लाल शर्मा, जो पूसा संस्थान नई दिल्ली से हैं। शाम 6:30 आप सुनेंगे मार्केट मंथ।

रात 8:10 पर मधुरिमा, रात 10:30 हर सिंगार और रात 11:10 पर गीत मेरे मन मीत। और गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना बहुत ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए हर थोड़ी देर में। आज के अधिकतम तापमान के बारे में मौसम विभाग तो यही कह रहा है कि 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की गति रहेगी करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटा और गर्मी इसी तरह अभी भी हमें थोड़े टाइम तक और परेशान करेगी। लेकिन हर परेशानी में अगर आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर रास्ता भी अपने आप आगे बनता जाता है। फिलहाल आशा जी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में खूबसूरत गाना आपकी नजर करते हुए मैं लेती हूं आपसे इजाजत। गोल सुप्रभात से 8:45 पर आपसे फिर मिलूंगी म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और इस गाने के बाद आप सुनेंगे न्यूज मैगजीन आज सवेरे।

0: नमस्कार सुप्रभात श्रोताओं, सुबह की सुनहरी किरणों, ताजी हवा और नई उम्मीदों के साथ स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे में। उम्मीद है कि आपका आज का दिन खुशियों, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरा साथ दे रही है मेरे सहयोगी सरबजीत कौर। श्रोताओं, अगले कुछ पलों में हम बात करेंगे आज के प्रमुख खबरों की, जानेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाओं के बारे में, उन महान हस्तियों को याद करेंगे जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश को नई दिशा दी, और साथ ही सुनेंगे आपके पसंदीदा सदाबहार गीत। तो श्रोताओं, तैयार हो जाइए जानकारी, संगीत और यादों से भरे इस खूबसूरत सफर के लिए। सरबजीत, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
1: जी बिल्कुल वैष्णवी, लेट्स बिगिन द न्यूज प्रोग्राम विद द बिग न्यूज आइटम्स ऑफ द डे टुडे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा।

0: है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति की यह यात्रा पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के एक वर्ष के भीतर हो रही है। यह दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: After that update from our correspondent Vaishnavi, let's move to the next big news of the day, the first International Big Cat Alliance IBCA Summit, which was scheduled to take place in New Delhi on June the 1st, has been postponed to a later date. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, IAFS4, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said, following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders.
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। रेलवे ने कहा कि वे यात्रियों, ट्रेनों, स्टेशनों और व्यापक रेल नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और सीसीटीवी सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ा रहा है।
2: एंड टू गिव अ पुश टू टूरिज्म, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द अपग्रेडेड गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन फॉर द 2026-27 टूरिस्ट सीजन, इंट्रोड्यूसिंग एनहांस्ड ऑनबोर्ड अम्यूनिटीज एंड प्रमोशनल ऑफर्स फॉर ट्रैवलर्स। इन अ स्टेटमेंट IRCTC सेड दैट द गोल्डन चैरियट, नोन फॉर शोकेसिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज एंड सेनिक लैंडस्केप्स ऑफ साउथ इंडिया, रिटर्न्स इन अ रिफ्रेश्ड फॉर्म कंबाइनिंग ट्रेडिशनल एलिगेंस विद मॉडर्न कम्फर्ट्स। इट एडेड दैट द 3 क्यूरेटेड आइटनरीज हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द अपकमिंग सीजन।
0: श्रोताओं, मई की तपती दोपहर और लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने भीषण लू को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में तापमान सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार पांचवें दिन कल बांदा जिले में देश का सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
3: राज्य में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जहां पारा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा तप रहा है, जहां अधिकांश इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। बांदा देश में सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 47.6 डिग्री था, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। रात में भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंचने के कारण लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने की चेतावनी भी दी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: Meanwhile, the health department in Uttarakhand remains alert in view of the continuously rising temperatures and the impact of heat wave conditions in the state. Special advisories have been issued for children, the elderly and working individuals to take necessary precautions. Medical officials have appealed to people to avoid going outdoors unnecessarily between 11 a.m. and 4 p.m. They have also advised maintaining adequate hydration throughout the day by consuming sufficient water and other fluids to prevent dehydration.
0: पुलवामा आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की

0: blood or body fluids of a suspected or confirmed Ebola patient must report immediately to the airport health officer or health desk before immigration clearance. The authorities have further stated that any traveler developing such symptoms within 21 days of arrival should promptly seek medical care and inform healthcare authorities about their travel history. Passengers have been advised to cooperate with health screening and public health measures to ensure safety and compliance with international health regulations. With Dipen, Anupamish, Akashwani News, Delhi.
1: युवा कार्य और खेल मंत्रालय पूरे देश में राष्ट्रमंडल खेल दिवस मनाने के लिए फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 75वां मेगा संस्करण आयोजित करेगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया 24 मई को अहमदाबाद से इन समारोह की अगुवाई करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की भारत की मेजबानी के संबंध में जनता की भागीदारी को बढ़ाना है और साथ ही देश की दीर्घकालिक ओलंपिक महत्वाकांक्षा की दिशा में गति प्रदान करना है।
2: And now let's take a quick peep in the world of sports. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad last night, chasing a target of 230 runs sent by Gujarat Titans. Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Earlier, put into bat first, Gujarat Titans posted 229 runs for the loss of 4 wickets in the stipulated 20 overs. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad at 7:30 p.m.
1: श्रोताओं, अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी में 13 वर्षों बाद 15 मई से नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। सरकार द्वारा कराए गए ऑडिट में करीब 7 लाख फर्जी और अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिसके बाद राशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने बारिश के मौसम से पहले राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष अधिकारियों ने कल इस परियोजना पर विस्तृत जानकारी दी, जिसमें स्कूलों में पहले से मौजूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग ढांचों की स्थिति, उनकी कमियों और उन्हें प्रभावी बनाने की कार्ययोजना साझा की गई। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में वर्षा जल संरक्षण को मजबूत करना, भूजल स्तर सुधारना और छात्रों तथा समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में वर्षा जल संचयन के लिए गैर सरकारी संगठन एहसास प्रणाली को अपनाया जाएगा, जिसे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में स्वीकृति दी गई थी। इसके माध्यम से छतों से आने वाले वर्षा जल को फिल्टर कर स्टोरेज व बोरवेल से जोड़ा जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और सूखे बोरवेल को भी पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान कई कमियां पाई गयी, जिसे दिल्ली सरकार ने दूर करने के लिए विस्तृत सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत वर्षा जल पाइपों को उचित चैनलों से जोड़ा जाएगा, जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई होगी। समाचार के लिए आदित्य के साथ शिवांग मिश्रा।
2: And listeners, let's see what's the news from Chennai. The Department of Posts released a special cover under the theme of 70 years of energizing the nation with sustainability to commemorate NLC India's limited NLCIL 70-year journey. The special cover highlights NLCIL's enduring spirit and its contribution to nation building and sustainable energy development over the past 7 decades. The Postmaster General, Saeed Rashid, released the special cover, and NLCIL Chairman and Managing Director, Prasanna Kumar Motupalli, received the first cover. Prasanna Kumar said that the targets set for NLCIL, doubling the mining production, tripling the thermal power generation and increasing solar power generation sevenfold, and a capital expenditure of rupees 1.25 lakh crore, all of which required concerted effort. And Vaishnavi, what's the news from the financial capital of the country, Mumbai?
1: जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0: ग्रीस ने कहा है कि इस वर्ष का खरीफ सीजन अलनीनो, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की स्थिति के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्याप्त बीज भंडार उपलब्ध है और अधिकारियों को समय पर फसल ऋण, जल संरक्षण कार्यों में तेजी और कृषि में डिजिटलीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मुंबई की बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों और संस्थानों को रोजाना वैज्ञानिक तरीके से कचरा निपटान के निर्देश दिए हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें कचरा बीएमसी को सौंपने के लिए प्रति टन 812 रुपये शुल्क देना होगा। 20,000 वर्ग मीटर से बड़ी सोसाइटियां और रोज 100 किलो से अधिक कचरा पैदा करने वाले संस्थान बल्क वेस्ट जनरेटर माने जाएंगे। ऐसे सभी संस्थानों को 15 दिनों के भीतर एसबीएम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
1: And the Karnataka High Court has extended its interim order till June the 2nd, restraining Transport Corporation employees from proceeding with their proposed strike. A vacation bench comprising Justices Suraj Govind Raj and K. Manmadha Rao said it will review the outcome of the conciliation meeting scheduled for May 25th at the next hearing. The court is hearing a PIL filed by Bengaluru residents C. Vedavati and H. V. Sridhara. Earlier on May 19th, the court had stayed the proposed bus strike planned for May 20th. Deputy Chief Minister of Karnataka, D.K. Shivakumar, said the detailed project report, DPR, for the Mekedatu project will soon be submitted to the centre and Bhumi Puja will be conducted after central government approval. Speaking at Kolegal and Madhyaranga Temple, he said land is being identified to compensate for forest areas likely to be submerged. Referring to the Kaveri issue, he said the Supreme Court has ruled that Tamil Nadu cannot object to the Mekedatu project and that the Central Water Commission will decide the matter.
0: और श्रोताओं, अब रुक करते हैं बेंगलुरु से कोलकाता की ओर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यों की एसआईटी का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का यह फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है।
1: And Telangana government is using digital creators and influencers to promote tourism, both globally and locally. Tourism Minister Jopalli Krishna Rao made this announcement at a tourism creators meet yesterday. The minister said tourism is a major driver of economic growth and employment. He urged influencers to showcase Telangana's scenic destinations, heritage sites and cultural art forms to audiences worldwide. The minister also noted that travelling doesn't require high spending. People can reduce expenses and visit local attractions to overcome stress and improve mental health. The government plans to develop unused hotels and tourism lands to enhance visitor experiences and increase revenue. Cleanliness and basic facilities will be ensured at all tourist spots.
0: श्रोताओ, अब बात करते हैं आज के मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज भी लू चलने का अलर्ट है। बात करें तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और बात करें कोलकाता की तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
1: लिसनर्स, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म अकंपनीड विद लाइटनिंग heat wave. The minimum temperature was 31 degrees Celsius and the maximum may go up to 41 degrees. Bengaluru is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain, thunderstorm, dust storm. The temperatures will hover between a minimum of 30 degrees and a maximum of around 41 degrees Celsius.
0: और सरबजीत, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और श्रोताओं को बताएं कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ है, आइए बात कर लेते हैं पहले कि आज के दिन की उस विशेषता के बारे में जो सिर्फ प्रकृति से ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल

0: भी जुड़ी हुई है।
1: जी बिल्कुल, एंड आई एम श्योर यू आर स्पीकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी डे।
0: जी बिल्कुल,
1: एंड वैष्णवी इफ आई मे ऐड हियर दैट फ्रॉम द एयर वी ब्रीद टू द फूड वी ईट एंड द वॉटर वी ड्रिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बायोडाइवर्सिटी बट दिस नेचुरल वेल्थ इज अंडर प्रेशर सो मेनी रीजंस डिफॉरेस्टेशन पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज रैपिड अर्बनाइजेशन वी नीड एज ह्यूमन बींग्स वी नीड टू थिंक अबाउट दिस।
0: जी बिल्कुल, और आज के समय में बढ़ता प्रदूषण जंगलों की कटाई जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। कई जीव जंतुओं और पक्षियों की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। इसका असर सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं बल्कि इंसानी जीवन पर भी पड़ रहा है।
1: सो यू नो दिस इज द बिग क्वेश्चन बिफोर अस वैष्णवी व्हाट वी कैन डू इन आर ओन स्मॉल वेज एंड इवन स्मॉल एक्शंस कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्लांटिंग ट्रीज सेविंग वाटर अवॉइडिंग प्लास्टिक प्रोटेक्टिंग लोकल इकोसिस्टम्स आई एम श्योर दीज थिंग्स टू पुट टूगेदर वुड मेक अ लॉट ऑफ बिग डिफरेंस।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैव विविधता का संरक्षण सिर्फ पर्यावरण बचाने का मुद्दा नहीं है बल्कि हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि प्रकृति की इस खूबसूरत धरोहर को बचाने में अपना छोटा सा योगदान जरूर देंगे, क्योंकि धरती तभी मुस्कुराएगी जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी।
1: एब्सोल्युटली, सो व्हेन बायोडाइवर्सिटी थ्राइव्स ह्यूमैनिटी थ्राइव्स।
0: जी बिल्कुल, और अब प्रकृति पर्यावरण और जीवन के इस खास संदेश के बाद बढ़ते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां 22 मई से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने दुनिया को नई सोच और नई पहचान देने का काम किया। आइए जानते हैं आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
1: यस ऑफ कोर्स वैष्णवी, 22 मई 1805 गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली इशूड अ फॉर्मल डिक्री एस्टैब्लिशिंग अ परमानेंट फाइनेंशियल प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर द मुगल एम्परर इन दिल्ली अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन।
0: 1906 में राइट बंधुओं को उनकी उड़ान भरने वाली मशीन के लिए आधिकारिक तौर पर अमरीकी पेटेंट दिया गया जिसने विमानों के नियंत्रण प्रणाली की नींव रखी।
1: 1936 on this day Lord Brabourne laid the foundation stone of the historic Brabourne Stadium in Bombay establishing India's very first permanent world class sporting stadium infrastructure.
0: 1963 में आज ही के दिन भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान और गाइडर रोहिणी सफलतापूर्वक कानपुर के आसमान में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी।
1: 1980 22 May, the legendary arcade game Pac-Man was officially released by Namco in Japan, quickly becoming a global pop culture and technological phenomenon.
0: 1989 में भारत ने चांदीपुर के ओडिशा से अपनी पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि का पहला सफल परीक्षण कर उन्नत मिसाइल तकनीक वाले विशिष्ट देशों में प्रवेश किया था।
1: 22 मई 1990 नॉर्थ येमेन एंड साउथ येमेन ऑफिशियली मर्ज्ड टू फॉर्म द यूनिफाइड रिपब्लिक ऑफ येमेन एंडिंग डेकेड्स ऑफ जियोपॉलिटिकल डिविजन।
0: और 2007 में आज ही के दिन भारतीय मूल के प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे के राजा द्वारा गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: 22 मई 2012 द टोक्यो स्काई ट्री स्टैंडिंग एट अ मैसिव 634 मीटर्स ऑफिशियली ओपन टू द पब्लिक इन जापान एज द टॉलेस्ट सेल्फ सपोर्टिंग टावर इन द वर्ल्ड।
0: और श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर और बात करते हैं उन प्रमुख व्यक्तित्वों की जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है।
1: वैष्णवी, टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट विजनरी राजा राममोहन रॉय। बॉर्न इन 1772 इन बंगाल, राजा राममोहन रॉय वॉज अ विजनरी who strongly fought against social evils like sati, child marriage, caste discrimination. Raja Ram Mohan Roy believed in reason, education, equality at a time when such ideas were rare.
0: जी बिल्कुल, और राजा राम मोहन राय मानते थे कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी सोच के साथ उन्होंने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर धार्मिक और सामाजिक सुधारों का नया आंदोलन शुरू किया। उनकी सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी बल्कि वे चाहते थे कि भारतीय समाज दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े।
1: And Raja Ram Mohan Roy, if I may say so, was a true

0: reformer who lit the path of social awakening in India. He channelized and focused people towards women's rights, modern education and freedom of thought. Listeners, we are also paying tributes today to Sir Arthur Conan Doyle. Today is his birth anniversary, a British writer and physician. Sir Arthur is best known for his 4 novels and 56 short stories about the fictional consultative detective Sherlock Holmes and his assistant Dr. Watson.
1: इतिहास, दर्शन और भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने वाले महान चिंतक गोविंद चंद्र पांडे की आज पुण्यतिथि है। वे 20वीं सदी के प्रमुख इतिहासकारों, संस्कृतिज्ञों और सौंदर्य शास्त्रियों में गिने जाते थे। भारतीय इतिहास और संस्कृति पर उनका अध्ययन बेहद गहरा और प्रभावशाली माना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता, बौद्ध दर्शन और भारतीय चिंतन पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनकी लेखनी में ज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति की आत्मा भी दिखाई देती थी। वे मानते थे कि इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि समाज की चेतना का दर्पण होता है।
0: एंड वैष्णवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम यू प्रॉमिस द लिसनर्स दैट यू विल ब्रिंग अ कलेक्शन ऑफ नाइस numbers, nice lovely songs. So let's first of all remember the great Homi Vadia. Today is his birth anniversary, film director and producer. We've brought a short collection of beautiful numbers from his movies.

0: Vaishnavi, beautiful romantic numbers. So since the tone is all set, we are also remembering today Victor Marie Hugues. Today is his death anniversary, a French romantic author, poet, essayist, playwright, journalist, human rights activist and politician. His most famous works are the novels The Hunchback of Notre Dame and Les Miserables.
1: भारतीय उद्योग जगत को नई सोच और मजबूत नेतृत्व देने वाले प्रसिद्ध उद्यमी सोहराब फिरोज शाह गोदरेज की आज पुण्यतिथि है। वे गोदरेज समूह के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल थे। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता ने गोदरेज समूह को देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह में शामिल किया। उन्होंने उद्योग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि व्यवसाय सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं बल्कि समाज के विकास का भी जरिया होना चाहिए। व्यापार जगत में की ही बात हो रही है तो व्यापार जगत में ईमानदारी, दूरदृष्टि और सफलता की मिसाल गोविंद राम सेकसरिया की आज पुण्यतिथि है। उन्हें स्वतंत्र पूर्व भारत के सबसे सफल व्यवसायियों में गिना जाता था। उन्होंने मुख्य रूप से कपड़ा, जूट, चीनी और कई बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में अपना व्यापार स्थापित किया था। उस दौर में जब भारतीय उद्योगों पर विदेशी कंपनियों का दबदबा था, तब गोविंद राम सेकसरिया ने भारतीय व्यापार जगत को मजबूती देने का साहसिक कदम किया। उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक कार्यों को सहयोग दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर अवसर मिल सके।
0: And listeners, we are also extending our good wishes to some great names who have birthdays today. Erappalli Anant Srinivas is a former Indian cricket player and he was a spin bowler specializing in off spin and a member of the Indian spin quartet. He has received the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award in 2004, the highest honor bestowed by BCCI on a former player. We are also wishing a very happy birthday to Rajit Kapoor. He is a theatre

0: Actor and director, and known for his portrayal of Mahatma Gandhi in the 1996 film The Making of the Mahatma, for which he won the National Film Award for Best Actor. And today is also the birthday of Novak Djokovic, the Serbian professional tennis player, and Djokovic has been ranked as world number one in men's singles by the Association of Tennis Professionals for a record 428 weeks.
1: श्रोताओं, कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं जिनकी धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा को अपनी मधुर धुनों से सजाने वाले लोकप्रिय संगीतकार राम लक्ष्मण को। राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था और 80 से 90 के दशक में उनके संगीत ने हिंदी फिल्मों को नई मिठास और नई पहचान दी थी। उनकी धुनों में भारतीय संगीत की आत्मा, सादगी और भावनाओं की गहराई साफ महसूस होती थी। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और पत्थर के फूल जैसी फिल्मों में दिए गए उनके गीत आज भी हर पीढ़ी के पसंदीदा है। उनके गीत की खास बात ये थी कि हर धुन सीधे दिल को छू जाती थी। प्यार, अपनापन, दोस्ती और रिश्तों की भावनाओं को उन्होंने अपने संगीत में बेहद खूबसूरती से पिरोया था। और आइए अब आपको सुनाते हैं राम लक्ष्मण की उन्हीं सदाबहार धुनों को जिन्होंने हिंदी सिनेमा के संगीत को कई यादगार पल दिए।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और सरबजीत को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश

0: अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष

0: जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
5: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
4: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of seven big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
6: The International Big Cat Alliance IBCA Summit was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it was decided that in order to ensure broad and active participation from all range countries, including African countries, the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation and sustainable development. Samarth Singh for Akashvani News, Delhi.
4: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior Railway Board officials and field officers from across the country, attended the meeting. We have a report.
7: According to Ministry of Railways, initial investigations into several recent incidents, including some fire-related cases, have pointed towards the involvement of anti-social elements. The Railway Protection Force is actively probing these incidents. Officials noted during the meeting that timely and proactive action by railway authorities in several instances helped prevent larger mishaps. The railway said it is intensifying the use of modern technology tools such as artificial intelligence, drones and CCTV systems to strengthen the safety of passengers, trains and the wider rail network. The initiative is being carried out in mission mode with a focus on improving intelligence gathering at the beat level of the RPF. Railways Minister Ashwini Vaishnav said intelligence gathering from the field is being strengthened using modern technology tools. Meanwhile, the advisory from the ministry is crucial amid rising Russian trains due to vacation season, and so it is important for passengers to remain alert and vigilant while travelling. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
4: The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. We have more from our correspondent.
8: The three-member seat will be led by the Central Bureau of Investigations Joint Director for Eastern Zone. The court has asked the team to find its report by 25th June. A division bench of Justice Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh directed the CBI to retrace events from the victim's dinner on 9th August 2024 through to her cremation. The agency has also been given freedom to investigate all related aspects. The court decision follows repeated concerns from the victim's family alleging tampering of evidence and suspension of facts. The bench emphasized that the seat must examine every detail to ensure a comprehensive investigation. The crime, which shocked the nation in 2024, saw civic volunteer Sanjay Rai sentenced to life imprisonment. But widespread protests by doctors and civil society have kept the demand for justice alive. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
4: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AII News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website.

0: कुब्रुस के सदर के एजाज में जोहरानी की मेजबानी करेंगे। शाम में कुब्रुस के सदर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। कुब्रुस के सदर का दौरा गुज़श्ता बरस जून में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कुब्रुस के दौरे के एक साल के अंदर अंदर हो रहा है। भारत और कुब्रुस की करीबी और तवील मुद्दती शराकतदारी है। आइंदा बरस फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 65 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: बिग कैट अलायंस की पहली बैन अलाक्वामी सरबरा कॉन्फ्रेंस जो 1 जून को नई दिल्ली में होने वाली थी मुलतवी कर दी गई है। इस सरबरा कॉन्फ्रेंस में बिग कैट के दायरे में आने वाले जानवरों की 7 अकसाम को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज की जाती है, जिनमें शेर, बबर शेर, तेंदुआ, बर्फानी तेंदुआ, चीता, जैगुअर और प्यूमा नीज उनका इको निजाम शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बिग कैट अलायंस की बैन अलाक्वामी सरबरा कॉन्फ्रेंस चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबरा मीटिंग के साथ साथ होने वाली थी। कई अफ्रीकी मुल्कों में बिग कैट्स जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं और ये मुल्क इन्हें महफूज रखने, माहौलियाती पायदार निजाम और हयातियाती तनवो के तहफ्फुज की समत आलमी कोशिशों में अहम साझेदार भी हैं। चूंकि चौथी भारत अफ्रीका फोरम सरबराह मीटिंग अब बाद में किसी तारीख को कराई जाएगी, इसलिए फैसला किया गया है कि अफ्रीकी मुल्कों समेत सभी मुतालिका मुल्कों की वसीतर और सरगर्म शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर बिग कैट अलायंस की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस भी बाद में तलब की जाए। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक वजारत के मुताबिक इसमें शिरकत करने वाले मुल्कों और मुतालिका इदारों के साथ सलाह मशवरे के बाद सरबराह कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली से सामर्थ सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: रेलवे बुनियादी ढांचे और ट्रेन आमदोरफ्त को निशाना बनाए जाने के हालिया वाकयात के तनाजुर में रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो सफर करते वक्त चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कल नई दिल्ली में रेल भवन में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग के बाद यह अपील की गई है। इस मीटिंग में रेलवे के वुजराए ममलिकत वी सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के सीनियर अहदेदारों और मुख्तलिफ फील्ड अफसरों ने भी शिरकत की। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: रेलवे की वजारत के मुताबिक कई हालिया वाकयात की अब तक की छानबीन से समाज दुश्मन अनासिर के मुलव्वस होने का इशारा मिलता है। रेलवे हिफाजती फोर्स इन वाकयात की सरगर्मी के साथ जांच कर रही है। मीटिंग में इस बात से मुतला किया गया कि कई वाकयात में रेलवे के हुक्काम की जानिब से बरवक्त और पेशबंदी की कार्रवाई से बड़े वाकयात की रोकथाम में मदद मिल सकी है। रेलवे ने कहा है कि वो मुसाफिरों की सलामती, रेलगाड़ियों, स्टेशनों और वसी तर रेल नेटवर्क की सिक्योरिटी को मुस्तहकम बनाने की खातिर मसनूई जहानत, ड्रोन्स और सीसीटीवी निजाम जैसे जदीद तर्ज के तकनीकी वसीलों के इस्तेमाल में इजाफा कर रही है। इस पहल पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। दिल्ली से कमोदी पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आबरूरेजी और कत्ल केस की तहकीकात के लिए एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। 3 अरकान पर मुश्तमिल एसआईटी की क्यादत मशरकी जोन के लिए सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर करेंगे। अदालत ने 3 से 25 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जस्टिस शांपा सरकार और तीर्थंकर घोष पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने 9 अगस्त 2024 को मकतूला के रात के खाने से लेकर उसकी आखिरी रसूम तक के हालात वाकयात की छानबीन करने का हुक्म दिया है। एजेंसी को सभी मुतालिका पहलुओं की तहकीकात करने की आजादी भी दी गई है। अदालत का यह फैसला मकतूला के कुनबे की जानिब से बार बार इन तशवीश के बाद सामने आया है कि शवाहिद से मुबैन तौर पर छेड़छाड़ की जा सकती है और हकायक को छुपाया जा सकता है। बेंच ने इस बात पर जोर दिया है कि एसआईटी मजमूई तहकीकात को यकीनी बनाने की खातिर हर तफसील की जांच करेगी। 2024 में पेश आए इस वहशियाना वाकये ने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया था, जिसके बाद संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी की जानिब से बड़े पैमाने पर मुजाहिरों ने

0: दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में उसके मुलव्वस होने के बिना पर अप्रैल 2022 में भारत ने उसे दहशतगर्द करार दिया था। पुलवामा हमले के बाद से वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एक टीचर के भेस में रह रहा था। मुकामी पुलिस के मुताबिक गोजरा मुजफ्फराबाद में एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कल सुबह अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया और अल बद्र दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक बाशिंदे को पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह 44 पर इंटरनेट से मुंसलिक सीसीटीवी कैमरा नस्ब करके पाकिस्तान में मुकीम अपने आकाओं के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया है। पठानकोट के एसएसपी दिलजिंदर सिंह ढिल्लो ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बलजीत सिंह ने मुबैना तौर पर फौज और नीम फौजी दस्तों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए कौमी शाहराह 44 पर एक पुल के नजदीक सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया था। इसकी लाइव फीड पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई के कारिंदों से शेयर की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए तामीर किए गए वैष्णवी भवन को अकीदतमंदों को वक्फ किया। इसका मकसद पवित्र गुफा में वाक मंदिर में यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाना और उनके कयाम की सहूलियात में इजाफा करना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि नए भवन के तामीर होने से वहां हर साल आने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनजर उन्हें जदीद तर्ज का आरामदेह बुनियादी ढांचा फराहम किया जा सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी वो चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुज के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामानिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकत दार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वुजरा से मुलाकात का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दर्जा हरारत तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरी रियासत शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। लगातार पांचवें दिन रियासत का बांदा जिला मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा। वहां दिन का दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: रियासत में पारा हर गुजरने वाले दिन के साथ ही नई बुलंदी पर पहुंच रहा है। बुंदेलखंड खिता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां बेशतर मकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। बांदा में यह 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो नॉर्मल से 4 डिग्री ज्यादा है और इससे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। प्रयागराज में भी टेम्परेचर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है। लोगों को रात के वक्त भी गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रात में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा राजस्थान तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में भी आज सख्त गर्मी का इम्कान है। इस दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज रात में भी मौसम गर्म रहेगा। आईएमडी ने पंजाब और मकरबी राजस्थान में आज कहीं कहीं धूल भरी आंधी का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में पानी की बचत को मुस्तहकम करने की खातिर एक अहम इकदाम का ऐलान किया है जिसके तहत मानसून के आगाज से पहले 75 सरकारी स्कूलों में बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को बहाल किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इम्कान है कि इससे बारिश के पानी को जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 50 करोड़ लीटर हो जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटन्स के लिए मोहम्मद सिराज राशिद खान और कगिसो रिबाडा ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी के तौर पर शाये किया है।

0: इस्लामाबाद इनकलाब की शह सुर्खी है। गैर मुल्की दौरे के बाद वजीर आजम की सदारत में काबीना की अहम मीटिंग। बहरान के दौरान आवाम को बिला तातुल सहूलतें फराहम करने का आजम। तमाम वजरा को अपने महकमों में गैर जरूरी अखराजात कम करने की हिदायत। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस के सफा अव्वल की अहम खबर है। मुल्क में एसआईआर के तीसरे मरहले का आगाज। 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 3 इलाकों में खसूसी नजरसानी मुहिम चलेगी। वजीर दिफा ने जनूबी कोरिया में बनी हिन्दुस्तानी जंगी यादगार का इफ्तिताह किया। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अपने सफे अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। इसी सफे पर दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता का यह बयान भी मौजूद है कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनने शुरू, 7.72 लाख लोगों को मिलेगा फायदा।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में बिग कैट अलायंस की 1 जून को होने वाली पहली बैन अलावामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। रेलवे के महकमे ने मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और रेलवे अहाते में किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मी या मुश्तबा अफराद के बारे में जानकारी बिला ताखीर हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर आबरूरेजी और कत्ल केस में इल्जामात पर पर्दा डालने के मामले की तहकीकात के लिए सीबीआई की खसूसी टीम कायम किए जाने का ऐलान किया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत जितनी भी चाहे तवानाई खरीद सकता है, अमरीका उसे फरोख्त करने के लिए तैयार है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

जरदोस्त नौदीसो पारसी धर्म का एक महत्वपूर्ण शोक दिवस है जिसे पैगंबर ज़ोरोस्टर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पारसी धर्म के संस्थापक और महान पैगंबर ज़ोरोस्टर के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद किया जाता है। इस अवसर पर पारसी अग्नि मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं और पाठ आयोजित किए जाते हैं जहां महान पैगंबर के संदेश अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया जाता है, जो कि आज का दिन है। 8:46 और 33 सेकेंड ये है म्यूजिकल दिल्ली और 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनाब, बातें आपसे बहुत सारी करनी थी लेकिन वक्त बहुत कम है, तो इसलिए सोचा कि ये खूबसूरत गाना आपको नजर करते हुए फिलहाल यही कहूं कि म्यूजिकल दिल्ली के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। 9:10 पर इसके दूसरे सेगमेंट में रेखा होंगी आपके साथ और करेंगी बहुत सारी बातें। फिलहाल मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ आपसे यहीं 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। टिल देन कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन चतुर्थ के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं और संरक्षण, पारिस्थितिकी स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदार भी हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद

0: में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के ये बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से इन्होंने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, खुश रहना है तो हर दिन उन नेमतों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए जो आपको जीवन में मिली हैं। उन चीजों के लिए दुखी मत रहिए जो आपको नहीं मिली, क्योंकि यकीन मानिए दोस्त, जो आपको मिला है उसकी गिनती जो नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा है ना। 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। और फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करूंगी, शुरू करूंगी म्यूजिकल दिल लगी इस प्यारे से गीत के साथ।

हुए हैं 90 साल आकाशवाणी को हो गए हैं 90 साल पूरे होने जा रहे हैं और साल 1936 में भारतीय प्रसारण ने एक खास पड़ाव हासिल किया था जब दिल्ली में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का दिल्ली केंद्र आधिकारिक रूप से ऑन एयर हुआ। पहले यह केंद्र दिल्ली स्थित अस्थायी रेडियो से संचालित किया जाता था। दिल्ली केंद्र की शुरुआत के साथ ही रेडियो प्रसारण को एक नई दिशा मिली। कला, शिक्षा और संगीत जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला, जिससे रेडियो सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं समाज के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का भी एक सशक्त माध्यम बन गया। साथ ही समाचार प्रसारण के बाद धीरे धीरे रेडियो का स्वरूप बदलने लगा और रेडियो हर आम जन के हर पल का साथी बन गया। तो चलिए, अब बारी है आपके लिए आज के सवाल की और सही जवाब देने वाले एक लकी श्रोता से हम बात करेंगे सीधे फोन लाइन पर म्यूजिकल दी लगी के इस सफर में। तो आज का सवाल क्या है दोस्तों, तैयार रहिए। पहले आपको नंबर बता दूं कहां पर आपको सही जवाब भेजना है। 9868686853 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको हमें लिखना है सही जवाब। अपने नाम और शहर का नाम जरूर साथ में लिखिएगा और नंबर एक बार फिर से बता दूं 9868686853 या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। किसी एक श्रोता को हम जरूर कॉल लगाएंगे। अब देखते हैं कि आज का लकी श्रोता कौन होता है। तो फिलहाल आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। सवाल है कि आकाशवाणी द्वारा सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आरंभ कब किया गया। सवाल थोड़ा मजेदार है ना। तो चलिए, आपको जल्दी से इसका जवाब बताना है हमें कि आकाशवाणी द्वारा सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आरंभ कब किया गया। तो जवाब लिख भेजिए और देखते हैं कि आज किससे होती है बात। तो फिलहाल ये गीत आपके लिए और उसके बाद आगे क्या है

的日不当地。फिल्म याराना किशोर दा की खूबसूरत आवाज़।

0: एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800

1-1-7-8-0-0 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1-9-2-2 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और ये है म्यूजिकल दिल लगी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और मैं आपको इस ब्रेक के बाद ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी। एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूं और उसके बाद बातें बहुत सारी हैं करेंगे जरूर।

तो चलिए अब आपको उस योजना के बारे में बता देती हूँ जो आपके काम की हो सकती है या आपके आसपास अगर किसी को इसकी जरूरत हो तो आप उसे इसके बारे में बता सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम यानी PMNDP राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाई जाने वाली एक जन कल्याणकारी योजना है। इसके जरिए किडनी फेल्योर, क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद मरीजों को देश के जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाती है। किडनी की बीमारी के महंगे इलाज की वजह से गरीब परिवारों को पड़ने वाले आर्थिक बोझ से बचाना इसका उद्देश्य है और उन्हें घर के समीप उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा देना भी इसके उद्देश्य में से एक है। किसे मिलता है इसका फायदा ये भी जान लेते हैं। गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवार और इस तरह के मरीज जो इस कैटेगरी में आते हैं और जिनके लिए ये सुविधा बिल्कुल निशुल्क है, वहीं गरीबी रेखा से ऊपर यानी APL वाले मरीजों को भी बहुत रियायती यानी सस्ती दरों पर ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वन नेशन वन डायलिसिस अवधारणा के तहत कोई भी पात्र मरीज देश के किसी भी हिस्से में उपलब्ध डायलिसिस केंद्र में अपना स्लॉट बुक करके इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। आप इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी अगर चाहते हैं इस प्रोग्राम के

बारे में तो अपने नजदीकी केंद्र का पता और सुविधाओं की उपलब्धता जानने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और बाकी की डिटेल्स आपको वहां मिल सकती हैं। फिलहाल कुछ और बताऊं, इससे पहले एक गीत सुनाती हूं। ये गीत, बेहद खूबसूरत गीत रफी साहब की आवाज में, ये रहा।

दोस्तों आज है 22 तारीख यानी 22 मई और 22 मई का दिन एक वजह से खास तौर पर जाना जाता है और वो वजह ये है कि आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। हर साल 22 मई को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा घोषित इस दिन का खास उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अगर मैं बात करूं इस दिन के इतिहास की तो इस दिन की शुरुआत पहली बार 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। शुरुआत में ये 29 दिसंबर को मनाया जाता था लेकिन बाद में दिसंबर 2000 में इसे बदलकर 22 मई कर दिया गया। मानव गतिविधियों की वजह से विलुप्त हो रही प्रजातियों और बिगड़ते पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और प्रकृति के संरक्षण के लिए कदम उठाना इसके खास उद्देश्यों में शामिल है। आज इस वर्ष के थीम की अगर मैं बात करूं तो इस साल के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट यानी वैश्विक प्रभाव के लिए।

दूसरे के कहीं जा सकते हैं। एक अकेला इंसान इतनी बड़ी गाड़ी लेकर चले, भला कहाँ की अच्छी बात है, ये नहीं है ना। तो कोशिश करिए कि कारपूलिंग का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और पेड़ पौधों को हर सुबह जब आप अपने घर में पानी देते हैं ना, तो वो भी आपको मुस्कुरा कर देखते हैं। करके देखिएगा, सचमुच बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। फिलहाल एक गीत सुनाती हूँ और गीत के बाद आपको आगे भी बहुत कुछ है बताने के लिए। जुड़े रहिएगा म्यूजिकल दिल लगी में, आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। 9:39:31 हो चुके हैं। गर्मी में ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका आ रहा है, चलिए एंजॉय करिए।

0: तो भाई इस गीत से पहले, मतलब बहुत पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, और सवाल था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय माफ कीजिएगा आकाशवाणी द्वारा सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आरंभ कब किया गया था। तो इस सवाल का जवाब हमें बहुत सारे लोगों ने भेजा, लेकिन लकी श्रोता तो कोई एक ही हो सकता है ना एक दिन में। तो आज हमारे साथ कौन जुड़ा है, चलिए जान लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, शैलजा जी, अपना पूरा नाम बताइए।
1: माय नेम इज शैलजा गोयल फ्रॉम नीमराना। मैम
0: कहाँ से?
1: नीमराना, राजस्थान में पड़ता है
0: नीमराना से। ओके, मुझे लगा शैलजा नीमराना आपका सरनेम है।
1: नीमराना इज द प्लेस।
0: ओके, तो शैलजा जी नीमराना से बोल रही हैं, शैलजा गोयल जी। शैलजा जी, आप हमारा एफएम गोल्ड चैनल सुनती हैं?
1: यस मैम।
0: हाँ, तो पहले तो आप जवाब दे दीजिए हमारे सवाल का आज श्रोताओं को।
1: 14th अगस्त 1955।
0: वाओ, क्या बात है, आपको ये सब कैसे पता चला?
1: पक्का थोड़ा आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, थोड़ा हम लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं।
0: क्या बात है। अच्छा शैलजा जी, आप कब से रेडियो सुन रही हैं?
1: मैम रेगुलरली तो मैं 1997 से सुन रही हूँ, और बीच में कोरोना की वजह से स्टॉप हो गया था, अदरवाइज मैं फैन हूँ पूरा, और बचपन से तो सुनते ही आ रहे हैं।
0: क्या बात है। तो क्यों अच्छा लगता है आपको रेडियो या एफएम गोल्ड?
1: मैम इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यूज मिलती है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं,
0: पुराने गाने
1: और
0: पसंद
1: आप लोग की प्रेजेंटेशन मैम सब लोगों की।
0: थैंक यू। तो आपको पुराने गाने पसंद है?
1: हाँ जी मैम, पुराने गाने तो बहुत पसंद है।
0: तो आपको रेडियो कैसा लगता है? अपने दोस्त जैसा लगता है ना? बिल्कुल
1: यस मैम, बिल्कुल दोस्त जैसा लगता है। मैसेज भेजते हैं, आंसर्स पता चलते हैं, क्वेश्चंस पता चलते हैं।
0: अच्छा, ऐसा कभी लगा है कि, अच्छा आप करती क्या है पहले बताइए।
1: मैम मैं तो होम मेकर हूँ।
0: हाँ, तो फिर कभी कभी घर में काम करते वक्त आपको रेडियो सबसे बेस्ट लगता होगा ना, साथ में चलता है
1: मॉर्निंग टू इवनिंग।
0: क्योंकि काम का सच में थकान नहीं होती ना जब आप रेडियो सुन के काम करते हैं।
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सुबह से स्टार्ट हो जाता है और रेडियो सुनते से सारे काम होते हैं।
0: अच्छा, घर में आपके कोई छोटे बच्चे भी हैं?
1: नहीं, मेरी एक बेटी की मैरिज हो गई है और एक हॉस्टल में रहती है, एमबीए कर रही है।
0: तो क्या वो भी रेडियो से इतना ही लगाव रखते हैं?
1: बहुत बहुत रखते हैं, अभी नहीं कर पाते बट बहुत।
0: क्या बात है, तो मतलब ये परंपरा चली आ रही है, आपने बच्चों तक पहुंचाई है ना। हमें यही करना चाहिए कि रेडियो इतना पारंपरिक और इतना खूबसूरत साधन है, माध्यम है, इतने खूबसूरत संगीत गीत का, तो भाई हमें इसे जरूर सुनना चाहिए, प्रचार प्रसार भी इसका करना चाहिए। वेल, आप हमारे श्रोताओं से जुड़ी हैं, आज आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी?
1: मैम बस रेडियो बहुत अच्छा लगता है हमें सुनने में, टीवी में फिर भी बैठ के टाइम वेस्ट लगता है मेरे को, लेकिन रेडियो सुनने से नॉलेज और आपका मूड बहुत फ्रेश हो जाता है।
0: तो अपने श्रोताओं के लिए एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए।
1: मैम मैसेज तो यही है कि आप लोग भी एंजॉय करिए, रेडियो वगैरह सुनिए, नॉलेज भी बढ़ेगी आप लोगों की भी।
0: अच्छा शैलजा जी, आज मेरा मन कर रहा है कि कोई ऐसा गाना बजा दूं जो आप सुनना चाहें, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम आपकी प्लेलिस्ट तो आज तो बहुत ही अच्छी है, वैसे रोज ही अच्छी होती है, आप अपनी पसंद का कुछ भी सुना दीजिए।
0: क्या बात है, ये कहते हैं, इसे कहते हैं प्यार, कि भाई आप कुछ भी सुना दीजिए। अच्छा, रेडियो की यही मजेदार बात है कि रेडियो जैसे भी है, कुछ भी आए वो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। और जब हम खुद सिलेक्ट कर करके गाने सुनते हैं तो उतना मजा नहीं आता, मजा तब आता है जब सरप्राइज कोई गीत सामने आ जाए और हम कहें कि वाह कितने दिनों बाद।
1: हमारे फेवरेट होते हैं।
0: तो चलिए आज एक और प्यारा सा गीत आपको सुनाती हूँ, थैंक यू से बात करने के लिए, बहुत अच्छा।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम।
0: तो भाई इतनी खुशी देख के हमें समझ आ जाता है कि रेडियो सुनने वाले जो हैं वो सचमुच खुश रहते हैं, क्योंकि गीत संगीत आपके मूड को बहुत ज्यादा खूबसूरत और अच्छा बना देता है, आपका दिन बना देता है जब आप दिन की शुरुआत म्यूजिक के साथ करते हैं। फिलहाल आपसे जो सवाल मैंने पूछा था, जवाब आपको मिल ही गया। 14 अगस्त 1955 को इसकी शुरुआत हुई थी, और अब क्योंकि इंतजार नहीं कराऊंगी, जल्दी से एक गीत सुनाती हूं, और ये रहा वो गीत। शैलजा गोयल जी, आप भी सुन लीजिए, ये रहा आपके लिए।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो इस सफर का आज का मतलब म्यूजिकल दिल लगी का आखिरी गीत आप तक पहुंचा रही हूं, और उसके बाद फिर आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, वर्ल्ड न्यूज, विश्व दर्पण, बहुत सारी चीजें हैं, जुड़े रहिएगा। 10:30 पर फिर से मिलूंगी आपसे लेकर दिल का मेल बॉक्स। तो चलिए आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ रफी साहब की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट मुंबई भी जा चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर की निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS 4th के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति

0: Law told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. Its live feed was shared with Pakistan-based ISI handlers. Police is also looking for his three more accomplices. Union Home Minister Amit Shah today paid tributes to Raja Ram Mohan Roy on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said that through the establishment of the Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Roy awakened people against social superstitions. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और विश्व की पहली एआई फीचर फिल्म हेल ग्राइंड का कान फिल्म महोत्सव में प्रीमियर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइडस मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइडस की यह पहली भारत यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ईरान के फारसी खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण ने एक नक्शा जारी किया है। इससे होर्मोज जलडमरू मध्य को लेकर गतिरोध कल और गहरा गया। इस नक्शे में उसने ईरानी तटों से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के फुजैरा और अल कुवैन बंदरगाहों तक फैले जलमार्ग के बड़े हिस्से पर अपना नियामक नियंत्रण होने का दावा किया। ईरानी संस्था ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को प्राधिकरण से पहले

0: अनुमति लेनी होगी। इस दावे की संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका पोलैंड में 5,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या 4,000 से घटाकर 3,000 कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप पोलैंड में अमरीकी सेना की तैनाती में अस्थायी देरी हुई है। मंत्रालय ने पोलैंड को अमरीका का आदर्श सहयोगी बताया। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में यूरोप में लगभग 80,000 अमरीकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से लगभग 10,000 सैनिक पोलैंड में हैं। इससे पहले अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि अगले 6 से 12 महीनों में जर्मनी से लगभग 5,000 अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा पर दबाव तेज करते हुए उसे एक विफल राष्ट्र और अमेरिका के लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा खतरा बताया। फ्लोरिडा और व्हाइट हाउस के अलग अलग संबोधन में दोनों अधिकारियों ने क्यूबा के प्रति कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया। साथ ही बातचीत के जरिए समझौते की संभावना भी खुली हुई है। ओवल ऑफिस में उदारीकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में क्यूबा से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमरीका क्यूबा के लोगों और क्यूबा अमरीका के लोगों को द्वीप से फिर से जोड़ने में मदद करना चाहता है। कुछ घंटे पहले विदेश मंत्री रूबियो ने भारत रवाना होने से पहले मियामी होमस्टेड हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं अधिक तीखा आकलन प्रस्तुत किया था। इसराइल सरकार ने गजा की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले सैकड़ों नौसैनिक दलों के सदस्य को रिहा कर दिया है और कुछ को निर्वासित किया है। कार्यकर्ताओं के साथ हुए इस बर्ताव पर विदेशों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते कई देशों ने इसराइल दूतों को तलब कर अपनी चिंताएं व्यक्त की। लगभग 420 कार्यकर्ता तुर्की जाने वाले विमानों से इसराइल से रवाना हुए और कल शाम इस्तांबुल उतरे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग कर पहला अंतरिक्षयान बनाने का इतिहास रचा था। कॉन्स फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइंड नामक इस 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप हिग्सफील्ड एआई ने इस फिल्म का बुधवार को ट्रेलर भी जारी किया। फिल्म की कहानी देवी देवताओं और राक्षसों पर आधारित है। स्पेस एक्स ने टेक्सास के स्टार बेस से अपने नवीनतम और सबसे बड़े स्टारशिप V3 रॉकेट की बहुप्रतीक्षित परीक्षण उड़ान को लॉन्चिंग से ठीक 40 सेकंड पहले रद्द कर दिया। 407 फुट लंबा ये रॉकेट टेक्सास से अंतरिक्ष की लगभग आधी दूरी तय करने के लिए तैयार था, लेकिन मैक्सिकन सीमा के पास स्टार बेस स्थित बिल्कुल नए लॉन्च पैड में

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसपे आप अपनी पसंद के गीत हमें लिखकर भेज सकते हैं। और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से लकी श्रोता हैं जिनके गीत आज शामिल हो पाएंगे। वेल, नंबर कौन सा है बता दूं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9868868753 पर, यानी 9868686853, या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com पर। जी हाँ, fmgold@gmail.com। तो बस लिख भेजिए हमें वो गीत, वो फिल्म का नाम जो आप सुनना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखिएगा। और फिलहाल शुरू करते हैं आपके संदेशों के साथ। तो हमारे दिल के मेल बॉक्स में पहुंच चुके हैं बहुत सारे ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस, जिनमें शामिल हैं कौन कौन, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा का मैसेज हमें मिला है। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी और प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का हमें मैसेज मिला। और हमें लिखा है मेरिट कैंट से दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय टिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई ने। और इसके अलावा मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अबान और पूरा अब्बासी परिवार हमें मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से लिख रहे हैं। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी मामिका, वाणी थांदी का हमें पंजाब नवांशहर से मैसेज मिला। और हमें लिखा है किसने, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल और रक्षिता ने कल्पना ताई लोखंडे के साथ महाराष्ट्र, लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ महाराष्ट्र से। और ये मैसेज होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम कोरवाल, सचिन कोरवाल, अमन दीपांशु का हमें मिला है। और हमें लिखा है किसने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान, पूजा परिहार का हमें मैसेज मिला। और मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार पुराना, और ये हमें लिख रहे हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप का मैसेज। और ये मैसेज हमें मिला है सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग का। और हमें लिखा किसने, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम का हमें मालियान सरधना मेरठ से मैसेज हमें पहुंचा। और हमारे पास नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू का मैसेज मिला। और हमें लिखा मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, आदिति और वैभव ने हिल स्टेशन

खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे का मैसेज। और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने हमें जनकपुरी से लिखा है, दिल्ली से। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रत्येश, प्रितेश और प्रज्ञेश संघई ने पूरे संघई परिवार के साथ परभणी से हमें मैसेज पहुंचाया। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना। राजेंद्र सिंह ओबराय का मैसेज। और उग्रसेन यादव ने नई दिल्ली से हमें लिखा है, नबी हसन नवासी, शाहनवाज, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम और यशफ का मैसेज हमें लिखा है, मारहरा दरवाजा एटा से। सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी, इशरत परवीन का हमें मैसेज मिला। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर का मैसेज। और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज। और नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान सुफिया, काबली मारान से हमें मैसेज पहुंचा है। और हमें लिखा है सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू नव्या और नव्या बिजारनिया ने हरियाणा सिरसा से। और ये मैसेज हमें मिला है पीतमपुरा से अनीता वर्मा का, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब हसन का सहारनपुर गांव कुम्हारहेड़ा से मैसेज। हमें लिखा है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने शाहजीनगर महाराष्ट्र से। और ये मैसेज अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, संजय, अरुण, पवन, संजीव, सुनील जैन और रजक लालू, सोना, मुना, हनी, यश का मैसेज हमें पहुंचा है। मम्मी पापा के साथ सुन रहे हैं हमें, कहां से? शिवाजी चौक कटनी से। और रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी का हमें मैसेज पहुंचा है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। तो बाकी के मैसेजेस को जरूर शामिल करूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक गीत जो हमें कह रहा है कि बस अब प्ले कर दीजिए। ये गीत हमें फरमाइश की है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे अब्बासी परिवार ने, अपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत वारिस फिल्म से आपके लिए। आवाजें लता जी और रफी साहब।

आकाशवाणी एट 90। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स। 10:45 17 सेकंड हो चुके हैं और आपके और भी मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, तो इससे पहले कि उन्हें शामिल करूं, आपको बता दूं कि हमें किस किस ने लिखा है। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल ने, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने, और इसके अलावा हमारे पास श्रीपाल गोयल का बहादुरगढ़ हरियाणा से मैसेज पहुंचा है। उत्तम कुमार भगत ने हमें लिखा है, श्वेता भगत की सुधासु अर्णव आनंद सत्यमानंद के साथ, कहां से? झारखंड से। और पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत का हमें मैसेज पहुंचा है। और मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से हमें लिख रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से मैसेज भेज रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का हमें शांतिनगर सोनीपत से मैसेज मिला। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और आयुषी गुप्ता का हमें मैसेज पहुंचा। और हमें लिखा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हमें, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और डब्बू और बब्बू का मैसेज पहुंचा। और साथ ही हमें संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत ने कमल साहनी पिंगावाला चौक से हमें लिख रहे हैं। और इसके अलावा गांव चहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार का मैसेज हमें मिला। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक का मैसेज। और विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा का मैसेज हमें मिला है। जाखौद राजस्थान से रेशमा बेगम, सलीम अख्तर कालीगढ़ से मैसेज। और भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का बेंगलुरु व्हाइटफील्ड से मैसेज। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी का मैसेज। और हमें लिखा है फुरकान, मोहम्मद फुरकान ने ग्राम सियाल से। कौशल्या देवांगन, रोशन देवांगन, हिमलता डिम्पल, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज पहुंचा रहे हैं। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमार संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत सानवी, कल्पना का मैसेज हमें मिला है कालेगांव ग्राम पंचायत से। और हमें लिखा है राम ने पलवल से हमें मैसेज पहुंचाया है। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा का हमें फिर से मैसेज पहुंच गया है, दोबारा गड़बड़ मत करिए। शेरवानी स्कूल, गंज टुंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुबना और आलिया अंसारी का मैसेज। और इसके अलावा रीटा भाटिया, बिट्टू भाटिया झज्जर से हमें लिख रहे हैं। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस का हमें मैसेज जनकपुरी सहारनपुर से मिला है। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष का हमें मैसेज गांधी चौक बाड़मेर से मिला। राम देवरा से दिनेश चौहान का मैसेज, डांगरी से बाबूराम जयपाल का मैसेज, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा का मैसेज। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। सुभाष प्रजापति का गुरुग्राम से मिला है हमें मैसेज। और गीतिका भानु, कमला रानी का मैसेज हमें मिला है बोधराज के साथ, उत्तम नगर दिल्ली से। दोबारा मैसेज मत भेजिए, ये अच्छी बात नहीं है। शमसुल कमर राही का, शाहीन फातिमा और अनु का मैसेज गंज टुंडवाड़ा से हमें मिला है। और इसके अलावा हमारे पास किसका ये मैसेज है, नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। और हमें लिखा है प्रकाश गोगिया ने दिल्ली से। बहुत सारे मैसेजेस हैं, जरूर कोशिश रहेगी शामिल करने की, लेकिन फिलहाल अगला गीत शामिल करते हैं। और ये गीत हमें भेजा है किसने, हमें इसकी फरमाइश भेजी है धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार ने भोपालगढ़ राजस्थान से। तो ये रहा चांदनी फिल्म से आपके लिए ये खूबसूरत गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव

जीशान खान का मैसेज हमें मिला है राजस्थान से, हनुमान टाउन से, और हमें लिखा है किसने, योगेश शर्मा ने फरीदाबाद से। साथ ही हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है मोहम्मद अफरोज नेमुआ ने, हमें लिखा है बिहार से। थोड़ा नामों को क्लियर लिखेंगे तो मुझे पढ़ने में आसानी होगी। वेद प्रकाश, मास्टर वहीद, कपिल त्यागी, मोदी नगर गाजियाबाद से हमें लिख रहे हैं। और हमारे पास जगदीश कुमार, राहुल, रितिका, नांगलोई से हमें मैसेज भेज रहे हैं। और ये मैसेज हमें मिला है गुरमीत सिंह मीता का साउथ एक्सटेंशन से। नहर अरोड़ा, ममता कीर्ति भूमिका का श्री गंगानगर राजस्थान से मैसेज है। और जय बिहार, नजफगढ़ से शाहरुख फारूक, शबनम शाहनाज का मैसेज। और हमें लिखा है दिलावर खान, हसीना बानू, अलीजा नायब और लड्डू ने रघुबीर नगर से। और ये मैसेज कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल का कुणाल मेहरा के साथ दादरी गेट भिवानी से। हमें लिखा है संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ने दातार सिंह के साथ गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। और कनॉट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक, हिबा, आयसा, जोया और जैनब मरियम का मैसेज हमें मिला है। और सुरेंद्र संधू ने अनीता, रोहित, रितेश, शिखा और प्रीतिशा के साथ हमें लिखा है। और मैक्स हमें लिख रहे हैं पंजाब से, नवाशहर से। और ये मैसेज ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर का हमें मिला है आजाद नगर से, मेहराज जहां के साथ। और हमें लिखा कौशल्या देवांगन, रोशन लाल, हिमलता डिंपल ने मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, शुभचंद्र, मुलापुर, दाखा से हमें लिख रहे हैं। और राशिद हुसैन अंसारी ने हमें लिखा है कहां से नहीं पता। अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक का कैथल हरियाणा से, मधु नायक के साथ, पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से भी इन्होंने लिखा है। और इसके अलावा राहुल कुमार, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह का कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से मैसेज पहुंचा। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत और कमल साहनी पिंगवाला चौक से हमें लिख रहे हैं। साथ में हमें लिखा है शाहरुख फारूक का फिर से मैसेज। बहुत सारे मैसेजेस आप जब रिपीट करते हैं तो फिर असली नए मैसेजेस को ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता है और आप ही का टाइम जाता है इससे, तो कोशिश करिए आप ऐसा ना करें। अतर सिंह, राजकुमार, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, अद्विक का समयपुर दिल्ली से हमें मैसेज मिला है। भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीता और रुद्र का मैसेज हमें मिला है धनतरेंगी से। तो भाई अब और मैसेजेस तो शामिल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है। जल्दी से एक गीत को शामिल कर लेते हैं। और ये गीत की फरमाइश हमें भेजी है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान ने। कहां से? हनुमानगढ़, राजस्थान से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत इंतकाम फिल्म से। और इसी गीत के साथ आपसे इस सफर से लेती हूँ विदा। 11:10 पर फिर मिलेंगे तस्वीर के सफर में। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होना है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनित्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना DMK सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य को अनेक नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री आज जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे और 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसमें पहले केवल 8 डिब्बे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG Kar मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोडे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोडर ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वह जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरूद्व जागरूक किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजेय शक्ति का प्रमाण है। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में

भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, देश को, भारत को आप जितना जानेंगे, आप इसे उतना ही नया और अलग पाएंगे। इसकी वजह है कि यहाँ के कोने कोने में ऐसे ऐसे कीमती हीरे छुपे हैं जिन्हें तलाश करने के लिए चाहिए पारखी और कौतूहल वाली नजर। आप किसी भी दिशा में चले जाएं, कुछ ना कुछ नायाब मिल ही जाएगा। खास बात यह भी है कि अगर हर मौसम की बात करें, किसी भी मौसम में आप कहीं जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो हर तरह के अलग अलग डेस्टिनेशन मौजूद हैं। गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाइए, सुखद एहसास मिलेगा आपको। और अगर आप सर्दियों की बात करें तो सुनहरी रेत गर्माहट देती है। ऐसे में बरसात का हरा भरा रंग देखना हो तो है ना पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट। ये गुजरात से लेकर केरल तक देश के पश्चिमी सिरे पर पूरी आन बान और शान से अरब सागर से उठकर आए मेघों को अपने घने जंगलों से पुकारता है। ये मेघ भी मानसून के रूप में सिर्फ वेस्टर्न घाट को ही नहीं पूरे देश को सराबोर कर देते हैं। सापुतारा सहाद्री पर्वतमाला के बीच करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक शांत और मनोरम हिल स्टेशन है। किसी ने सच कहा है कि मंजिल से ज्यादा सफर सुहाना होता है, और ये बात आपको सापुतारा के रास्ते देखकर खुद महसूस हो जाएगी। अगर आप नेचर के बीच जाकर कुछ खूबसूरती का लुत्फ लेना चाहते हैं तो सापुतारा आपके इंतजार में है। पहुंच जाइए सापुतारा, क्योंकि ये जगह सचमुच आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है। बहुत खूबसूरत जगह है ये, और अगर हम ये कहें कि सापुतारा गुजरात की आंखों का तारा है तो ये सचमुच बिल्कुल सही बात है। आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको यकीनन ये महसूस होगा कि सापुतारा आज तक हमसे छूट कैसे गया, हमने इसे देखा क्यों नहीं। अभी भारत की अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे देश में ऐसी बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर हमने जाकर नहीं देखा है। हम बात करते हैं विदेशी यात्राओं की, लेकिन अगर हम इस जन्म में अपने देश को भी देखना शुरू करें तो शायद ये जन्म पूरा कम पड़ जाएगा। इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, क्यों हमें बाहर जाना है? पहले हम अपने देश को तो अच्छी तरह देख लें और उसके बाद कहीं और का प्लान करेंगे। फिलहाल मैं आपको ले चल रही हूं सापुतारा। आपको यहां पर क्यों जाना चाहिए, क्या कुछ है यहां देखने के लिए, और क्यों मैंने आज सापुतारा को चुना है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ इस सफर में। 11:13:34 हो चुके हैं और फिलहाल तस्वीर के इस सफर में मैं हूं आपकी दोस्त आरजी रेखा, क्रिस्टल वॉइस। तो चलिए आज चलते हैं आप और हम सापुतारा की यात्रा पर। फिलहाल शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, रफी साहब की आवाज में। ये रहा

0: दोस्तों आज हम चले हैं सापुतारा की सैर पर। सापुतारा की अगर बात करूं तो हिल स्टेशन डोंग जिले के जंगली क्षेत्र में ये स्थित है। यहाँ के जंगल मदहोश कर देने वाले हैं। टीक और बांस के पेड़ों से भरी ये वन संपदा कभी अंग्रेजों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। ब्रिटिश हुकूमत इन जंगलों पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन यहाँ के आदिवासी लोगों ने उनका सपना साकार नहीं होने दिया। तब ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ के आदिवासी कबीले के मुख्य सरदार के साथ एक संधि की, जिसके एवज में ब्रिटिश हुकूमत इन जंगलों से कीमती टीकवुड हासिल कर सकी। ये जंगल घर है वर्ली, खुम्बी, भील और डांगी आदिवासी समाजों का। कहते हैं ये लोग 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान यहां आकर बसे और यहीं के होकर रह गए। खुद को जंगल पुत्र कहने वाला आदिवासी समाज इन जंगलों से अथाह स्नेह करता है, जिसका असर इनके जीवन के हर पहलू पर आप देख सकते हैं। इनके वाद्य यंत्र बांस के बने होते हैं। इनके लोक नृत्यों में बांस के बने मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर पर बने टैटू में भी पेड़ों की आकृति का उपयोग होता है। बहुत सारी चीजें हैं इस जगह के बारे में जानने को। गीतों के साथ साथ जुड़े रहिएगा इस सफर में।
1: यूं ही तुम मुझसे

दोस्तों, सापुतारा की सैर पर चले हैं हम आज, जिसे लेक सिटी भी कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लेक सिटी भोपाल या उदयपुर को ही कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। देश में एक और लेक सिटी है सापुतारा। इसकी वजह यह है कि सापुतारा के बीचों बीच बनी एक सुंदर और मनोरम झील है, जो कि सैलानियों का खास आकर्षण है यहां पर। और इस झील में बोटिंग करने की सुविधा भी है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। बजट में यहां बोटिंग की सेवाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। यहीं लेक के नजदीक ही बहुत शांत और खूबसूरत बाग है, सापुतारा लेक गार्डन इसे कहा जाता है। और इसमें कई तरह के खूबसूरत पेड़ भी हैं, जिन पर पास के जंगल से आए सुंदर पक्षी भी अपना मनोरंजन करने पहुंच जाते हैं, जब यहां पर सैलानी पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं इस जगह की, जिसे हम सापुतारा कहते हैं, तो सापुतारा का मतलब है नागों का वास, ऐसी जगह जहां नाग बसते हैं। और ये बात सच भी है। डांग के

जंगलों में नागों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। होली के मौके पर यहां के डांगी आदिवासी समाज सर्पगंगा नदी के तट पर इन नागों की पूजा करते हैं और इसका प्रमाण यहां स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से भी मिलता है। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर महाराज नागों के ईश्वर माने जाते हैं। आम दिनों की अपेक्षा नाग पंचमी के दिन इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। वैसे कहते हैं कि सापुतारा का इतिहास भगवान राम के समय से भी है। यहाँ के लोगों की माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने वनवास के दौरान लंबे समय तक यहाँ पर रुके थे। और अगर मैं बात करूं इस जगह के तापमान की तो गर्मियों में सापुतारा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि सर्दियों में तापमान अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मानसून में यहां साल भर औसतन 2500 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, इसलिए यह हिल स्टेशन मानसून फेस्टिवल के लिए भी परफेक्ट माना जाता है। ये फेस्टिवल अगस्त से सितम्बर के आसपास चलता है। इसमें आप नायाब कुदरती नजारों के साथ साथ मनोहारी गीत संगीत, लोक संस्कृति और एडवेंचरस एक्टिविटीज का भी पूरा आनंद ले सकते हैं। इनका बंदोबस्त गुजरात टूरिज्म द्वारा किया जाता है और यहाँ पर और भी बहुत कुछ है घूमने के आकर्षण, जरूर बताऊंगी इस गीत के बाद। फिलहाल ये गीत सन ऑफ इंडिया फिल्म से लता जी की आवाज में और रफी साहब की आवाज में ये रहा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मैं प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी एक बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी, क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 11:39 और 37 सेकंड हो चुके हैं और आज

जो काई बादल जो हैं वो एकदम रूई जैसे लगते हैं, तो आप इस जगह का भी आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो महाराष्ट्र के नजदीक होने की वजह से यहाँ महाराष्ट्र की छाप भी देखने को मिलती है, तो आप यहाँ जा सकते हैं जिसे कहते हैं सापुतारा ट्राइबल म्यूजियम। इस म्यूजियम में डांगी आदिवासी समाज के जीवन को अलग अलग तरीकों से बड़े ही खूबसूरत ढंग से पेश किया गया है, जिसका शुल्क बहुत ही नाम मात्र का है, तो आपको यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। आप जंगल की सैर पर निकले हैं तो जंगल की सौगात से रूबरू होना तो बनता ही है, ऐसे में हनी बी सेंटर देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ प्राकृतिक रूप से शहद बनाने की प्रक्रिया से थोड़ी जान पहचान कीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ से शुद्ध शहद खरीद कर भी घर ला सकते हैं। और युवाओं के लिए गवर्नर हिल पर सनसेट पॉइंट के पास बना है सापुतारा एडवेंचर पार्क, जहाँ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर्स होते हैं, जिप लाइनिंग, ऐसे भी कई एक्टिविटीज हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको टेबल पॉइंट तक जाना होगा। टेबल पॉइंट के ही ये पार्क है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी की जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में पैराग्लाइडिंग नहीं होती, तो आप अपना जो भी प्लान कर रहे हैं वो इसके अनुसार ही करिएगा। अगर आप इसका मजा लेना चाहते हैं तो इस मौसम में जाने से परहेज करिएगा। सापुतारा डांग जिले में स्थित भारत के गुजरात राज्य का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन सहाद्री सीमा और डांग वन के साथ समुद्र तल से लगभग 873 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये भारत के उन खास अज्ञात स्थलों में गिना जाता है जो अब तक बहुतों की नजरों से दूर है। और भी कुछ बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो भाई, इससे पहले कि आगे कुछ बताऊं, एक चीज आपको याद दिला दूं कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन रहता है शाम 5:10 पर एक कहानी का, जिसे हम कहते हैं पानी पर लिखी कहानी। और आज की कहानी होगी गुमराह, जिसे लिखा है कुसुम लता ने। तो आप इस कहानी को जरूर सुनिएगा। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती जी की। शाम 5:10 पर कहानी गुमराह, पानी पर लिखी कहानी का ये खूबसूरत समय आपके लिए रहेगा, तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। फिलहाल हम चले हैं सापुतारा घूमने के लिए। तो सापुतारा में और क्या है घूमने को, ये बता दूं, इको पॉइंट है एक जगह, जो कि हिल स्टेशन भ्रमण की शुरुआत आप यहां के इको पॉइंट से कर सकते हैं। इको पॉइंट वो जगह है जहां थोड़ा जोर से बोलने पर खुद की आवाज ही गूंज कर सुनाई देती है। ये जगह सापुतारा के पास माथेरन में स्थित है और इको पॉइंट सापुतारा के सबसे नजदीकी पर्यटन आकर्षणों में से एक माना जाता है। ये इको पॉइंट कई झरनों के साथ पर्यटकों को एक शानदार परिवेश देता है। यहां के नजारों की अगर बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत है और यहां वातावरण काफी शांत है, तो थोड़ा एकांत समय अगर आप चाहते हैं तो आप यहां जा सकते हैं। फॉरेस्ट लॉग हट है सापुतारा हिल स्टेशन में। आप खूबसूरत फॉरेस्ट लॉग हट आरामदायक सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, तो यहां उसके लिए आप जा सकते हैं। यहां के लॉग हट यहां आने वाले सैलानियों के मध्य या बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अलग अलग जगह बने खूबसूरत फॉरेस्ट झोपड़ियां जहां के मेन आकर्षणों में से एक कही जा सकती हैं। सैलानियों में खासकर न्यूली वेड्स जो लोग होते हैं वो यहां पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और ये झोपड़ियां काफी सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। इनकी वास्तुकला जो है वो देखने लायक है, जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सैलानियों के लिए जंगल के बीच इन झोपड़ियों में दिन और रात बिताने की परमिशन है और यहां थोड़ा वक्त गुजार कर आप प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद जी भर कर ले सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हथगढ़ का किला है सापुतारा के प्राकृतिक आकर्षणों के साथ साथ आप यहां भी जा सकते हैं। ऐतिहासिक स्थल है ये, यहां भी आपको देखने के लिए काफी कुछ मिलेगा। ये किला 3600 फीट की ऊंचाई के साथ अपनी आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है और ये भारत के प्राचीन किलों में से एक है। यहां से आप सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अद्भुत नजारों का आनंद ले सकते हैं और चट्टानी इलाकों के जरिए से एक बहुत ही नैरो जो रास्ता है वो इस किले की तरफ जाता है, तो आप यहां पर भी पहुंच सकते हैं। अगर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो भी ये जगह आपके लिए खास है। और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जैसे कि लेक गार्डन है, यहां आप जा सकते हैं। सापुतारा झील है, आप इसे भी देख सकते हैं, एक पिकनिक स्पॉट है ये। और इसके अलावा सप्तशृंगी देवी मंदिर है जहां आप जा सकते हैं। ये करीब 51 शक्तिपीठों में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। ये कहा जाता है कि ये देवी खुद पर्वत के मुख पर एक चट्टान पर प्रकट हुई थी। मंदिर 7 चोटियों से घिरा है और इसलिए नाम सप्तशृंगी माता के नाम से रखा गया है। अलग अलग हथियारों को पकड़े हुए 18 हाथों वाली देवी का चित्रण लगभग 10 फीट लंबा है और आप यहां पर देखेंगे कि मूर्ति को सिंदूर से लेप किया गया है, किया जाता है, जिसे इस क्षेत्र में काफी शुभ माना जाता है, तो आपको यहां भी जरूर जाना चाहिए। आर्टिस्ट विलेज है एक सापुतारा में, आप यहां भी जा सकते हैं। और इस जगह की अगर मैं बात करूं तो ये

सबसे सुंदर जगह है, आर्टिस्ट गांव इस जगह की सबसे खूबसूरत प्लेस कही जा सकती है, जो शानदार सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों को दिखाती है। गांव के जो मूल निवासी जनजातियां हैं वो उनके जरिए ये तैयार की गई है, जिनमें पेंटिंग्स, मिट्टी के बर्तन, शिल्प, बांस शिल्प जैसी काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये सबसे अधिक मांग वाले सापुतारा पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे आमतौर पर स्कूल के बच्चों द्वारा देखने के लिए खास तौर पर जाना जाता है। ये लोग देशी कलाकृतियों में भाग लेने के लिए भी काफी यहां पर पहुंचते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वंसदा नेशनल पार्क है जो आप देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। यहां पर आपको बहुत से जंगली जानवरों को देखने का मौका मिल सकता है, तेंदुए, लकड़बग्घे, जंगली सुअर, सांबर, चार सींग वाले मृग और कई तरह के सरीसृप, पक्षी, बहुत सारे तरह की प्रजातियां। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पार्क में फूलों के पौधों की लगभग 450 के करीब प्रजातियां हैं, जैसे बांस की बात करें, दूध कोड, काकड़, तिमरू, हम्ब, कलाम, मोदत और हल्दू, सीसम आदि, ऐसे बहुत से वृक्ष आपको पौधे यहां पर देखने को मिल जाएंगे। कई आदिवासी आबादियों का घर भी है ये, तो आप यहां भी जा सकते हैं। और अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहें तो जो सबसे बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से मार्च के महीनों के दौरान है, इस जंगल में, इस जगह पे घूमने के लिए, इस राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए। सापुतारा पहुंचना कैसे है ये भी जान लेते हैं। सापुतारा का जो सबसे करीबी हवाई अड्डा है वो मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सापुतारा से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाई अड्डा भारत के कुछ प्रमुख शहरों और कुछ बाहरी देशों के साथ भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। हवाई अड्डे से आप बस ले सकते हैं या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टैक्सी भी आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, यहां पर इजिली आपको मिल जाएगा। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा नासिक राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, जो लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर है। आप यहां से भी पहुंच सकते हैं अगर भारत के ही किसी हिस्से से आप यहां पहुंच रहे हैं। इस हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए वाघई रेलवे स्टेशन भी है, जो आपको बाय ट्रेन पहुंचने के लिए इजी है, इसलिए इस रेलवे स्टेशन के थ्रू भी आप यहां पहुंच सकते हैं। पहाड़ी शहर से लगभग 30 मील दूरी पर यह स्थित है और वाघई रेल हेड देश के विभिन्न कोनों से प्लेटफॉर्म पर आने वाली कई ट्रेनों का स्वागत करता है और लगभग 52 किलोमीटर दूरी पर है ये सापुतारा से। अगर आप सड़क से जाएं तो सापुतारा देश के अलग अलग शहरों और कई बाकी शहरों से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। कोई भी अपने बजट के अनुसार प्राइवेट पब्लिक बस आप लेकर यहां पहुंच सकते हैं। और सापुतारा सूरत, नासिक, अहमदाबाद जैसे आसपास के प्रमुख शहरों से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, तो आप चाहें तो इनके जरिए भी यहां पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से आपको एक गीत सुना देती हूं, और अगर वक्त बचा तो सापुतारा के बारे में और भी कुछ आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगी। फिलहाल एक गीत मेरे महबूब फिल्म से।

दोस्तों, सापुतारा की संस्कृति में तो बहुत कुछ है जानने को, देखने को। अगर आप यहाँ कुछ स्वाद चखना चाहते हैं यहाँ का, तो क्योंकि गुजराती संस्कृति से प्रभावित है ये जगह और गुजरात में है, तो थेपला, ढोकला, खीचू, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप यहाँ पर चख सकते हैं। रागी से बनी हुई नागली या फिर मकई और करी भात भी यहाँ पर बहुत लोगों को पसंद आता है, तो आप इसका टेस्ट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आदिवासी संग्रहालय जा सकते हैं, जहां पर आपको यहाँ के म्यूजियम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ आभूषण, मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक वाद्य यंत्र, मुखौटे, बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर रखे हैं। डांग जनजाति की सदियों पुरानी विरासत को ये यहां दिखाने के लिए म्यूजियम बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा में मानसून के दौरान मनाए जाने वाले मेघ मल्हार उत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मानसून में यहां पर पहुंच जाएं। और अगर आप यहां से कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, तो बांस की कलाकृतियां, वर्ली पेंटिंग, रागी आदिवासी का हस्तशिल्प जिसमें की हाथ से बनी कढ़ाई वाले वस्त्र, लकड़ी के खिलौने, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको आप खरीद कर ला सकते हैं। शहद और जैविक उत्पाद भी आप यहां से खरीद सकते हैं, यहां के हनी बी सेंटर से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, शहद खरीद कर ला सकते हैं। हर्बल उत्पाद और अलग अलग तरह के पौधों की कलमें आप खरीद कर ला सकते हैं, जिन्हें आप अपने घर में आकर लगा सकते हैं और अपने घर को भी हरा भरा कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट विलेज आप जा सकते हैं, जहां से आप वर्ली पेंटिंग, हस्तशिल्प और बांस के उत्पाद खरीद कर ला सकते हैं। और अगर मैं कहूं तो इस जगह से बहुत सी कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह भी आपको उचित दाम पर मिल जाएंगे, तो आप इन्हें भी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, ताकि आपको सापुतारा की यादें हमेशा ताजी रहें। वेल, अभी तो क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है कि मैं आपसे बातें करूं, लेकिन अब इसी के साथ आपसे लूंगी इस सफर से विदा। मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस फिर किसी रोज किसी और सफर में आपसे जरूर मिलूंगी। आज की तस्वीर में इतना ही, लेकिन 24/7 FM गोल्ड आपके साथ है, तो सुनते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जुड़े रहिए आपके पसंदीदा चैनल के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं आपकी दोस्त लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा, और अब वक्त है हिंदी अंग्रेजी समाचारों का। उसके बाद बहुत कुछ है, जुड़े रहिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधीय नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परन्तु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और उसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

आंगन। पुराने लोग नया हौसला तो क्या देंगे, पुराने लोग नया हौसला तो क्या देंगे, मगर बुजुर्गों से मिलते रहो दुआ देंगे। डॉक्टर अख्तर नजमी का यह शेर जैसे एक बड़े सच का दस्तावेज है। आप कितने भी थके हों, हारे बूझे या टूटे हों, बस चंद लम्हों के लिए उन दरख्तों की छांव में बैठ जाएं जिन्हें हम अपने बुजुर्ग कहते हैं, तो सारे मसलों का काफूर होना तय जानिए। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। दुआ कीजिए कि ऐसे सायादार दरख्त हमेशा तने और बने रहें, ताकि हम ताउम्र तेज धूप के बावजूद उनकी ठंडी छांव में बैठ सकें। और आज यानी शुक्रवार को हम भी यही कोशिश करते हैं कि घर आंगन के इन मजबूत और घनी सायों की छांव में अपना समय बिताएं, एक कदम बुजुर्गों की जानिब उठाएं। नमस्कार श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का ये सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ।

0: जी हाँ, एक दिन क्यों, आज आइए हो ना। शुक्रवार के दिन आपके साथ लेकर कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर, और ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म बसीरा से, और गाया था आशा भोसले ने। दोस्तों, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है, और इसी उपलक्ष्य में प्रतिदिन हम आपको इस प्रतिष्ठित संस्था के गौरवमय इतिहास से जुड़ी विशेष बातें बता रहे हैं। इसी तारतम्य में आज बात उस ऐतिहासिक क्षण की, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी भवन पहुंचे थे। भारतीय जनमानस में रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं रहा, बल्कि भावनाओं, विचारों और देश की चेतना से जुड़ा एक सशक्त स्वर भी रहा है। आकाशवाणी के इतिहास में 12 नवंबर 1947 का दिन विशेष महत्व रखता है, जब महात्मा गांधी पहली और एकमात्र बार आकाशवाणी भवन पहुंचे थे। दिल्ली स्थित आकाशवाणी केंद्र में उस दिन बापू ने देशवासियों को संबोधित किया था। गांधी जी का संदेश शांति, सौहार्द और मानवीय एकता का संदेश बनकर प्रसारित हुआ। आकाशवाणी में बापू के इसी ऐतिहासिक आगमन की स्मृति में हर वर्ष लोक प्रसारक दिवस मनाया जाता है। विशेष बात यह है दोस्तों कि जिस स्टूडियो में महात्मा गांधी ने देशवासियों को संबोधित किया था ना, उसे आज आकाशवाणी भवन दिल्ली में बापू स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। यह दिन केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं, बल्कि जनसंचार के उस उद्देश्य की भी याद दिलाता है, जहां माध्यम का केंद्र समाज और जनता होती है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर, 100.1 MHz FM गोल्ड पर।

और हम बात कर रहे थे आकाशवाणी की। आकाशवाणी यानी रेडियो, हमारा अपना रेडियो। और अगर आपने कभी गौर किया हो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे गाने हुए हैं जो कहाँ पर प्रसारित किए गए हैं, रेडियो पर। तो खैर सारे गाने ही प्रसारित किए गए, पर आपको पता है बहुत से गानों का फिल्मांकन भी ऐसी जगह पर किया गया है जो स्टूडियो है, और जहां पर गाने बकायदा रेडियो में बज रहे हैं, इस तरह से फिल्म में दिखाया गया है। ऐसे बहुत से गाने हैं, लेकिन आज हम जो गाना लेकर आए हैं वो है फिल्म अभिमान का। आइए सुनते हैं ये लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के।

दोस्तों, बढ़ती उम्र केवल शारीरिक बदलाव ही नहीं लगती, बल्कि कई बार अकेलापन, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और सामाजिक असुरक्षा जैसी परिस्थितियां भी हमारे सामने लेकर आती है। ऐसे समय में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और सहारा मिलना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से ना भारत सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की है। ये योजना जो है ना, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य जो है ना दोस्तों, वो है वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहज बनाना। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें, वृद्धाश्रम सहायता दी जाती है, डे केयर सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद बुजुर्गों को सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रयास इस योजना में किया जाता है। अटल वयो अभ्युदय योजना जो है ना, ये केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उस भावना का प्रतीक है जो यह याद दिलाती है कि समाज की जड़ें उतनी ही मजबूत होती हैं जितना सम्मान वो अपने बुजुर्गों को देता है। जी हाँ, अटल वयो जो ये योजना है, आप इसको जरूर जरूर इसका लाभ उठाएं। अटल वयो अभ्युदय योजना आप लोगों के लिए ही है और अपने आसपास के बुजुर्गों को भी इस बाबत आप जानकारियां जरूर उपलब्ध कराएं और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप और ज्यादा इस योजना के बारे में जान सकते हैं।

घटित था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गठित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर।

0: अशोक कुमार की आवाज में आपने ये गीत सुना। साथ था आशा भोसले का और फिल्म थी खूबसूरत।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
0: जी हाँ दोस्तों, ये विशेष कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा हर दिन। और आप ये कार्यक्रम जो भी सुन रही हैं, ये है एक कदम बुजुर्गों की ओर और मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो हम सफर सोनाली। तो हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की। अब देखिए दोस्तों, आप और मैं हमेशा इस माध्यम के जरिए बात करते हैं और आपकी बातें हम तक कैसे पहुंचती हैं? हम तक पहुंचती हैं आपके ईमेल के जरिए। और ईमेल आईडी हमारा क्या है? वो है fmgoldga@gmail.com। तो दोस्तों, आपकी बातों का, आपकी राय का, आपके मशवरों का, आपके कमेंट्स का इंतजार हम लगातार करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। वैसे भी जाने माने उपन्यासकार ऑस्कर वाइल्ड है ना, वो हमेशा कहते हैं कि बुढ़ापे की सच्ची त्रासदी ये नहीं है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि बुढ़ापे की सच्ची सुंदरता ये है कि हमारी आत्मा जवान ही रहती है। वैसे भी उम्र मन की बात है, शरीर की नहीं। अगर आप परवाह नहीं करते तो उम्र का कोई महत्व नहीं। हमारा मानना है कि जीवन का दूसरा भाग पहले भाग से बेहतर होता है। पहला भाग जीवन जीने के तरीके खोजने में व्यतीत होता है और दूसरा, जी हाँ, दूसरा भाग उसका आनंद लेने में। बुजुर्ग होने में ना एक मौन सुंदरता होती है, बुद्धि गहराती है, यादें बढ़ती जाती हैं और फिर हमारे भीतर अक्सर वही जिज्ञासु अनियंत्रित युवा आत्मा जीवित रहती है। दुनिया हमसे उम्मीद करती है कि हम अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन हमारा दिल जो है ना, वो अब भी सपने देखता है, अब भी वैसा ही हंसता है, अब भी वैसे ही जोश के साथ वो हर बात करने की उम्मीद करता है जैसे कि अपनी जवानी में करता था। और उम्र ना, बार बार हम एक ही चीज कहेंगे, ये एक संख्या है। आत्मा जो होती है वो मोमबत्तियां नहीं गिनती, वो सिर्फ वो पल गिनती है जो हमें जीवित होने का एहसास कराते हैं। कभी भी युवा दिल से जीना मत छोड़िए, जिंदा दिल रहिए और जीवन को भरपूर तरीके से जिए और इसे अपनी खुली बाहों से अपनाइए, रोटिए, मनाइए, खूब हंसिए, खूब खिलखिलाइए, अपने जितने शौक हैं उनको पूरा कीजिए, जिंदगी का लुत्फ लेते रहिए और हाँ, खूब अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए, जैसे कि कौन सा गाना, ये वाला।

फिल्म दाग में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में ये गीत। और दोस्तों, हमने आपसे गुजारिश की थी कि आपकी बातें हमारे साथ बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए, ऐसा कभी हो कि हम आपसे कोई भी चीज मांगे और आप हमें ना दें। देखिए, हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये है नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से। लिखते हैं, चेहरे की चमक और मुस्कान की ऊंचाई और मकान की ऊंचाई पे मत जाना, जिस घर में बुजुर्ग हंसते हुए मिल जाएं, समझ जाना घर अमीरों का है। क्या बात है, बहुत सही बात आपने कही नवीन जी। और आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।

देखिए, हमारे साथ आप लोग लगातार बनी रहते हैं। आप लोगों की ईमेल्स के जरिए हम आपकी बात आप तक पहुंचा पाते हैं और आपकी बात हम तक पहुंच पाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बढ़ती उम्र को अक्सर लोग ठहराव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्यों से पीढ़ियों तक को प्रेरणा देते रहते हैं। पद्मश्री सालूमरदा थिमक्का ऐसी ही एक प्रेरक शख्सियत थी जिन्होंने यह साबित किया कि सेवा और संकल्प की कोई उम्र नहीं होती। कर्नाटक की रहने वाली सालूमरदा थिमक्का ने अपने पति के साथ मिलकर वर्षों तक सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाए और उनकी देखभाल की। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका प्रकृति के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। सालूमरदा जी नाम है ना, ये जो एक शब्द है ये कन्नड़ भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है पेड़ों की कतार। ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सड़क किनारे लंबी कतारों में बरगद के पेड़ लगाए थे। 100 वर्ष से अधिक आयु तक उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अपने जीवन में यह साबित किया कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति समाज के लिए और अधिक प्रेरणादायक बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। वर्ष 2025 में उनके निधन के साथ देश ने पर्यावरण संरक्षण की एक ऐसी प्रेरक आवाज को खो दिया जिसने सादगी और समर्पण से प्रकृति सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, सालूमरदा जी का जो देहांत है वो 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में हुआ और वे अपने पीछे हरियाली की एक जीवंत विरासत छोड़ गईं जो गांवों और लोगों के जीवन में फैली हुई है। उनका पेड़ छाया प्रदान करते रहते हैं और वन्य जीवों का भरण पोषण करते रहते हैं, मिट्टी को समृद्ध करते हैं और व्यक्तियों और समुदायों को प्रकृति को लगाने मतलब प्रकृति में पेड़ लगाने, उसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

यसुदास की आवाज में आनंद आश्रम फिल्म से आप ये गाना सुन रहे थे। दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़े हैं। ये हैं उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, और इन्हें गाने और कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, हमारे एक और नियमित श्रोता सुदर्शन मुखी जी, इनके साथ अनिता मुखी और सिमरन मुखी, ये भी कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं। और देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। देखिए, प्रशंसा और तारीफें किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ना इसके साथ एक चीज और भी होती है कि आपके मशवरे, आपकी बातें जो हम तक बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा इनका इंतजार रहता है, आप अपनी बातें और कभी कभी शिकायतें भी हमारे साथ बिल्कुल साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्हीं राय और मशवरों के साथ ही हमारा कार्यक्रम और निखार पाएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में परिवार को हमेशा साथ रहने और एक दूसरे का सहारा बनने की परंपरा से जोड़ा गया है, लेकिन बदलती जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के बीच आज वृद्धाश्रम समाज की एक वास्तविकता बनते जा रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए ये ओल्ड एज होम सुरक्षा, देखभाल और साथ का एक सहारा बनकर सामने आते हैं। वहां उन्हें रहने, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अपनी हमउम्र लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। लेकिन दूसरी ओर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या वृद्धाश्रम केवल आवश्यकता है या बदलते सामाजिक संबंधों का एक संवेदनशील सच भी। कभी जिन माता पिता ने अपना पूरा जीवन परिवारों को संवारने में बिताया, बढ़ती उम्र में वही कई बार अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करते दिखाई देते हैं। ऐसे में वृद्धाश्रम केवल भवन नहीं रह जाते, बल्कि समाज के बदलते रिश्तों का आईना भी बन जाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कई परिवार परिस्थितियों वश या फैसले लेते हैं, और कई बार बुजुर्ग अपनी इच्छा से भी इन ओल्ड एज जो जगह होती है, यहाँ का जीवन चुनते हैं। इसीलिए आवश्यकता केवल बुजुर्गों को सहारा देने की नहीं है, है ना, बल्कि उन्हें सम्मान, संवाद और अपनापन देने की भी है, क्योंकि जीवन की सांझ में सबसे अधिक जरूरत किसी सुविधा की नहीं बल्कि अपनेपन की होती है। और इस अपनेपन में एक सबसे अच्छा जो एक सहारा होता है वो अच्छा संगीत होता है। और अच्छा संगीत आप कहाँ सुनते हैं? जी हाँ, यहाँ एफएम गोल्ड पर। तो अभी हम बहुत गमगीन, मतलब जिसे कहते हैं, एक बहुत ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जिसको सुनकर, जिसके बारे में बात करके हम भावुक हो जाते हैं। और देखिए, अपने घर के बुजुर्ग हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं। बस हर बुजुर्ग अपने घर

में उसी सम्मान और इज्जत के साथ रहे और हर जगह उन्हें वही प्यार और अपनापन मिले जिसके वे हकदार हैं। तो बस यही तो हमारी आशा और आप सभी से हमारी गुजारिश भी होती है। तो ये तो सब खैर बातें हैं ही, आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

फिल्म दूसरा आदमी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, और जीवन का जो सांझ का समय होता है ये केवल बढ़ती उम्र का नाम नहीं होता, बल्कि ये वो दौर होता है जब व्यक्ति को सबसे अधिक अपनापन, संवाद और सम्मान की आवश्यकता होती है। बचपन में जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, समय के साथ वही हाथ सहारे की प्रतीक्षा करने लगते हैं। आज बदलती जीवन शैली, हमारी व्यस्त दिनचर्या और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के बीच कई बुजुर्ग अकेलेपन का अनुभव करते हैं। ऐसे में उनके लिए केवल सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि ना एक आत्मीय बातचीत, जी हाँ, साथ में बैठना, उनके साथ बात करना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जो उन्हें अच्छा लगे, वो हंसें, वो खुश रहें और उन्हें लगे कि हाँ आज भी उनकी जरूरत हमें है। तो कई बार ना एक कोई बहुत ज्यादा

चीजें इसके लिए दरकार नहीं होती। क्या होता है, बस एक हल्का सा संवाद, कुछ पल उनके साथ बैठना और उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, ये भी बहुत बड़ी ना एक ऐसी चीज है जो उनके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वे केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वो अनुभव, परंपरा और जीवन मूल्यों की जीवित धरोहर हैं, मानेंगे ना। और इसीलिए क्या जरूरी है, जरूरी है कि जीवन के सांझ में उन्हें यह महसूस हो कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि परिवार और समाज का एक सम्मानित और बहुत प्यारा हिस्सा भी हैं। क्योंकि उम्र ढलने के साथ जरूरतें कम नहीं होती, बस इन्हें कहने का तरीका हल्का सा शांत हो जाता है। हाँ, और देखिए उन्होंने जीवन भर अपनी सारी चीजों को एक तरफ रखकर हमें बड़ा किया, हमारे लिए अपनी सारी तमाम जिम्मेदारियां उठाई। तो बस उनको आप प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए।

फिल्म चोर मचाए शोर में आप सुन रहे हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, और इसी गीत के साथ मुझे यानी आपके रेडियो हमसफर सोनाली को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार हैं। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
2: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों

साहित्य अनुश्रागी श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी भटनागर और आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास को समेटे इस विशेष कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज इस मंच से हम नमन कर रहे हैं संगीत जगत के एक ऐसी अद्वितीय और युग प्रवर्तक जोड़ी को जिसके नाम मात्र से ही मेलोडी का एक सुनहरा सवेरा कौंध जाता है, और वो नाम है राम लक्ष्मण। आइए इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं देव कोहली के लिखे बोल और लता जी और एसपी बालासुब्रमण्यम जी के स्वरों से सजे इस सदाबहार तराने के साथ।

राम लक्ष्मण जी के संगीत ने हिंदी सिनेमा के एक सकारात्मक और जादुई युग का आह्वान किया। आइए उसे याद करें राजश्री प्रोडक्शंस की उस कालजयी कृति के साथ जिसने मेलोडी का इतिहास ही बदल दिया। लता जी के अलौकिक स्वरों और असद भोपाली के शब्दों से सजी ये अनुपम भेंट।

श्रोताओं, इस विख्यात नाम राम लक्ष्मण के पीछे अमर मैत्री और समर्पण की एक ऐसी मर्म स्पर्शी गाथा छिपी है जो इतिहास में मिसाल है। लक्ष्मण का असली नाम श्री विजय पाटिल था, जिन्होंने नागपुर के अमर विजय ऑर्केस्ट्रा से अपना सफर शुरू किया और मुंबई आकर जब वे अपने परम मित्र सुरेंद्र कदम से मिले तो मराठी सिनेमा के पुरोधा दादा कोंडके ने इस युगल को राम लक्ष्मण नाम दिया। वर्ष 1976 में अपनी पहली हिंदी फिल्म एजेंट विनोद साइन करते ही राम यानी सुरेंद्र कदम जी का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद विजय पाटिल जी ने अकेले ही 4 दशकों तक संगीत रचा, परंतु अपने दिवंगत मित्र को अमर रखने के लिए क्रेडिट से उनका नाम कभी नहीं हटने दिया। आइए सुनते हैं उनके इसी अटूट पारिवारिक और आत्मीय जज्बात को बयां करता फिल्म हम साथ साथ है का ये बेहद सुरीला शीर्षक गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
0: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। विज्ञापन के बाद हम एक बार फिर याद कर रहे हैं बॉलीवुड के प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण के सिनेमाई योगदान को। श्रोताओं, 80 के दशक के उस अंतिम दौर का स्मरण कीजिए जब संपूर्ण सिनेमा जगत मुख्य रूप से उग्र एक्शन फिल्मों और तीव्र संगीत से घिरा हुआ था। उस संक्रमण काल में रांची प्रोडक्शंस के सूरज बड़जात्या ने इस जोड़ी पर विश्वास जताया और वर्ष 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया के साथ मधुरता का एक नव सवेरा उदित हुआ। पाश्चात्य सिंथेसाइजर और पारंपरिक ढोलक के समन्वय से बने इस कालजयी संगीत ने सलमान खान को देश का प्रिय रोमांटिक स्टार बनाया और राम लक्ष्मण को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। तो आइए उसी दौर से सुनते हैं ये अगला गीत। रस खोलते हैं कानों में एसपी बालसुब्रमण्यम जी के सुरों से सजे इस अमर गीत के साथ।

श्रोताओं, राम लक्ष्मण के संगीत की ये भी एक अद्भुत विशेषता रही कि उनकी बनाई धुनें फिल्मी पर्दे से निकलकर हमारी असल जिंदगी के पारिवारिक उत्सवों का अभिन्न हिस्सा बन गई। वर्ष 1994 की महाकृति हम आपके हैं कौन में उन्होंने भारतीय लोक संगीत की पारंपरिक मिठास और ढोलक की ठेठ थाप का ऐसा जादुई ताना बाना बुना जिसने देश में शादियों के उत्सव को एक नया रंग दे दिया और विशेषकर

ये अगला गीत ये तो समूचे भारत में विवाह के रस्म रिवाजों का एक अनिवार्य और आत्मीय साउंडट्रैक बन गया, जिसमें हमारे संयुक्त परिवार के प्रेम की पवित्र सुगंध रची बसी है। और यही नहीं, इस फिल्म के सभी गीत ऐसे हैं। तो आइए सुनते हैं देव कोहली के लिखे शब्दों में सजी ये अत्यंत मधुर प्रस्तुति।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। विज्ञापन के बाद हम फिर याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में संगीत की अमर जोड़ी राम लक्ष्मण के लोकप्रिय गीतों को। श्रोताओं, जहां एक ओर राम लक्ष्मण जी ने राजश्री की फिल्मों में पारिवारिक मेलोडी रची, वहीं दूसरी ओर वे सस्पेंस थ्रिलर के मिजाज को भी बखूबी समझते थे। इसका सटीक प्रमाण मिला वर्ष 1991 की रहस्यमयी फिल्म 100 डेज में, जहां उन्होंने वेस्टर्न बीट्स और सिंथ पॉप का ऐसा अनूठा मिश्रण तैयार किया जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। आइए सुनते हैं लता जी और बालासुब्रमण्यम जी के स्वरों से सजी राम लक्ष्मण की ये थिरकती हुई रचना।

तो हमें ज्ञात होता है कि वे वास्तव में एक बेमिसाल कलाकार थे। विजय पाटिल एक ऐसे समर्पित मनीषी थे जिन्होंने अपने परम मित्र और जोड़ीदार सुरेंद्र कदम के असमय बिछड़ जाने के बाद भी मित्रता के पावन बंधन को अपने संगीत में सदा जीवित रखा और चार दशकों तक अकेले ही भारतीय सिनेमा को मेलोडी के अद्भुत उपहार दिए। उनकी कालजयी धुनों ने न केवल सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए बल्कि हमारी लोक संस्कृति और पारिवारिक उत्सवों को भी एक अनूठा रस प्रदान किया। श्रोताओं, वर्ष 2021 में भले ही विजय पाटिल जी भी इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनकी सुरीली विरासत आज भी हर गूंजते हुए सुर के साथ अमर है। अब समय के इशारे पर कार्यक्रम को यहीं विराम देकर मैं आपसे अनुमति लेती हूं। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस मधुर गीत के साथ प्रियांशी भटनागर का आप सभी को सस्नेह नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले पांच साल में सरमायाकारी को दोगुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नजर कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। भारत और कुब्रुस ने आज नई दिल्ली में मुख्तलिफ मैदानों में एक दूसरे के साथ बहुत से मुआहदे किए हैं, जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का क्याम, इख्तिरा और टेक्नोलॉजी, आला तालीम और तहकीक और सकाफती तआवुन शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शोबों में दो तरफा तआवुन को मुस्तहकम बनाने के बारे में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ बातचीत की।

0: दोनों रहनुमाओं ने कसीर मुल्की फोरमों में तआवुन समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के मामलात पर तबादले ख्याल किया। अपने मुश्तरका बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान दोस्ती न सिर्फ मजबूत है बल्कि मुस्तकबिल में ताबनाक भी है। उन्होंने कहा कि पिछली दहाई में कुब्रुस से भारत में सरमायाकारी तकरीबन दो गुना हुई है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे के बाद बहुत से नए इम्कानात पैदा हुए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को एक बार फिर दो गुना करना है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: कुब्रुस के सदर जनाब निकोस ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन भारत ताल्लुकात में पिछले साल काफी वसत आई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल इन ताल्लुकात में वजीर आजम मोदी के कुब्रुस के दौरे से शराकत दारी की रफ्तार में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। कुब्रुस के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और कुब्रुस के दरमियान करीबी और देरीना शराकत दारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान अगले साल फरवरी में सिफारती ताल्लुकात के 65 साल पूरे होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत पूरी सरहद को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में ड्रोन, रडार, कैमरे और दीगर तकनीकी वसाइल शामिल किए जाएंगे। उन्होंने ये काम एक ऐसी सरहद के हिफाजती फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है जिसे पार करना मुमकिन न हो, जिसके लिए स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत आने वाले साल में सरहदी हिफाजती फोर्स के सलामती निजाम में हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बैन अल-अक़वामी सरहदों की सिक्योरिटी को चैलेंजों से निपटने के एक अलहदा काम के बजाय वसीतर इलाकाई जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जनाब शाह ने कहा कि कई तरह के चैलेंजों और दुश्वार हालात के बावजूद बीएसएफ ने लगातार मुल्क का नाम रोशन किया है। जनाब अमित शाह ने दरअंदाजी, मनुष्यात की स्मगलिंग, जाली करेंसी के चलन और हथियारों और नशावर अद्वियात की स्मगलिंग समेत उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात को उजागर किया। वजीर दाखिला ने ज्यादा मरबूत और जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया और रियासती पुलिस, मरकजी मुसल्ला फोर्सेज, सुराग रसा एजेंसियों और मकामी इंतजामिया के माबैन और ज्यादा तालमेल की जरूरत भी उजागर की। इंतखाबी कमीशन ने आज 10 रियासतों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। साबिक वजीर आजम एचडी देवगौड़ा, मरकजी वजरा जॉर्ज क्यूरिन और रवनीत सिंह वारकान हैं जिनके मुद्दतकार अगले महीने खत्म हो रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट खाली हो जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में यकुम जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 18 जून को पोलिंग होगी। उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। कमीशन ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा के जिमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया है। ये सीटें महाराष्ट्र की नायब वजीर आला सुनेत्रा अजीत पवार और AIADMK के रुकने पार्लियामेंट CV शनमुगम के हालिया रियासती असेंबली इंतखाबात में मुंतखब होने के बाद खाली हो गई हैं। इन सीटों के लिए भी 18 जून को ही इंतखाबात कराए जाएंगे। केरलम में 7 मरतबा के कांग्रेस एमएलए तिरुवंचूर राधा कृष्णन को एक तारीखी सैरुखी मुकाबले में 16वीं केरलम कानून साज असेंबली

0: का स्पीकर चुन लिया गया है। पहली बार ऐसा है कि इस चुनाव में बरसरे इख्तदार यूडीएफ बाएं बाजू और बीजेपी की क्यादत वाले एनडीए के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बरसरे इख्तदार यूडीएफ उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 140 रुकनी असेंबली में 101 वोटों से स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। अपोजिशन एलडीएफ उम्मीदवार एसी महीउद्दीन ने 65 वोट जबकि बीजेपी उम्मीदवार बीबी गोपागोपाल ने 3 वोट हासिल किए। ऐसा पहली बार है कि बीजेपी ने केरलम में स्पीकर का चुनाव लड़ा हो। नायब स्पीकर के लिए इंतखाब 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यूएपीए केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। इस केस का ताल्लुक 2020 के शिमाल मशरकी दिल्ली के फसादात के पीछे मुबैना एक बड़ी साजिश से है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की एक डिवीजन बेंच ने उमर खालिद की रिहाई के लिए सख्त शराइत के साथ 1 से 3 जून तक की इजाजत दी है। उमर खालिद ने 15 दिन की उबूरी जमानत चाही थी ताकि वो अपने मरहूम चचा के चहलुम की रसूम में शिरकत कर सकें और अपनी वालिदा के ऑपरेशन से पहले और बाद में उनकी निगहदाश्त कर सके। अदालत ने हिदायत दी कि खालिद को सिर्फ एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करना होगा और तफ्तीशी अफसर के साथ लगातार राब्ते में रहना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सरबरा लालू प्रसाद यादव, उनके कुनबे के अफराद और दीगर के खिलाफ इल्जाम तय करने के बारे में अपना फैसला 9 जून तक मुलतवी कर दिया है। इस केस का ताल्लुक आईआरसीटीसी होटल घोटाले में मुबैना तौर पर कालेधन को जायज बनाने से है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्म लहर चलने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ 2 तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को 2 गुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नजर कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार हैं। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: केरल में

0: सात बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
1: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2 चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
2: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम

0: बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम उन्नत किसान में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं हूँ आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ हैं
1: विनोद कुमार।
0: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी हाँ, तो आज विनोद कुछ खास बात होगी कार्यक्रम में, क्योंकि हर बार हर रोज हम एक नए विषय के साथ हाजिर हो जाते हैं और हमारे बीच हमारे एक खास विशेषज्ञ भी होते हैं। तो आज का जो विषय रहेगा वो क्या
2: रहेगा? कृषि क्रियाओं द्वारा ऊसर भूमि सुधार, ऊसर भूमि बंजर भूमि, और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर खजांची लाल जी। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि आज हमारा जो विषय है वो कह रहा है कि कृषि क्रियाओं द्वारा ऊसर भूमि में किस तरह से सुधार करेंगे, तो हमारे किसान भाई भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और उनका ये रहता है कि जो फोन नंबर है ना विनोद, धीरे धीरे बताया जाए। तो फोन नंबर हम इन्हें बता देते हैं आज के, कि आज सीधे आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं 23 42 10 81 और 23 42 10 83

0: पे आप सीधे फोन कीजिए और आज विषय से संबंधित फोन आप कर सकते हैं और इस विषय पे अपने सवाल पूछ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बात करते हैं सबसे पहले ऊसर भूमि की। ऊसर भूमि भी हम देखते हैं कि दो तरीके की होती है, क्यों ना सबसे पहले हम अपने जितने भी श्रोता है उनको ये बताएं कि ऊसर भूमि होती ही क्या है।
2: या आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है, ऊसर भूमि, क्योंकि अक्सर हमारे किसान भाई उसके बारे में कंफ्यूजन में रहते हैं, ऊसर भूमि है क्या। ऊसर भूमि का मतलब है बंजरपन, जो बंजर जमीन है
1: जी,
2: या अनुपयुक्त जमीन है। उस ऐसी इस जमीन, जमीनों को हम लूणी भी कह देते हैं, रे भी कहते हैं, कलर भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में, आम बोलचाल की भाषा में अलग अलग नाम है,
1: जैसा जैसा क्षेत्र है अकॉर्डिंग वो कहते रहते हैं।
2: हाँ, लेकिन इनके उचित प्रबंधन के लिए हमें इनको कैटेगराइज करना पड़ता है
1: जी।
2: वो जैसे आपकी घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी है, विनिमयशील सोडियम कितना है, पीएच मान कितना है, पौधा कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, और उनके प्रबंधन के लिए हमें इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं
1: जी।
2: पहले कैटेगरी है क्षारीय, जिसको हम ऊसर भी कह देते हैं वैसे टेक्निकली, और दूसरी लवण है,
1: मतलब जिसमें हम देखते हैं खेत में सफेद सफेद जो एक परत है नमक की नून की, वो ऊपर आ जाए।
2: हाँ, जो आपने जैसे पूछा कि सफेद परत, ये जो परत आती है, ये आती है लवणीय भूमि में,
1: लवणीय में,
2: ये क्षारीय में नहीं आती, लवणीय में आती है।
1: तो क्षारीय की पहचान क्या है डॉक्टर साहब, जैसे लवणीय के दूर से पहचान हो जाती है हमें?
2: हाँ, जैसे आपने कहा लवणीय पे सफेद परत जम जाती है, उसी तरह क्षारीय में यदि आपका पानी, बरसात का पानी या आपने सिंचाई दे दी, कई कई दिन तक पानी खड़ा रहेगा।
1: अच्छा।
2: और इसके मिट्टी के अंदर हवा या पानी का आवागमन खत्म हो जाता है,
1: जब हमारे पानी के सोर है वो बंद हो जाए।
2: हाँ, वो एकदम जो उसके अंदर मिट्टी के छेद हैं या मिट्टी की जो भौतिक अवस्था है वो खराब हो जाती है, जिससे कि आपकी पपड़ी बन जाएगी, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, या हैवी, मतलब काफी सख्त हो जाती है, जिससे पौधों का या बीजों का अनुकरण काफी कम हो जाता है। और यदि वहां से कोई रन ऑफ या बाहर निकलता है तो वो भी काफी गंदला निकलेगा, क्योंकि उसमें नीचे जा नहीं सकता, तो इस तरह से उसके पौधे के बढ़वार पे फर्क पड़ जाता है। इस ये होता है क्षारीय भूमि में। और जबकि लवणीय भूमि में जो घुलनशील जो साल्ट है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसको जिसका हम टेक्निकल उस फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 dSm/m, पीएच मान जो इनका है 8.2 से कम होता है, और इसमें जो साल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो जो घुलनशील जो साल्ट हैं उनका वाष्पीकरण होने की वजह से वो मिट्टी के ऊपर जमा हो जाते हैं, और जिससे कि वो एक तरह से व्हाइट कलर देते हैं, इनको कहते हैं लवणीय।
1: लवणीय,
2: हाँ।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे बात करेंगे खासतौर से जो लवणीय भूमि है, पहले उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, और मतलब जैविक तरीके से, ज्यादा खर्चा ना करके दूसरी चीजों पर ना जाए, जैविक तरीके से हम कैसे उसको सुधार सकते हैं?
2: जो जैसे लवणीय भूमि है या क्षारीय भूमि है, इनके दोनों के मैनेजमेंट अलग अलग है,
1: अलग अलग है।
2: जैसे कि आपने पहले सबसे पूछा लवणीय भूमि, लवणीय भूमि में आपने जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो जिससे कि उसके ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और पानी होते हुए भी पौधा पानी नहीं ले पाता, जिससे कि पौधे में से पानी बाहर निकल जाता है। इनके उपचार के लिए हमें इनकी लवणों की मात्रा को कम करना पड़ेगा। वो कम करने के लिए क्या, हमें उसको लीचिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए पास आपका एक अच्छा पानी का स्रोत हो, फिर उसके साथ ही आपको उसकी जो रेलिवेंट या जो क्रॉपिंग सिस्टम है और लवण सहनशील किस्में हैं वो लेनी पड़ेंगी। जैसे आप इसमें आप चुकंदर ले सकते हो, जौ ले सकते हो, कुछ हद तक गेहूं भी ले लोगे, सरसों हो जाएगी, अलग अलग इनकी फिर लवण सहनशील प्रजातियां हैं। और जहां पे वाटर टेबल बहुत ज्यादा ऊपर है, जो जल स्तर ऊपर है, तो उसमें हमें सब सरफेस ड्रेनेज जो नीचे वो डालना पड़ता है, उसकी वजह से पानी की सतह भी कम हो जाएगी और लवणों की मात्रा भी कम हो जाएगी। उसी तरह क्षारीय भूमि का प्रबंधन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि क्षारीय भूमि में जैसे मैंने बताया कि इसमें विनिमयशील सोडियम जो सॉइल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से मिट्टी के कण आपस में बिखर जाते हैं, हवा पानी का आवागमन कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें जैसे डिफरेंट अमेंडमेंट्स, जिसको हमें मिट्टी सुधारक जैसे जिप्सम है, पाइराइट है, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि कई किसान भाई लवणीय भूमि में भी जिप्सम डाल देते हैं, उससे उनका फायदा ना होकर नुकसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा किसान भाइयों,

0: यदि आपकी मिट्टी क्षारीय है या लवणीय है, सबसे पहले तो उसको चेक करवाओ और मिट्टी के साथ साथ पानी की भी जांच करवाओ, क्योंकि कई बार पानी से भी क्षारीय भूमि बन जाती है या लवणीय भूमि बन जाती है। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को सलाह ये दूंगा कि वो मिट्टी और पानी की जांच करें,
1: जांच जरूर करा, क्योंकि उसके बाद ही पता लगा कि भाई अगर बंजर जमीन है हमारी तो उसका कारण क्या है, पानी का कारण है या फिर जो हमारी मिट्टी है वो खराब किसी और कारण तो हो रही है। और जहां डॉक्टर साहब पानी की कमी है, ज्यादातर तो जो लवणीय भूमि है वहीं ज्यादा मिला है जित पानी की मात्रा कम आवा है। और डॉक्टर साहब एक चीज और भी थी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भाई कुछ गेहूं की फसलें हैं, सरसों है, चुकंदर है, तो क्या मतलब कोई अलग वैरायटी है जो कि सहनशील है लवणीय की, या कोई भी आम वैरायटी हम लगा सकते?
0: नहीं नहीं, इनकी वैरायटी बिल्कुल अलग है। जैसे आप सरसों की बात करो
1: जी,
0: CS52 है, 54 है, 56 है, 58 है, 60 है, इस तरह गेहूं की है, KRL 1-4 है, KRL 19 है, KRL 200 है, KRL 210 है, 283 है, इसी तरह धान की वैरायटीज है हमारी, CSR 10 है, 20 है, 36 है, CS 30 है, अलग अलग वैरायटीज है। वो लवणीय भूमि के लिए भी अलग है, क्षारीय भूमि के लिए भी
1: बिल्कुल अलग। बात करेंगे डॉक्टर साहब इस विषय पर जो ये हमारी किस्में हैं, उससे पहले एक कॉलर है, जान लेते हैं क्या उनका प्रश्न है।
2: हेलो,
3: नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार
2: जी। नमस्कार
3: सर, मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ, भरतपुर से राजस्थान।
0: हाँ जी
3: सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरी एक एकड़ ऐसी जमीन है जिसमें कुछ फसल नहीं हो पाती, तो सर मैं आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करें कि मुझे उपजाऊ भूमि कैसे बना सकूं प्रॉपर, मतलब उसमें होती है तो बहुत कम, ना के बराबर में कुछ जैसे बोते हैं तो मान लो एक एकड़ में हमने सरसों बोई तो सरसों बहुत कम होगी या उपजेगी नहीं, तो सर आप थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करें सर। वहाँ खारा पानी भी है।
0: हाँ, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि आप जैसे जब खेत में जाते हो तो आपकी फसल की बढ़वार कैसी है, कम है, ज्यादा है, और कई जगह पैची ग्रोथ है, मतलब कहीं पे पौधे खड़े हैं, कहीं पे नहीं खड़े हैं, सफेद परत है, नहीं है, पानी खड़ा है, नहीं खड़ा है, तो उनके बेसिस पे आप ये कह सकते हो भाई मेरी मिट्टी में कोई समस्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आपने अपनी मिट्टी की जांच करवाओ, क्योंकि जांच करवाने के बाद ही हम कोई भी विशेषज्ञ बता सकते हैं आपकी मिट्टी में समस्या किस चीज की, फर्टिलिटी कम है या लवणता है या क्षारीयता है या कोई और समस्या है। जब तक मिट्टी की जांच नहीं करवाओगे जब तक आपको सही समाधान नहीं बताया जा सकता।
1: बिल्कुल,
3: जांच के लिए सर मुझे नियर बाई काम ऑप्शन होगा?
0: ये हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहां पे आपकी मिट्टी की जांच करवा सकते हो, और यदि नहीं तो हमारे पास पूसा संस्थान में मिट्टी की जांच करवा सकते हो, और हर जिले में है। और साथ में आपको मैं सलाह देता हूँ कि भाई मिट्टी के साथ साथ पानी की भी जांच करवाओ।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब।
2: और यहाँ पर एक श्रोता हमारे साथ और लाइन पर आ गए हैं। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी सर नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: नमस्ते मैडम, डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत नमस्ते। और मैडम मेरा सवाल ये है,
2: अपना नाम बता दीजिए सर, अपना नाम।
4: मैं हरियाणा कुंडली से बोल रहा हूँ, सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ।
2: जी सुरेश जी बताइए, सवाल कीजिए।
4: सवाल मेरा ये है कि मैडम मेरी लगभग एक एकड़ जमीन है और उसमें ऊसर हो गया था, जिसको आप बंजर बंजर भी बोलते हैं, लगभग 1 मीटर मैंने उसकी खुदाई करवाई लेकिन अभी भी कोई फसल नहीं आ रही, अभी क्या करना चाहिए इसके लिए?
0: देखिए उसका खुदाई उसका समाधान नहीं है, जहां तक ऊसर भूमि में उसमें आप एक मीटर या 1.2 या 1.5 मीटर पे एक लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, लेकिन आप यदि ऊसर भूमि को क्षारीय भूमि करें उस केस में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके क्या खेत में क्या सफेद परत है क्या है?
4: हाँ, उसके ऊपर सफेद सफेद था, वो क्या बोले
1: नमक जैसा, नमक जैसा
4: सफेद सफेद था, फूल आ जाता है उस पर,
0: मतलब उसको तो आपकी भूमि जो है लवणीय है उसको,
4: उसमें मैंने जलकुंभी, धान का जो पुआल होता है, गोबर की खाद हुआ, ये सब खूब डाला लेकिन कोई विशेष उससे फायदा नहीं हुआ, बीज बेकार जाता है बोने पे।
0: हाँ बिल्कुल जाएगा ही, खराबी जाएगा, क्योंकि आप जैसे आपने जलकुंभी का या जल का जो राइस का धान का पुआल उसमें सड़ा दिया तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन तो बढ़ गया उसका, तो वो कुछ हद तक ही काम करेगा।
4: पूरी तरह सर एक चीज और, खेत में जो पानी का हम इस्तेमाल करते हैं वो नहर के पानी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ऐसे उस पानी की वजह से तो नहीं है?
0: नहीं, नहर का पानी ज्यादातर अच्छा होता है, शुद्ध होता है, उसकी विद्युत

0: उसका सुधार हम कैसे करें, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जब खेत खाली हो तो वो हम खेत में कर सकते हैं?
1: हाँ, ऊसर भूमि के लिए जैसे हमारा पूरा पैकेज है। सबसे पहले तो हमको मेड़बंदी करनी है। मेड़बंदी हो करीब करीब 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंची। उसका फायदा क्या होगा, दूसरे खेत का पानी आपके पास
0: नहीं
1: उसके अंदर नहीं आएगा। दूसरा, जब आपके बरसात का पानी भर लिया वो बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आप करोगे समतलीकरण लेजर लेवलर से जो भी है, और उसमें आपको स्लोप करीब दे देते 0.1% का। तो आपने मेड बना दी, समतलीकरण कर दिया, फिर एक बरसात का पानी भर लिया। बरसात का पानी भरने के बाद उसमें से जो घुलनशील साल्ट है वो नीचे चले जाएंगे, और उसके साथ साथ फिर आपके पास एक तो जल निकासी का साधन होना चाहिए, फिल्ट ड्रेनेज होनी चाहिए। और इन भूमियों को सुधार करने के लिए आपको अच्छे पानी का स्रोत होना बिल्कुल आवश्यक है। यदि आपके पास अच्छे पानी का स्रोत नहीं है तो ये भूमियों को आप सुधार नहीं कर सकते। उसके बाद आप जैसे मिट्टी है उसको चेक करवा के भी आपकी विनमिलशील सोडियम पहले कितना और आपको चाहिए कितना, उसके बेसिस पे हम जिप्सम की मात्रा डिसाइड करते हैं। जिप्सम को आप रख देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, फिर मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद आप उचित जल प्रबंधन, उचित उर्वरक प्रबंधन और उचित शस्य क्रियाएं, ये करके आप इसका पूरा पैकेज बनता है। और जैसे सहनशील फसलें हैं उनका, इसमें जैसे आप यदि ऊसर भूमि की बात करो तो हम रिकमेंड करते हैं धान, गेहूं और ढेंचा। जैद में आप ढेंचे लीजिए। सबसे पहले आप शुरू करेंगे आप धान से, और धान में खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको पाटा नहीं मारना।
0: हाँ, सीधी बिदाई करें।
1: हाँ, सीधी। हाँ, क्योंकि यदि पाटा मार दिया तो पानी नीचे नहीं जाएगा हमारे, क्योंकि धान में पानी खड़ा रहता है।
0: बिल्कुल
1: खड़ा रहेगा तो वो जो जिप्सम डाला है वो जो घुलेगा, उसके बाद सोडियम को रिप्लेस करेगा कैल्शियम से, जो सोडियम सल्फेट बनेगा तो वो नीचे जाना है। यदि आप पाटा मार दोगे तो नीचे नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ आपके जैसे बीज की मात्रा ज्यादा हो या आपके जो पौध है वो और नॉर्मल सॉइल के बदले में यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी पौध लेते हैं, जैसे 35-40 दिन की, और एक एक हिल पे मेड़ पे जैसे 3-3, 4-4 तक भी हम सीडलिंग लगा देते हैं,
0: ताकि मतलब जो अगर कोई प्योध मर जाए उसके चांसेस ज्यादा हो है, तो उसके जगह जो दूसरा हमारी प्योध है वह जिंदी रहे।
1: हाँ, क्योंकि इसमें समस्या तो है ही, तो इसलिए बडवार कम होगी। बडवार कम होगी तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं,
0: और फिर फुटाव भी डॉक्टर साहब।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो एक
2: श्रोता हमारे साथ लाइन पर है। हेलो।
3: हाँ मैम, नमस्कार डॉक्टर साहब का। नमस्कार
2: जी। सर नाम बताइए।
3: मैं अमरता मलिक बोल रहा हूँ दिल्ली से
2: जी।
3: हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है, मैं ये जानना चाहते हैं जो डॉक्टर साहब बताते हैं हर प्रोग्राम में कि भाई मिट्टी की जांच होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई मतलब पैसा क्या प्रावधान है, मतलब कितना पैसा लगता है या फ्री होता है, कैसा क्या?
1: देखिए, जैसे हम ये कृषि मेला करते हैं तो उसमें तो हम करते हैं फ्री, बिना किसी चार्ज के। अदरवाइज हमने फार्मर्स के लिए जो मिट्टी की जांच करते हैं बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, 100-200 रुपए में आपकी पूरी मिट्टी की जांच हो जाएगी। ठीक है।
3: और तो सर गमलों की मिट्टी की भी जांच करनी चाहिए क्या? मेरे पास थोड़े गमले हैं, मैं पौध लगाता हूँ, पीले पीले ऊपर से प्याज के पौधे पीले पीले पड़ जाते हैं, तो मिट्टी गमले के भी करानी पड़ती तो करनी चाहिए क्या सर?
1: भाई, आप मिट्टी तो वही है ना जहाँ से आपने भरी है।
3: हाँ जी,
1: तो
3: हाँ
1: जी। वो गमले में डालोगे तो गमले में भी खराब करेगी वो, तो जहाँ से भी भरी आपने मिट्टी की तो जांच करवानी पड़ेगी यदि नहीं। हाँ
0: बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर मतलब हमारे पास मिट्टी है कहीं भी, हमारे छत पे हमने खुले में डाल दी, कोई प्योध उगा रहे हैं या फिर गमलों में हमने डाल दी, तो मिट्टी एक ही है, जांच उसकी अवश्य कराएं। ये ना देखें कि भाई वो छोटा हमारा गमला है या थोड़ी जगह है, और उस हिसाब से डॉक्टर साहब हमें पता भी लग जाता है कि इसके अंदर पौष्टिक जो तत्व है या फिर जो उसके न्यूट्रिशंस है, किस किस की उसके अंदर कमी होगी है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे हम, जो हमारी नूनी भूमि है जिसमें आपने बताया कि ढैचा भी हमले इसका है, तो कुछ हमारी जो दलहनी फसलें हैं इस तरह की, क्या उनकी भी बिजाई जब हम हरी खाद के तौर पर करें उससे भी कुछ फायदा होगा उसमें?
1: अब बिल्कुल, जैसे हम मैंने पहले बताया आपको ढैचा, ढैचा डालने से आपको करीब करीब 100 से 110 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है
0: जी,
1: और 10-12 किलो आपका फॉस्फोरस मिल जाता है। जब तक आप दलहनी फसलों की बात करोगे, जो दलहनी फसलें हैं जो क्षारीय भूमि या लवणीय भूमि में, हम इनको जल्दी से रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये संवेदनशील फसलें हैं। तो जैसे क्षारीय भूमि में हम नॉर्मली धान से शुरू

0: करते हैं, और लवणीय भूमि में हम वो फसलें लेते हैं जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो और जिनमें सॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा हो, जैसे आपका ग्वार हो सके, ज्वार, बाजरे, इस तरह की फसलें लेते हैं, ना कि दलहनी फसलें को नॉर्मली अवॉइड करते हैं।
1: हरी खाद के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब
0: क्योंकि उसमें हम ढेंचा बहुत बढ़िया काम करता
1: है, मतलब सिर्फ हरी खाद के लिए,
0: क्योंकि करते और भी सकते हो लेकिन उसकी पैदावार भी तो होनी चाहिए।
1: हाँ, वो मतलब जो ग्रोथ है वो लेवल जहां तक मतलब हम उसने काटे हैं,
0: ढेंचा जो है वो मतलब अच्छी, जो पीएच बहुत ज्यादा हो या उस पर अच्छी तरह से 9-9.5 तक भी बढ़िया,
1: मतलब उसकी जो वनस्पति बढ़वा है बढ़िया हो जाए,
0: तो 45 दिन का तो उसको हम सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उससे नाइट्रोजन आपको मिल जाता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो हमारी लवणीय भूमि है उसकी, ये बात करेंगे सारी भूमि की जिसमें सार है, जो पानी है वो नीचे नहीं जाता, ऊपर खड़ा रहा है, तो क्या इसी जमीन में जो धान की फसल है वो ठीक रहा है?
0: मैं हम रिकमेंड ही धान से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए धान एक तो सहनशील है, चाहे आपकी वाटर टेबल बिल्कुल जीरो पे भी है, क्योंकि खड़े पानी को भी सहन कर लेता धान, तो क्योंकि इसके अंदर आयरन काइमा सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर, और जब पानी इसमें काफी दिन तक खड़ा भी रह गए तो, और काफी मात्रा में पानी खड़ा रहता है, उससे जब हम जिप्सम डालते हैं वो अच्छी तरह घुल जाता है और जो सोडियम सल्फेट बनता है वो नीचे चले जाता है, इसलिए धान से शुरू करके उसके बाद गेहूं लेते हैं।
1: लेकिन धान में भी एक समस्या है डॉक्टर साहब, जिक्र करा है हम, देखा है कि भाई पानी खड़ा हो जाए धान में, जो उसने भी कह दे है कि भाई 3 दिन तक ज्यादा पानी खड़ा मत रखे, इसकी अदला बदली कर दे, या फिर अदला बदली नहीं कर सकते, जड़ मार्ग रिसोर्स नहीं है उसमें अपना गादड़ दे दिया हम भी,
0: हाँ बिल्कुल,
1: या फिर ओजोला काई भी बहुत से साथी जो है वो बीच में उसमें इस्तेमाल कर लिया है, तो इस तरह की जो हमारी सारी भूमि है ये उसमें पानी तो वो नीचे पियोगी नहीं, पानी हमने खड़ा कर दिया, वो हफ्ता भी उसका है, 10 दिन भी उसका है, तो उसमें क्या हम समाधान करें इन चीजों?
0: तो इसमें जैसे अपने मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर तक पानी भरकर रखते हैं, पर 10 से 15 दिन के बाद उसका निकासी कर देते हैं, निकासी नहीं करोगे तो उस पर असर पड़ता फिर,
1: मतलब वही ऑक्सीजन की मात्रा उसमें हमने बढ़ानी
0: बिल्कुल 10-15 दिन
1: में, अगर हम उसमें गादड़ दे दिया इस तरह आता है तो पानी,
0: गादड़ देने से तो फिर जो इसका ये पडलिंग कह देते हैं, पडलिंग से तो नीचे नहीं जाएगी,
1: नीचे तो नहीं जाओगे, उसको तो ये है कि भाई वो पानी हिल जाएगा, जो दोपहर में तापमान हमारा ज्यादा हो जाए ना, तो वो जो पानी गर्म हो गया है थोड़ा सा काई नीचे जो जम जाए, वो काई भी हट जाए,
0: उसमें उसके साथ हम जैसे काई का रोकथाम के लिए कई बार हम रिकमेंड करते हैं कॉपर सल्फेट डालने की,
1: कॉपर सल्फेट तो वो इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब सारी जो भूमि है उसमें हम, और खाली जब हमारा खेत पड़ा है डॉक्टर साहब, फसल भी मान लो उस टाइम पर हमने नहीं लेनी, क्योंकि फसल में जो प्योध में अगर 100 जुटी अपने एक खेत में लगाऊ हूं तो मैंने 350 जुटी इसमें लगानी पड़ेंगी, तो उस टाइम पे के मैं इसका समाधान कर सकूं ताकि मेरा खेत सुधर जाए।
0: जैसे हम जनवरी से लेकर मार्च तक मेड़बंदी और समतलीकरण करते हैं, फिर आपने थोड़ी सी जैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में आपने पौध लगा दी, मतलब नर्सरी तो पहले तैयार कर लेते हैं, 35-40 दिन की नर्सरी आपने तैयार कर ली, फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इसको रोप देते हैं धान को, फिर अक्टूबर के महीने में आप इसने धान कट गया
1: जी,
0: धान काटने के बाद फिर आप नवंबर के फर्स्ट वीक में गेहूं ले लोगे, गेहूं आपने अप्रैल में काटा, उसके बाद फिर जायद में आप ढेंचा ले लेते हो, वो 45 दिन में करीब मई के और लास्ट तक आपका या जून के फर्स्ट वीक तक उस खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा जब आपकी ये मिट्टी सुधार होती रहेगी, जैसे जिप्सम डाल दिया आपने जो या कुछ और डाला प्रेस में डाला जो भी कुछ आपने इस्तेमाल किया मिट्टी सुधारक, उसके बाद आप जैसे गेहूं की जगह सरसों, वो आपके बरसीम भी ले सकते हो, सफतल भी ले सकते हो, और भी जैसे सरसों ले सकते हो, और भी जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसके बाद हम कहते हैं कि भाई दाड़े दूड़े लो, नहीं तो ये चक्कर चलता रहता है, और इस तरह से हम मैनेज करते हैं इनको।
1: मतलब वही है फसल चक्कर हमारा जो है, एक तो इसका विविधीकरण होना चाहिए
0: बिल्कुल,
1: और सारी भूमि में तो वही है डॉक्टर साहब, पानी जब नीचे नहीं जाओगा तो गेहूं की भी किस्में बहुत सी कम होंगी, इसी जो कि भाई पैदावार कम दे रही है, पानी तो गेहूं के लिए खतरनाक हो जाए।
0: हाँ, क्योंकि देखिए धान के मुकाबले में गेहूं थोड़ी ज्यादा संवेदनशील है क्षारीय भूमि में, तो नॉर्मल भूमि में जैसे आपका 5-6 टन करीब करीब गेहूं का उत्पादन हो जाता है, तो इसमें आपका 3-3.5-4 तक भी हो जाता है, मतलब देखो नॉर्मल भूमि के मुकाबले में तो कम होगा ही होगा, लेकिन यदि आप अच्छी उत्तम वैरायटी लगाओगे क्षारीय जो टॉलरेंट है उससे काफी हद तक मतलब 70-80% तक मिल जाता आपको।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे अब एक श्रोता थे हमारे, वो भी कह रहे थे कि भाई मिट्टी उन्होंने उठवाई थी, तो इस तरह की जो अपने क्रिया करे हैं किसान साथी बिना किसी जानकारी के मिट्टी उठा ले हैं, तो इससे कुछ फायदा हुआ है या फिर मिट्टी उठाने का भी कोई तरीका है कि भाई कितनी हम उठा लें? और उसमें ये बहुत से साथी हैं जो अपना जमुना का रेत है या फिर कोई नहर नदी है रेती है अपनी वो मिला दे हैं, और जो अपने गोबर है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी वॉश है, कई बार हम देखें शुगर मिल का भी जो वेस्टेज है वो डाल दें किसान साथी, तो इनका कोई तरीका है या फिर अपने हिसाब से कैसे भी डाल सका हम?
0: देखिये कई कई किसान भाई तो मतलब आप एक एक मीटर तक में मिट्टी उठते देखे मैंने,
1: एक एक मीटर बहुत ज्यादा हो जाए डॉक्टर साहब।
0: हम लोग जैसे
1: उठाते हैं, हमने गहरे गहरे गड्ढे करते हैं,
0: लेकिन नॉर्मली आप जैसे भट्टे वाली जमीन में उसमें मतलब एक एक दो दो फुट तक की मिट्टी उठा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिट्टी उठाने की रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो हमारी उर्वरकता है या जिसको फर्टिलिटी कहते हैं सबसे ज्यादा होती है ऊपर की जमीन में,
1: ऊपर की में।
0: यदि वो ऊपर की जमीन आपने हटा दी तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो हमें ये नहीं कहूंगा कि भाई आप हटा दो। यदि आपकी भूमि में लवणता है तो ऊपर की स्क्रैप कर सकते हो आप, लेकिन ये नहीं कि पूरी हटाओगे तो खर्चा बहुत पड़ेगा।
1: बिल्कुल है।
0: और साथ में जैसे आपने कहा कि भाई उसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट इनका बिल्कुल कर सकते हो, इनका फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है।
1: और डॉक्टर साहब, अभी जैसे नौतपा अपना आओगा चलेगा, अभी तो जो गहरी जुताई हम करा है, जो आजकल तो पुलाव आ रहे हैं, जो पुलाव है बड़े बड़े भय, तो बिल्कुल मतलब ये मान के चले तकरीबन एक फुट की मिट्टी अल्टा पलटी मार दे, तो लवणीय भूमि में और जो सारी भूमि में है उड़े, मतलब अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो कितना फायदा उसमें हुआ है?
0: फायदा तो होगा, लवणीय में भी होगा, क्षारीय में भी होगा, क्योंकि देखिए लवणीय ना भूमि सख्त हो जाती है, क्योंकि उसके मिट्टी के छेद बंद हो गए, यदि आप उल्टा पुलटी करोगे एक, लेकिन एक मीटर एक फुट तक उल्टा पुलटी करने के लिए आपको काफी हाई पावर का ट्रैक्टर चाहिएगा, क्योंकि वो बॉडी सख्त होती है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कर सकते क्षारीय भूमि में काम करेगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको,
1: वो थोड़ा खर्चा उसमें
0: बहुत ज्यादा
1: खर्चा तो पड़ेगा डॉक्टर साहब, लेकिन जो जमीन खाली रहा है तो वो तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है किसान का।
0: नहीं खाली नहीं रहेगी ना, आप उसको यदि पूरी तरह से आप उसको जैसे मैंने फलसज्जा करके बताया आपको, आपका मिट्टी सुधारक चाहिए डालोगे तो आपका पहले साल से ही शुरू हो जाएगा।
1: तो मिट्टी सुधारक में डॉक्टर साहब जो पैकेज आपने बताया क्या क्या उसमें आ जाए, किस तरह से आपने चीज डालनी है?
0: जैसे जैसे खासकर हम क्षारीय भूमि में जिप्सम का यूज करते हैं, जिप्सम कर सकते हो या पायराइट कर सकते हो?
1: पायराइट और जिप्सम।
0: हाँ, जिप्सम क्योंकि आसानी से मिल जाता है, सस्ता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है।
1: तो कितनी मात्रा इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब इसकी?
0: वो एक्चुअली तो टेस्ट करवा के कर बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 10 से 12 टन पर हेक्टेयर डाल सकते हो।
1: 10 से 12 टन
0: प्रति हेक्टेयर के साथ, ढाई किलो में यानी के।
1: हाँ, ढाई किलो में।
0: हाँ, तो उसमें काम कर जाता है। यदि बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो फिर आपको टेस्टिंग के बाद पता लगेगा, नहीं नॉर्मली तो हम 10-12 टन पर हेक्टेयर के,
1: एक एकड़ की बात करें तो 4 टन चाहिए
0: करीब। और इसमें काफी सब्सिडी है, सरकार सब्सिडी देती है।
1: तो बिल्कुल देखिए डॉक्टर साहब, हमने ये भी जो टाइम है खेत खाली है तो बहुत से भाई अपने एक एक ट्रेली भर लिया है और खड़े करके बीच में अपने रखते हैं, देखे भी है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इसमें एक चीज और भी देखें डॉक्टर साहब, जब हम छिड़काव करें, मान लो जिप्सम का हम छिड़काव कर दिया तो ढैंचा भी वो एक काम कर रहा है या एक अलग उसका तरीका हो जाए?
0: नहीं, ढैंचा और उसका जिप्सम का
1: दोनों अलग अलग।
0: जिप्सम हम इसलिए डालते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्षारीय भूमि में विनेमिक सेल सोडियम ज्यादा होता है एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स, और उसकी वजह से कणों का बिखराव होता है, उसको सोडियम को हमें रिप्लेस करना है, उसको हटाना वहां से, हटाने के लिए इसलिए हमें चाहिए कैल्शियम, और जो कैल्शियम मिलता है वो हमें मिलता है जिप्सम से, तो इसलिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। जो आपको ढैंचा बताया, ढैंचा क्योंकि इसमें कार्बन भी देगा, क्योंकि ऐसी ऐसी मिट्टियों में हमारी ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो जाती है, नाइट्रोजन बहुत कम होता है और भौतिक अवस्था खराब होती है, तो ढैंचा लगाने से आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, कार्बन भी मिलेगा और भौतिक अवस्था भी बेटर हो जाती है, इसलिए दोनों का सुधारक की तरफ तो काम करेंगे, लेकिन जिप्सम थोड़ा जल्दी करेगा और ढैंचे का रोल थोड़ा अलग,
1: उसका काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा जल्दी है।
0: हाँ
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, फसलों के बारे में भी आपने बताया, धान की भी आ गई, इसके अंदर गेहूं की भी आ गई और ढांचा भी आ गया, मतलब पूरा साल हमारा जो फसल चक्र चलता रहा है। ये बहुत से साथी से हैं जो कि रिस्क इतना नहीं लेते कि भाई धान में हम ज्यादा प्योद लगा देंगे या फिर गेहूं में 40 किलो की बजाय में तो 80 किलो डालना पड़ेगा, 60 किलो डालना पड़ेगा, वो ये जंतर में हमने 4 किलो डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कृषि वाणिज्य की, कि भाई कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो उड़ा हम एक बार लगा दें और वो उसमें सर्वाइव कर जाए और आने वाले टाइम पर हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट उसमें दे दें।
0: जैसे क्षारीय भूमि की बात करूं मैं आपको, तो आप इसमें फ्रूट वाली पेड़ भी ले सकते हो,
1: फ्रूट वाले भी। हाँ, तो ये तो सुनने में सुहागा डॉक्टर साहब।

0: बेल ले सकते हो, बेल पत्थर, कैथ ले सकते हो, करुंदा ले सकते हो, आंवला ले सकते हो, और इसके साथ आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो, जैसे इसकी ग्वार की कर सकते हो, जौ की कर सकते हो, तो इस तरह से और वानिकी के बहुत हैं, प्रोसोपिस, जैसे प्रोसोपिस ले सकते हो, आपका कैजुरिना ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे
1: ये साइंटिफिक नेम हो गए सब, हमारे किसान साथियों को थोड़ा सा बहुत टफ हो जाएंगे, मतलब थोड़ा क्या
0: जैसे जंगली किकर होते हैं, किकर को ले सकते हो,
1: तो किकर भी डॉक्टर साहब दो तरह की है, एक देसी किकर है अपनी, और मतलब एक अपना जो पाई भी किकर आमतौर पर खड़ी है,
0: एक बिलायती किकर, एक देसी किकर। बिलायती किकर का ज्यादातर देखे, बिलायती किकर की टॉलरेंस तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है
1: टॉलरेंस भी सर। और एक चीज और भी है, जब हम नहर के किनारे या फिर रोड के किनारे देखें तो रोज की इतनी बड़ी भाव है वो।
0: लेकिन उसका जो है ना फ्यूल वुड में बहुत अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन जैसे खेजड़ी है उसके तो आप जानते हो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है
1: राजस्थान में आमतौर पर ज्यादा देखी जाए खेजड़ी।
0: तो इसके इसके साथ साथ जैसे आपने कृषि वानिकी बताया, ये बताया, इस तरह हम फूल भी ले सकते हैं, आपका एरोमेटिक प्लांट्स भी ले सकते हैं, फूल में जैसे आपका क्राइजेंथिमम ले सकते हैं, कैलेंडुला ले सकते हैं, मेट्रिकेरिया ले सकते हैं, है इसी तरह से आप यदि एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट की बात करो, वेटिवर ले सकते हैं, लेमन ग्राम ले सकते हैं, पामरोजो ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, तो बहुत सारी जो है आपको पूरा पैकेज सब कुछ मिलेगा।
1: बस थोड़ी सी मतलब जानकारी हमें जुटानी है कि भाई कौन सी सहायता हमें कितने मिल जाएगी, और उस सबसे पहले तो वही डॉक्टर साहब अपना मिट्टी की जांच कराओ और पानी की जांच।
0: बिल्कुल।
1: और पानी भी बहुत कम है ऐसी जगह, क्योंकि पानी अगर भाई नहर का, वो साथी बता रहा था कि नहर का पानी हम लगाव है, तो नहर के पानी में तो मेरे ख्याल था जमीन इसी नहीं होनी चाहिए कितने भी।
0: ज्यादातर देखो नहर का पानी मैंने तो नहीं देखा कि कहीं खराब हो, अच्छा ही होता है
1: नहर का पानी, अच्छा हो डॉक्टर साहब। और जिस खेत में नहर का पानी जाओ है, चने ना तो छोड़ दो, बाकी सारी फसल उड़ा बहुत बढ़िया।
0: क्योंकि ये नहर का पानी में बस ये समस्या क्या थी, कुछ और मिल रहा है उससे, सीवेज मिल रहा, तब जाके समस्या होती है, अदरवाइज कहीं ज्यादा समस्या है नहीं।
1: बिल्कुल
0: है ना।
2: तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने हमारे श्रोताओं को दी। और कार्यक्रम कैसा लगा हमारे श्रोता हमें बता सकते हैं kkbongold@gmail.com पर। और आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हमें लगता है कि हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया है, और हम इंतजार करेंगे आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का। तो इसी के साथ मैं सीमा सती
1: और मैं विनोद कुमार
2: लेते हैं इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।

0: रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने 11 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
2: Bharat aur Cyprus ke beech ye strategic partnership dono deshon ke financial aur services hub ko jodkar कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: President of Cyprus Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. The President of Cyprus is on a four-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.D. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आपके पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन के साथ मैं आपके साथ हूँ, आपकी हमसफर हेमा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:11 हो गए हैं और शाम 4 बजे तक आपके साथ रहेंगे हम। कहिए कैसे हैं आप? आप कहेंगे भाई घर के अंदर हैं तो ठीक है, जैसे मैं स्टूडियो में हूं तो अच्छा महसूस कर रही हूं, लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं और हमें सुन रहे हैं तो ज्येष्ठ माह की जो तपिश है उसका आप जरूर आनंद ले रहे होंगे। भाई जेठ की जो दोपहरी है ना, उसका वर्णन चाहे उपन्यासकार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हों या कवि सम्राट बिहारी लाल जी, सभी की रचनाओं में बहुत ही खास जगह उसे मिली है जेठ की दोपहरी के वर्णन को। अब ये महज असुविधा के रूप में नहीं बल्कि नवीनीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के रूप में, जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है, लू की लहर होती है, वो इसलिए क्योंकि सूर्य जब अपने चरम पर पृथ्वी से नमी को

बाष्पित करता है तब जीवन दायिनी मॉनसून की वर्षा के लिए ही भूमि तैयार हो रही होती है। तो बस हमने भी अपनी इंट्रोडक्शन दे दी है और एक भूमि तैयार कर दी है, भूमिका तैयार कर दी है बारिश सदाबहार गीतों की। तो आप जानते हैं, आप हमें मेल भेजते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868686753। आप अपने पसंद के गीत के बोल लिखें और फिल्म का नाम लिखें, हो सके तो जरूर बताएं कि ये गीत आप क्यों सुनना चाह रहे हैं। मन भावन में आप सभी की फरमाइशों का बहुत बहुत स्वागत है।

एक बार फिर से स्वागत है आपका मन भावन प्रोग्राम में, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ हेमा। बहुत सारे हमारे लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, या कहें कि प्रोग्राम के पहले से ही। तो दीपेश वर्मा, स्वरूप आनंद सरजल, मास्टर अशोक कुमार, किशन वंजानी, राधेश्याम दीवानगन, मोहम्मद फरमान, बहुत सारे हमारे लिसनर्स साथ हैं जिनके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। कुमकुम, अनिल मोहन, तुलसी मस्कीन, किशन, कौशल्या, कमलकांत गुप्ता। तो अगली फरमाइश हम अब ले लेते हैं गीत की, और ये कहते हैं कि मैं महालक्ष्मी अय्यर की आवाज का बहुत बड़ा दीवाना हूं, आप उनका ये गीत मुझे जरूर सुनवा दीजिए जो है फिल्म सुर से। और ये है विनोद करोलबाग से, इनका मैसेज हम तक पहुंचा है, तो बहुत ही प्यारा गीत है, आइए सुनते हैं ना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं और मन भावन में आप अपनी ही पसंद के गीत हम तक पहुंचा रहे हैं और इस फरमाइश को पूरा कर रहे हैं हम एफएम गोल्ड पर। यकीनन सभी की फरमाइश तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपके नाम शामिल कर दें। फरमाइश अगली पूरी करने से पहले कुछ नाम मैं ले लेती हूं और उससे पहले आपको बता देती हूं कि कहां आपने अपनी फरमाइश भेजनी है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaardelhi@gmail.com। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं 9868686753। मैं हेमा आपके साथ हूं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और हमारे साथ बहुत सारे मैसेजेस हैं। मास्टर खिल्लू परवेज, हरजिंदर शिंदा, फारूक अली खान, संदीप मक्कड़, झग्गर राम साहू, लालगिरी, दिलीप रामेकर, सतीश अनेजा और धर्मेंद्र चीपा। इसके अलावा मैसेज आया है संजय साहू पोटिया का और सलीम अख्तर का, फारूक अली खान, आर्यन वर्मा, विजय सुरलकर, नवी हसन, संजय ढींगिया, गुरमीत सिंह, मोहम्मद सईद अब्बासी, ताज मोहम्मद। और ये नाम बहुत जाने पहचाने हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब हमारे एफएम गोल्ड के प्रोग्राम्स के साथ रहते हैं और हमारी हौसला जाहिर करते हैं अपने प्यारे प्यारे संदेशों से। अगला जो गीत है वो मैं लूंगी कविता राधा और विश्वास की फरमाइश है। ये 1983 में फिल्म आई थी और इस फिल्म को निर्देशित किया था रमेश बहल ने। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें अमिताभ बच्चन के साथ जीनत अमान थी, रणधीर कपूर के साथ टीना मुनीम थी, तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे क्योंकि फिल्म के जो गीत हैं वो सदाबहार हैं। आर डी बर्मन साहब का सदाबहार संगीत है फिल्म में और गुलशन बावरा के लिखे गीत। फिल्म है पुकार

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission. Information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
2: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
3: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
2: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
3: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
2: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड आरोप।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन भावन प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, अपनी पसंद के गीत इसमें आप सुनते हैं। और अगला गीत शामिल करने से पहले, फरमाइश को पेश करने से पहले, अभी आपने सुना था आर डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध गीत, और राहुल देव बर्मन जो थे उनका जो संगीत है, कोई भी हम गीत उनका प्ले करते हैं तो बहुत ही यूनिक होता था क्योंकि बहुत ही एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक वो करते थे, तो बिल्कुल आसानी से पहचाना जाता है। अभी देखिए फरमाइशें भी एक के बाद एक उन्हीं के म्यूजिक की आ रही हैं, और अगली फरमाइश भी ऐसी है। राहुल देव बर्मन साहब जो थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स थे अक्सर फिल्म संगीत में उन्हें नहीं प्ले किया जाता था, उनको भी अपने संगीत में शामिल करने का श्रेय उन्हें जाता है। और ओरिजिनल साउंड ट्रैक खास तौर पर, जैसे पानी की बूंद का, अगर 1942 लव स्टोरी आपको याद हो तो उसमें टपकते हुए पानी की जो बूंदें हैं वो ओरिजिनल साउंड ट्रैक उन्होंने रिकॉर्ड किया, यानी जब पानी की बूंद पड़ रही थी तो उसे रिकॉर्ड किया। तो बहुत जुनून था उनमें अपने म्यूजिक के लिए और कुछ नया करने में, तो ऐसा ही संगीत उन्होंने दिया फिल्म जमाने को दिखाना है फिल्म में। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली थी लेकिन फिल्म बहुत ही प्यारी थी। ऋषि कपूर और पद्मिनी कोहलापुरे गीत तो बहुत ही प्यारे थे इसके, और बहुत हिट सुपर हिट संगीत था, आर डी बर्मन साहब का ही था, और लिखे थे गीत मजरू सुल्तानपुरी ने। अच्छा ये बता दूंगी किसने इस गीत को सुनना पसंद

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।

कुछ नाम शामिल करते हैं जो हमारे लिसनर्स हमारे साथ बने हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। संजय ढींगिया, गुरमीत सिंह, मोहम्मद सईद अब्बासी, शेख मूसा, फारूक अली खान। नाम आप बार बार मैसेज ना भेजें, एक ही बार बहुत होता है। अकरम हुसैन प्रिंस, जगन्नाथ पटेल, सोनम, बबलेश पंवर। बबलेश जी, आपका गीत हमारे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है, क्षमा कीजिए। और ये मैसेज है, रामकुमार रेवाड़, पुरुषोत्तम सिंह, बोधराज खोरवाल, अब्दुल गफार, एसएम जावेद, अब्बासी, जय जय, बहुत सारे आपने मैसेज हमें भेजे हैं, एक ही बहुत है, हम पढ़ते हैं सब मैसेजेस, आप चिंता ना करें। एचआर पांड्या साहब, आप कह रहे हैं कि आपका नाम शामिल नहीं हुआ, बिल्कुल आपका नाम शामिल हो गया है। उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैसेज भेजा है बरजिंदर विश्वकर्मा, दिगंबर गौड़, आनंद वाधे या वाड़े, उम्मीद करती हूं मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया होगा, भारत भूषण। और मैसेज है नवीन, और जो अब गीत है वो हम सुनवा रहे हैं किसके पसंद, किसकी पसंद का, तो उससे पहले बता दूं ये एक रोड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म का गीत है। अब रोड एडवेंचर पे बहुत कम फिल्में जो हैं वो बनती हैं, आप जानते हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा थी, ये भी फिल्म 90s में आई थी, 1997 में, और इसे राम गोपाल वर्मा ने निर्देशित किया था और लिखा था, तो बिल्कुल आप पहचान गए होंगे, दौड़ फिल्म का ये गीत है, संजय दत्त, उर्मिला मातोंडकर, और इसमें सुपरहिट म्यूजिक था एआर रहमान साहब का, और आवाजें जो थी वो सदाबहार हमारी आशा जी की और उनके साथ यशुदास जी की। तो ये गीत जो है ये पुनीत और परिक्रमा ने दिल्ली से, कौन सी जगह दिल्ली है ये नहीं लिखा आपने, तो जो आपने गीत फरमाइश किया

जल्दी से कुछ मैसेज ले लेती हूँ। हमारे साथ हैं सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली, सैयद मसरूर और मैसेज भारत भूषण का भी आया है, दिलावर खां, महिरा मलिक और रोजी डी कैस्ट्रो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए, हमें ढेर सारे मैसेजेस भेजने के लिए और इस मन भावन को पसंद करने के लिए।

शाम 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और मैं हेमा अभी के लिए आपसे इजाजत लेती हूं। मिलूंगी आपसे 4:10 पर। सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देशभर में

40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। ट्विशा शर्मा 12 मई को कटारा हिल्स स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनके सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है ताकि युवाओं में इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। प्रेगाबालिन की बिक्री अब केवल पंजीकृत चिकित्सक से जारी वैध पर्चे के आधार पर ही की जा सकती है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए अगरतला रानी कमलापति स्पेशल रेलगाड़ी संख्या 01665 के नियमित संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी अब 11666 और 11665 अगरतला रानी कमलापति एक्सप्रेस के नाम से नियमित रूप से चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से सांसद विप्लव कुमार देव को इस संबंध में सूचित किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी जानकारी आप तक पहुंचानी है दोस्तों। एक रोगी हैं जिन्हें रक्त की आवश्यकता है और जो इच्छुक रक्तदाता हैं उन्हें जल्द से जल्द संपर्क करें, लेकिन पहले आप जान लें उन्हें कौन से ब्लड ग्रुप की जरूरत है। एबी पॉजिटिव, तो जिनका एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर। आप नोट कर लीजिए मोबाइल नंबर 8447958030। मैं एक बार फिर से दोहराती हूं, 8447958030।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: साइट दैट इज एट www.sfio.gov.in और यू कुड ऑल्सो गो ऑन टू www.mca.gov.in. Division of Plant Pathology has announced a walk-in interview for the contractual post of Project Assistant under a DBT-funded research project titled Leveraging Genetic Resources from Accelerated Genetic Improvement of Linseed Using Comprehensive Genomics and Phenotyping Approaches. The position offers a remuneration of ₹20,000 plus 27 HRA per month. Candidates with BSc graduation in biological sciences, agriculture or related subjects are eligible to apply. Interested applicants should submit their applications with supporting documents before the interview scheduled on 29th May 2026. Complete details are available on the Institute's website, that is at www.iari.res.in. The Lal Bahadur Shastri Krishi Vigyan Kendra under the Deen Dayal Research Institute and sponsored by the Indian Council of Agricultural Research has invited applications for the post of an assistant, program assistant computer, stenographer grade 2 and driver under an ICAR funded project in Gopalgram, Gonda, Uttar Pradesh. The post carry pay scales from level 3 to level 6 as per the 7 CPC. Candidates must possess qualifications ranging from matriculation to bachelor's degree along with relevant experience in accounting, computer application, stenography or driving, depending on the post applied for. The maximum age limit is 30 years. Applications must be submitted within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website at www.gonda.kvk4.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार. रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता. आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियों से संबंधित. जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित डॉक्टर अंबेडकर चेयर कुछ पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है. पद का नाम हम आपको बता दें, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर. ये है 5 वर्ष की अवधि पर आधारित और पदों की संख्या 1 है. श्रेणी होगी, खुली हुई श्रेणी है ये. दूसरा पद है डॉक्टरल अध्येता का और पदों की संख्या यहाँ पर है 2. श्रेणी खुली हुई है. पात्र उम्मीदवार जो पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन पत्र के साथ 10 जून 2026 तक उन्हें भेज देना है. इस विषय के विकल्प तौर पर पूर्ण आवेदन पत्र आप भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं jnujaipur.ac.in/dr-ambedkar-chair. इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं jnujaipur.ac.in पर. इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है. फैकल्टी पदों के लिए ये विज्ञापन है. एसोसिएट प्रोफेसर, इनके लिए एससी, एसटी, एनसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, इन सब के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए ये विज्ञापन है. सहायक प्रोफेसर के लिए भी नियमित और संविदा विजिटिंग के लिए भी विशेषज्ञता होनी चाहिए. उनके पास कॉरपोरेट फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, टाइम सीरीज इकोनॉमिक्स, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर डिग्री होनी चाहिए. गैर शिक्षण की बात अगर करें तो पद का नाम हम आपको बता देते हैं. निदेशक के निजी सचिव पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं. यहाँ पर रिक्ति है 1 और अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष. मानव संसाधन अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत ये आते हैं और कुल रिक्ति यहाँ पर भी 1 ही है. 40 वर्ष इसमें अधिकतम आयु सीमा है. शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत 1 स्थान यहाँ पर रिक्त है. 40 वर्ष यहाँ अधिकतम आयु सीमा है. सहायक सिस्टम विश्लेषक सह सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 40 वर्ष के लिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी मानव संसाधन एवं प्रशासन के लिए जो कि पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल

0: रिक्तियां यहां पर भी एक है और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष। लेखा सहायक के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, एक स्थान रिक्त है। और सहायक मानव संसाधन पे लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं, एक स्थान रिक्त है 35 वर्ष, इसमें अधिकतम आयु सीमा है। संविदा आधार पर प्रतिनियुक्ति आधार पर पद जो है उसकी जानकारी आपको दें, अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी पे लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां हैं एक, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी छात्र एवं शैक्षणिक मामले के लिए पे लेवल 7 है और कुल रिक्तियां यहां पर एक है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। प्लेसमेंट अधिकारी पे लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं, कुल रिक्तियां एक है और 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। सहायक विद्युत अभियंता पे लेवल 7 है, 35 वर्ष यहां अधिकतम आयु सीमा है। पुस्तकालय सहायक के लिए पे लेवल 4 है, कुल रिक्तियां एक है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। आवेदन विंडो खुल चुका है, 8 जून 2026 तक अपने आवेदन दे देने हैं। संस्थान का वेबसाइट पर भी समस्त जानकारी अपलोडेड है, www.igidr.ac.in/careers पर जाएं और वहां से समस्त जानकारी आप ले सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल भी रहेगी और आर्थिक जगत पर भी होगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन, और सेगमेंट होगा डेडलाइन जिसमें आज बात होगी जैव विविधता, यानी इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो छोटे से लेके बड़े जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, हम सभी रहते हैं। आज का दिन उन सब के नाम है, तो इसके बारे में भी बात होगी। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो जागृति, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा 100.1 FM गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is, of course, my co-host Jagriti Sharma. And well, listeners, Sherlock Holmes remains enduringly popular because of his captivating personality. Secondly, his brilliant method of using logic and science to solve mysteries. And thirdly, the relatable friendship he shared with Dr. Watson. Yes, we are talking about Sherlock Holmes because Sir Arthur Conan Doyle celebrates his birthday today. And Sir Arthur Conan Doyle remains globally popular because firstly he created Sherlock Holmes, one of the most adapted and enduring fictional characters in history. Secondly, his works revolutionized the mystery genre by introducing early forensic techniques. And lastly, his dynamic engagement writing style that has captivated audiences for generations. And we shall talk about him later in a program. But first we begin with the news headlines at this hour.
1: जी, शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ चर्चा की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना।
2: इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस बायनियर इलेक्शंस फॉर 24 राज्यसभा सीट्स फ्रॉम 10 स्टेट्स ऑन द 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
1: सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
2: आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर सीवियर हीट वेव ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड विदर्भ टिल टुमारो।
1: और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइज

0: राइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से।
1: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day for Biological Diversity. Well, Jagriti, every year, May 22nd is marked as the International Day for Biological Diversity by the United Nations. And this day serves as a reminder of the incredible diversity of species, ecosystems and genetic resources that make a planet unique. Biodiversity is the foundation of our food, water, air and overall well-being, and the increasing rate of species extinction, habitat loss and degradation poses a significant threat to biodiversity. And the International Day for Biodiversity aims to raise awareness about these challenges and promote efforts to protect and conserve biodiversity. And the theme for this year's International Day for Biological Diversity is Acting Locally for Global Impact. And this theme emphasizes that reversing global biodiversity loss starts on a small local scale and relies heavily on the combined efforts of communities, local organizations and individuals.
0: बिल्कुल, और जैव विविधता अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसका उपयोग पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों और उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किया जाता है जिसमें सब मिलकर रहते हैं, आपस में मेलजोल रखते हैं और फलते फूलते भी हैं। जैव विविधता प्रजातियों के बीच, प्रजातियों के भीतर और पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पाई जाने वाली विविधता है। जैव विविधता में ऊंचे ऊंचे रेडवुड पेड़ों से लेकर सूक्ष्म एक कोशिकीय शैवाल तक सब कुछ शामिल हो सकता है जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना असंभव है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां पर जो प्रजातियां हैं वो आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे पर कई बार निर्भर भी होती हैं। जिस तरह से हम कई बार देखते हैं कि जंगल जो है जानवरों का आवास है, जानवर पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, कई जानवर दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए स्वस्थ मिट्टी की आवश्यकता है। कवक जीवों को विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मधुमक्खियां और अन्य कीट पराग एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं और इसी से पौधों का प्रजनन संभव होता है। जैव विविधता कम होने पर ये जो हम एक साइकिल देखते हैं आपस में जो जुड़ा हुआ है वो संबंध कमजोर होने लगते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये संबंध टूट भी जाते हैं और इससे पारिस्थितिकी तंत्र की जो सभी प्रजातियां हैं इनको नुकसान भी होता है। और अधिक जैव विविधता जहां पर होती है जिस भी पारिस्थितिकी तंत्र में और जहां पर कम प्रजातियां हैं जिस किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, तो जो अधिक विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है वो अधिक स्थिर होता है और आपदाएं वहां कम आती हैं और वो उसके लिए और अधिक प्रतिरोधी बन जाता है।
1: एब्सोल्युटली जागृति, एंड बायोडायवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ। प्लांट्स फॉर इंस्टेंस आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, फाइबर एक्सेट्रा। Plants, fungi and worms keep the soil fertile and water clean. And as biodiversity decreases, these systems break down. And biodiversity loss is a decrease in the number of particular species in a certain habitat. Loss of biodiversity can lead to extinction of plant and animal species. Around 1 million species already face extinction, many within decades, unless urgent action is taken, and one out of every 8 living species is in danger of extinction.
0: बिल्कुल, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। छोटे कीड़ों से लेकर विशालकाय पेड़ों तक सभी जीवों के आपसी संतुलन और निर्भरता को दर्शाता है। और देखा जाए तो कुछ पंक्तियां अगर इस पे हम देखें कि अंबर से लेकर पाताल तक फैला जीवन का संसार, छोटे कीड़े और विशालकाय जीव सब करते प्रकृति का श्रृंगार, कोई उड़ता नभ में उन्मुक्त, कोई तैरता सागर की गहराई में, हर एक जीव की अपनी कहानी जो बसती है प्रकृति की इस पनाही में। और ये जो लगातार अभी हाल ही में हो या फिर अतीत में हो, कीमती प्रजातियां जो हैं इनका अंधाधुंध दोहन हो रहा है और उनके आवासों के नष्ट होने के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो पक्षी, ग्रेट ऑक, पैसेंजर कबूतर और गौरैया भी। अभिषेक, अगर आप गौर करें तो बहुत कम हो गई है।
1: Absolutely.
0: बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो हमारे जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अभी जो शहरों में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं या कह लीजिए ये टावर्स हैं, उनकी वजह से अब वो एक तरह से नष्ट हो गई, हमें दिखती ही नहीं है। पृथ्वी की वैश्विक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जबकि ये जो प्रजातियां हैं ये बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। जैव विविधता के नुकसान से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है, जो आजकल हम देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, हीट वेव लगातार हो रहा है, सर्दियां होती है तो सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं कहीं पर, मतलब क्लाइमेट चेंज है और जो डिजास्टर्स हैं बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जैव विविधता के बीच जो असंतुलन पैदा हुआ है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है उसके लिए।
1: एब्सोल्युटली सो, टू वाइंड अप आवर डिस्कशन टुडे जागृति, बायोडाइवर्सिटी इज वाइटल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट and it plays a crucial role in providing ecosystem services such as clean air, water, pollination, soil fertility and climate regulation. And the International Day for Biodiversity emphasizes the link between biodiversity conservation and achieving the sustainable development goals. Private organizations, government institutions, NGOs and individuals should all join hands to protect biodiversity, which is vital for the sustenance of mankind. And every day we have to be very sensitive towards biodiversity so that it survives and supports life on the planet, isn't it, Jagriti?
0: बिल्कुल। और अगर बात करें हम कि वर्तमान में जो मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता को गंभीर खतरा हुआ है, इसके कुछ कारण ये भी हैं कि प्राकृतिक आवासों का लगातार विनाश हो रहा है, अंधाधुंध शिकार है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जलवायु परिवर्तन की जैसे अभी हमने बात की है, प्रदूषण इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है, और विदेशी या आक्रामक प्रजातियों का जब प्रवेश बायोडायवर्सिटी में होता है तो ये भी इनके लिए कहीं न कहीं एक गंभीर खतरा पैदा करता है। और अगर हम बात करें कि जैव विविधता का हमारे लिए कितना महत्व है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है ये पर्यावरण को स्थिर और संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खाद्य सुरक्षा और विविधता के लिए बहुत जरूरी है। कृषि फसलों में जो आनुवांशिक विकास है उसमें ये मदद करता है। औषधि निर्माण और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या पारंपरिक अगर उपचार जो होते हैं वो हमें पौधों से, कवक और जीवों से ही प्राप्त होते हैं। और जलवायु नियंत्रण तो अपने आप में है ही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमें ऑक्सीजन देता है, और मृदा का स्वास्थ्य और निर्माण करता है, जल का शुद्धिकरण करता है। पॉलिनेशन की प्रोसेस बहुत जरूरी है जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र से मिलती है, और ये सब मिलकर हमारे आर्थिक विकास और आजीविका का साधन बनते हैं, रोजगार देते हैं। वैज्ञानिक और शैक्षिक जगत में भी इनका बहुत महत्व है, और कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जो मूल्य हैं उनमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
1: सो दैट कंक्लूड्स अ वेरी एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। And as part of a series People's Padma on Akashvani, in an upcoming episode, we speak to N. Rajam, a renowned violinist. She will be honored with the prestigious Padma Vibhushan. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. And you can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास आज के लिए क्या विशेष है।
1: यस, एंड स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम द एक्साइटिंग स्टेट ऑफ गोवा। एंड द टू डे शेकथन गोवा 2026 इवेंट कंक्लूडेड एट कैलंगूट आफ्टर शोकेसिंग गोवा एज एन इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर रिमोट वर्किंग, इनोवेशन एंड स्टार्टअप कल्चर। एंड द इवेंट फोकस ऑन प्रमोटिंग अ न्यू वर्क फ्रॉम बीच concept by bringing together technology, tourism and creative industries. We have more from a correspondent.
2: Shackathon Goa 2026 highlighted Goa's growing popularity among professionals looking for flexible and remote work opportunities. The event promoted Goa as a hub for tourism, technology, innovation and startups. Speaking at the event, Chief Minister Pramod Sawant said,
3: "The Gen Z looks at a career through the completely fresh lens. They refuse to be a typical office setup and they want the flexibility. It is a mental peace and environmental that sparks creativity. That opens the huge opportunity for the Goa, and we are creating the foundation for Goa become the India's preferred the work from home destination and work from beach, where the people can work with the beautiful view. The government is putting the system in place because the talent should find the opportunity here itself."
2: On this, IT and Tourism Minister Rohan Khaunte said,
4: "Goa second

0: increased by 10%. The first day of the event focused on artificial intelligence, robotics and startup creation, while the second day highlighted creator economy, AI-based design and digital storytelling. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Panaji.
1: और गोवा से आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद अब एक जिला एक नदी अभियान के जरिए जल संरक्षण और पर्यावरण पुनरुद्धार की नई कहानी लिख रही है। इसके जरिए नदियों को साफ करने, विलुप्त हो चुकी जलधाराओं को पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया जा रहा है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में।
2: स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने कई विभागों के साथ मिलकर प्रदेश भर में छोटी नदियों के पुनरुद्धार के लिए परिवर्तनकारी पहल की है। योजना के तहत पीलीभीत में 16 ग्राम पंचायतों में फैली 47 किलोमीटर के क्षेत्र में गोमती नदी का पुनरुद्धार किया गया। कई जगहों पर नहर को चौड़ा व गहरा किया गया। बुलंदशहर में VBG राम जी के जरिए 29 किलोमीटर में नीम नदी का पुनरुद्धार किया गया। इसमें किसानों ने भी स्वेच्छा से सहयोग किया। इस पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहना भी की थी। इसके साथ ही कारवां नदी और काली नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, जहां दर्जनों ग्राम पंचायतों में गाद निकालने, पौधरोपण और सामुदायिक भागीदारी से घाटों पर सिंचाई, जैव विविधता और सांस्कृतिक प्रथाओं को बहाल किया गया। इसी तरह छोटे छोटे नालों में बदल चुकी संभल की सोत नदी को जन भागीदारी से जीवन दान दिया गया। रामपुर में रेवती, नाहल और नीली तीन मौसमी धाराओं को पुनर्जीवित किया गया। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना निदेशक जोगिंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में छोटी नदियों के जीर्णोद्धार से शानदार परिणाम सामने आए हैं। ये नदियाँ जो कभी लगभग विलुप्त हो चुकी थी, अपने वास्तविक रूप में लौट रही हैं। परिक्रमा के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: Yes, and Ladakh Astro Week is underway in the Union Territory, turning the region's dark Himalayan skies into a week-long celebration of stars, science and tourism. We have more from a correspondent.
4: The second edition of Ladakh Astro Week is underway in the Union Territory from May 20th to 26th, with the Tourism Department positioning Ladakh as a global hub for astronomy and astrotourism. Building on last year's two-day debut, the festival has been expanded into a week-long celebrations of the cosmos. The event is currently hosting expert-guided stargazing sessions, talks by scientists, astrophotography exhibitions and theme stall across multiple locations. Activities are being held in Nubra Valley, Sham Valley, Dras and Hanle, which houses the Indian Astronomical Observatory, one of the world's highest. Organizers says the festival showcases Ladakh's pristine environment and exceptionally dark skies, ideal for astronomical observations. The director of Tourism Department, UT Ladakh, Sringpaldan, has said that the ongoing event aims to boost tourism while spreading scientific awareness about astronomy and related fields.
5: Ladakh Astro Weeks manane ka jo main purpose hai, Ladakh ko global astro tourism pe le jane ka, aur dusra jo iska main objective hai, Ladakh mein jo scientific knowledge astro tourism, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो करने के लिए ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया था। लास्ट ईयर हमने दो दिन का ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और इस साल हमने वीक लॉन्ग ये फेस्टिवल रखा है। इस फेस्टिवल को हमने नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए डेट हमने फिक्स किया है, सो दैट वी कैन प्रमोट एट अ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक लेवल ऑल्सो। इस फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए OTM या SATE जितने भी ट्रेवल ट्रेड शोज फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पे हमने इस फेस्टिवल को प्रमोट करने की हमने कोशिश किया है। हमारा तो यही कोशिश है कि लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म के फील्ड में ग्लोबल एक हब बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है।
4: ऑर्गेनाइजर्स बिलीव एस्ट्रो वीक विल हैव डाइवर्सिफाइड लद्दाख टूरिज्म बाय अट्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमर्स, रिसर्चर्स, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स एंड ट्रेवलर्स सीकिंग यूनिक नाइट स्काई एक्सपीरियंसेस इन द हिमालयस। फॉर परिक्रमा, दिस इज सेतन टशी फ्रॉम लेह लद्दाख।
1: लेह लद्दाख से चलते हैं चाय के बागानों की ओर। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया और इस अवसर पर चाय बागानों में वर्षों से काम करने वाले चाय के श्रमिकों को सम्मानित किया गया। कई जगहों पर निशुल्क दार्जिलिंग चाय के स्टॉल लगाए गए। उद्योग कर्मियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के इसमें विशेष कार्यक्रम हुए। आइए जानते हैं और अधिक इस रिपोर्ट में।
6: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, तराई तथा डुअर्स में कल भव्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का पालन किया गया। राज्य के इन इलाकों में करीब 400 से अधिक छोटे बड़े चाय बागान हैं, जहां लाखों श्रमिक काम करते हैं। सन 1853 से यहां के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को याद किया गया।

0: दार्जिलिंग पहाड़ में 87 पंजीकृत चाय बगान है जो प्रतिवर्ष लगभग 150 से 200 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करते हैं, जिसका करीब 50% उत्तम गुणवत्ता के चाय यूरोप, अमेरिका, जापान आदि देशों में निर्यात किया जाता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दार्जिलिंग पहाड़ के लिए चाय केवल एक कप का प्याला नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, आजीविका तथा आर्थिक स्रोत का मेरुदंड है। इस वर्ष के चाय दिवस के थीम चाय को बनाए रखना तथा समुदाय को समर्थन देना है तथा इसकी प्रगति एवं समावेशिता को बढ़ावा भी देना है। इस भावना के साथ दार्जिलिंग के चौरस्ता, मिरिक, कालिम्पोंग, कर्सियंग, तराई, डुअर्स तथा सिलीगुड़ी के चाय एक्शन कमेटी भवन सहित कई स्थानों पर चाय के सेवन को संवर्धित करने तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु चाय कंपनियों तथा इससे जुड़े संगठनों ने चाय स्टॉल लगाकर लोगों को निशुल्क दार्जिलिंग चाय पिलाई। हजारों लोगों ने चाय के सेवन का आनंद लिया। कई चाय बगानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शन।
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर, जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
2: एंड इन मलेशिया मास्टर्स, इंडियन शटलर अश्मिता छालिया'स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट टू फॉर्मर यूरोपियन गेम्स चैंपियन लाइन Kjærsfeld of Denmark in the women's singles quarterfinals today. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended around 0.3% up today. The Sensex rose 232 points to close at 75,415, while the Nifty advanced 65 points to settle at 23,719. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange ended mixed. The mid-cap 100 added 0.14%, while the small-cap 100 dipped 0.15%. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: 22nd of May 1772 is the birth anniversary of the great social reformer and the pioneer of the Bengal Renaissance, Raja Ramohan Roy. He was born in village Radhanagar of the Hooghly district in Bengal. By the age of 15, Raja Ramohan Roy had learned Bangla, Persian, Arabic and Sanskrit. He stood firmly against all sorts of religious bigotry and superstitions. This led to differences between Raja Ramohan Roy and his family. Following differences, he left the house and wandered around the Himalayas and went to Tibet. He travelled widely before returning home.
4: After his return, Raja Ramohan Roy's family married him in the hope that he would change. But this did not have any effect on him. Raja Ramohan Roy went to Varanasi and studied the Vedas and the Upanishads deeply. When his father died in 1803, he returned to Murshidabad. Ramohan Roy then worked as a money lender in Calcutta, and from 1809 to 1814, he served in the revenue department of the East India Company.
3: In 1814, Raja Ramohan Roy formed Atmiya Sabha. Atmiya Sabha tried to initiate social and religious reforms in the society. Raja Ramohan Roy campaigned for the rights of women, including the right for widows to remarry and the right for women to hold property. He actively opposed the sati system and the practice of polygamy.
4: He also supported education, particularly education of women. In 1822, he founded a school based on English education.
3: In 1828, Raja Ramohan Roy founded the Brahmo Samaj. Through it, he wanted to expose the religious hypocrisies. His efforts bore fruit when the sati system was abolished in 1829.
4: In 1831, he was given the title Raja by the Mughal king Akbar II, who sent him to the United Kingdom as an ambassador of the Mughal Empire to ensure that the Bengal Sati Regulation 1829 banning the practice of sati was not overturned. In addition, Roy also petitioned the king to increase the Mughal emperor's allowance. On the 27th of September 1833, while on a visit to Britain, he died of meningitis in Stapleton near Bristol. Stapleton Groves is the place where he was laid to rest initially. Later, he was reinterred in the nearby Arnos Vale Cemetery in 1843, where his mausoleum still stands.
1: और आजादी के पहले के भारत के सफल व्यवसायियों में से एक गोविंद राम सिकसरिया की आज पुण्यतिथि है. उन्हें भारत के कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता था. कपास बाजार में सफलता प्राप्त करने के बाद गोविंद राम सिकसरिया ने अपने क्षितिज का विस्तार किया और सर्राफा तथा अन्य कमोडिटी बाजारों में भी प्रवेश किया. वे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. कॉटन किंग गोविंद राम ने अपने जीवन काल में लगभग 2 करोड़ रूपये समाज कल्याण के लिए दान
2: भी किए. यस, एंड विक्टर ह्यूगो पास्ड ऑन दिस डे इन 1885. ही वाज एन इमेंसली इन्फ्लुएंशियल फ्रेंच रोमांटिक ऑथर, पोएट, प्ले राइट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट वर्सटाइल राइटर्स इन फ्रेंच लिटरेरी हिस्ट्री. व्हाइल रिवियर्ड इन फ्रांस प्राइमरली एज अ मास्टर पोएट, ही अचीव्ड ग्लोबल फेम फॉर हिज लेजेंडरी हिस्टोरिकल नॉवेल्स. हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर द नॉवेल्स द हंचबैक ऑफ नोट्रेडम इन 1831 एंड ले मिजराब्लू इन 1862. In France, Hugo is renowned for his poetry collections such as Les Contemplations and La Legende des Siècles, The Legend of the Ages.
1: 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ और सौंदर्य शास्त्री गोविंद्र चंद पांडे की आज पुण्यतिथि है. वे संस्कृत, हिब्रू और लैटिन सहित अनेक भाषाओं के असाधारण विद्वान थे. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, बौद्ध दर्शन, साहित्य, इतिहास लेखन और दर्शन आदि में गोविंद चंद्र पांडे को विशेषज्ञता हासिल थी. वर्ष 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया.
2: यस, एंड लैंगस्टन ह्यूज पास्ड ऑन दिस डे 1967. ही वाज अ पायनियरिंग अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड प्लेराइट. एज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द हार्लेम रेनेसांस, ह्यूज इज बेस्ट नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट इनोवेटर्स ऑफ जैज पोएट्री एंड फॉर विविडली कैप्चरिंग द रियलिटीज ऑफ वर्किंग क्लास ब्लैक लाइफ इन अमेरिका.
1: काशी के प्रकांड विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिमान गढ़े. रेवा प्रसाद द्विवेदी साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान थे. उन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की. इनमें विशेष है सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव.
2: Born on November 20, 1921, Chidananda Dasgupta passed away on this day. He was a film critic, historian and a pioneer of the film society movement in India. A close association with the legendary filmmaker Satyajit Ray led to the formation of the Calcutta Film Society in 1947 with Sergei Einstein's classic Battleship Potemkin as his first screening.
1: और भारत में शायद ही ऐसा कोई खेल प्रेमी हो जो गामा पहलवान के नाम से परिचित ना हो. आज ही के दिन गामा पहलवान ने इस दुनिया में कदम रखा. उन्हें रुस्तम-ए-जमा पहलवान के नाम से भी जाना जाता था. गामा पहलवान भारत में एक किंवदंती बन चुके हैं. शारीरिक ताकत के लिए जिस प्रकार आजकल दारा सिंह की मिसाल दी जाती है, इसी तरह से कुछ समय पहले तक गामा पहलवान का नाम लिया जाता था. अपने पहलवानी के दौर में गामा पहलवान की उपलब्धियां इतनी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय रहीं कि साधारणतः लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि गामा पहलवान वाकई में थे. गामा अपने पहलवानी जीवन में अजय रहे, जो किसी भी पहलवान के लिए आज भी असंभव है. ये गुण गामा को विश्व का महानतम पहलवान का दर्जा दिलाता है.
2: Yes, and Sir Arthur Conan Doyle was a prolific British writer and physician, best known for creating the legendary fictional detective Sherlock Holmes, like as we are mentioning in the beginning of our program, and his loyal companion Dr. Watson. Born on May 22, 1859 in Edinburgh, Scotland, he wrote 4 novels and 56 short stories featuring Holmes, which became massive milestones in the evolution of modern crime fiction. Though his legacy rests primarily on his master sleuth, Doyle was a versatile author who penned over 200 works, including science fiction, historical romances, poetry, and political essays.
1: हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु की आज जयंती है. मॉस्को के प्रमुख प्रकाशन गृह प्रगति और रादुगा प्रकाशन में लगभग 4 दशकों तक संपादक अनुवादक पद पर रहते हुए उन्होंने 100 से अधिक क्लासिक रूसी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भारतीय पाठकों को सुलभ कराया और प्रोफेसर मधु मॉस्को रेडियो।

से भी जुड़े रहे। इन दो भाषाओं में विशिष्ट रचना के लिए उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। और आज हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण की पुण्यतिथि है। राजश्री प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्म में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इनके काम के लिए विशेष तौर पर इन्हें याद किया जाता है। तो आइए उनकी शानदार फिल्मों से गीत आपको यहां सुनाते हैं।

लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। वे संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण में से एक थे। उनका नाम लक्ष्मण और जबकि उनके जोड़ीदार राम यानी कि राम सुरेंद्र थे। और राम सुरेंद्र की मृत्यु के बाद विजय पाटिल यानी लक्ष्मण ने अपने नाम के साथ राम भी जोड़ लिया और इस तरह से वे बन गए राम लक्ष्मण।

0: इसके साथ ही अनुमति दीजिए जागृति और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्हें अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही

यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार तीन भाषाओं में कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल

0: की जरूरत है। तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद। तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं। तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर।
1: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे। तो कोई भी आते हैं तो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई, तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा। तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओंकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से जी, संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वॉयलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है जी। कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल ऐसा है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ हाँ।
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे, या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट में।
0: और जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई, और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी वो बहुत ही पॉपुलर
0: है, उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता।
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है
1: जी, जी।
0: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में
1: जी। बिल्कुल,
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो वो पूछा इतने में कर लोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे, और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा, आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना?

0: ना है उनका एक लोग का, तो लोग कहाँ कर। तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी।
0: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है शाम के 6:11:03। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार गीत में। आइए सुनते हैं कुछ सदाबहार नगमे।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म धरती से, आवाज मोहम्मद रफी की और संगीत शंकर जयकिशन का। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान दें, सर गंगा हॉस्पिटल में मिस्टर भगत सिंह को अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता है। जिनका भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है वो इस सहयोग का दान अवश्य दें, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। याद रखें, एड्रेस सर गंगा हॉस्पिटल, ओल्ड बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, रूम नंबर 1389 यानी 1379, बेड नंबर 6। कॉन्टेक्ट डिटेल्स 8447958030। एक बार फिर सुन लें, 8447958030।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह चर्चितवान्। सः उक्तवान् यत् अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु निवेश प्रवाहः द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यमस्ति। निर्वाचनायोगेन अग्रिमे मासे अष्टादश दिनांके दश राज्याणां चतुर्विंशति राज्य सभासनानां द्वितीये वर्षे आयोक्ष्यमाणस्य निर्वाचनस्य घोषणाम् अकरोत्। सर्वोच्च न्यायालयेन जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् नवमी कक्षायाः छात्राणां कृते CBSE इत्यस्य त्रिभाषीयाध्ययनस्य अनिवार्यतायाः विरुद्धं याचिकां विचारं समारब्धम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् सम्पूर्णे सीमा क्षेत्रेषु अभेद्यतरं कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमा परियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलम् अद्य सायंकाले हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलम सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत साइप्रस देशयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्यां आतंकवादावरोधस्य विषये नवान्वेषण तंत्रज्ञानयोः उच्चशिक्षायां अनुसंधाने सांस्कृतिक सहयोगे च संयुक्त कार्यसमूहस्य स्थापने इत्यादीनां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकेषां सन्धिपत्राणां आदान प्रदानम् अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्यनेन सह विविधेषु क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चां कृतवान्। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहकारं सह क्षेत्रीय वैश्विक महत्वस्य विषयेषु अपि तौ विचाराणां आदान प्रदानं कृतवन्तौ। संयुक्त वक्तव्य प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना भारत साइप्रस देशयोः मैत्री न केवलं दृढः अपितु भविष्याभिमुखी अपि अस्तीति उक्तम्। सः अवदत् यत् गत दशके साइप्रस देशात् भारते निवेशः प्रायः द्विगुणितः अभवत्। तेनोदीरितं यत् भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समन्वये अनेकाः नूतनाः सम्भावनाः उद्भूताः सन्ति। उभयोः देशयोः मध्ये विश्वासः च वर्धितः अस्ति। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु पुनः निवेश प्रवाहं द्विगुणीकर्तुं भारत साइप्रस देशयोः लक्ष्यम् अस्तीति श्रीमोदी अवदत्।
1: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी अवदत् यत् उपवेशनावधौ तौ वैश्विक विषयेषु अपि चर्चितवन्तौ।
1: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषः अवदत् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः यूरोपीय संघ भारत सम्बन्धाश्च गतवर्षे अत्यन्त

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र का समस्त परिवार आपका अभिनंदन करता है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी एक नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे. चर्चा करने के लिए आज हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची.
1: श्रोताओं, चर्चा शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise, Sensex jumps over 200 points, Nifty reclaims 23,700 level. Major Asian stock indices edge higher and global crude oil prices climb around 2%.
1: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स में 200 अंकों से अधिक का उछाल, वहीं निफ्टी 23,700 के स्तर पर बंद हुआ. प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में हुई वृद्धि और वैश्विक कच्चे तेल के दाम लगभग 2% बढ़े.

0: Listeners, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने लगभग 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। रुपए के मजबूत होने से बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी आई। सेंसेक्स 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर आ गया। वहीं व्यापक शेयर बाजार की प्रतिक्रिया आज सुस्त नजर आई। मिड कैप 100 में 0.14% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.15% की गिरावट दर्ज की गई।
0: Benchmark domestic equity indices pared their intraday gains to end around 0.3% higher today. The market's upward trajectory was sustained by a strengthening domestic currency, which marked its second consecutive day of appreciation. The Sensex rose 232 points to close at 75,415, while the Nifty advanced 65 points to settle at 23,719. Meanwhile, performance across the broader market on the National Stock Exchange remained largely muted. The mid-cap 100 added 0.14%, while the small-cap 100 dipped 0.15%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में ट्रेंट 3%, एक्सिस बैंक 2.5% और आईसीआईसीआई बैंक में 1.8% की वृद्धि हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे पहला नाम सनफार्मा लगभग 2.5%, आईटीसी 2% और पावर ग्रिड में 1.7% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices at the BSE, 14 out of 25 sectors ended in positive territory. In the top gainers, private bank index rose more than 1.3%. Top 10 bank index climbed over 1.2% and BankEx added nearly 1.2%. Among the top losers, hospital fell by 1.4%, healthcare lost 1.2% and IT as well as utilities dropped by 0.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,213 companies advanced, shares of 1,971 companies declined and shares of 179 companies remained unchanged.
1: Aur ab baat shrotao rupaiye ki. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे मजबूत होकर 95.70 रुपए पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 99.36 पर कारोबार कर रहा था। पुनीत, रुपए की स्थिरता ने आज बाजार में तेजी लाई है और बल्कि आज आरबीआई ने भी केंद्र को डिविडेंड देने की बात की है। इससे अर्थव्यवस्था और बाजार को किस प्रकार समर्थन मिलेगा, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इसे विस्तार में बताएं हमारे श्रोताओं के लिए।
2: जी प्राची, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों की जो मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज है, चाहे हम महंगाई की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, तो काफी चिंताएं रही हैं इन्वेस्टर्स को। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, वो भी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, कंफ्यूज करने वाली है इन्वेस्टर्स। एंड वो अपना एक डायरेक्शन नहीं बना पा रहे मार्केट्स के लिए, तो कंफ्यूजन देखा है। भारत में हमने देखा पर्टिकुलरली कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा काफी हैवी सेलिंग रही है। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की जो वॉलिटिलिटी देखें, और मार्केट्स वैसे इस सप्ताह बहुत ज्यादा वॉलिटाइल नहीं रही, एक नैरो रेंज में ट्रेड किया। और हालांकि एफआईआईज के द्वारा सेलिंग काफी बनी रही, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो रुझान था वो काफी पॉजिटिव था। तो आप देखेंगे कि मार्केट्स में हालांकि टॉपलाइन जो स्टॉक्स हैं या हेडलाइन इंडिसेस हैं, वहां पर थोड़ी गिरावट रही या थोड़ा नरम रुख था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी बढ़त थी। मुझे लगता है कि मार्केट्स में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का आउटलुक पॉजिटिव है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स नेचुरली अफेक्टेड बाय द ग्लोबल सिचुएशन, वो सेलिंग चल रही है। तो और इस दौरान जो रुपए में जो हमने एक रिवर्सल देखा पिछले दो दिन में, रुपया करीब करीब कल 97 रुपीज डॉलर पहुंच गया था, वहां से रिकवरी हुई। कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कदम उठाए गए, काफी मीनिंगफुल कदम उठाए आरबीआई ने रुपए को साधने के लिए। साथ ही हमने देखा कि कुछ गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट्स की और आगे एक रोड मैप दिया कि कैसे अर्थव्यवस्था को मैनेज करना चाहते हैं। मुझे लगता है बाजारों ने उसको काफी पॉजिटिवली लिया एंड वी सॉ सम रिकवरी इन रूपी एंड इन द मार्केट्स।
0: बट पुनीत, यू नो, इफ यू लुक एट दी, लाइक यू सेइंग, द होल वीक द मार्केट्स हैव बीन, यू नो, वोलेटिलिटी वी हैव सीन, बट इन अ नैरो रेंज। बट इफ यू टॉक अबाउट द टू मेन इंडिसेस एंड द ब्रॉडर मार्केट, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी? बिकॉज इवन इन दिस मार्केट देयर आर पीपल, यू नो, हु आर सेइंग दैट, यू नो, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मार्केट, दे हैव वॉकड आउट, you know, with the better prices or the, you know, for their equity. So what is the difference and why the difference is existing between the indices and the broader markets?
2: So Anubhav, that's an interesting observation you made, and a lot of people are saying that, okay, while the headline numbers or the news appears to be negative, the internals or the specific stocks, they appear to be doing much better.
0: Yeah.
2: Largely the difference is between the behavior of the foreign investors who actually own these large cap stocks and they continue to sell. So while we see very large scale selling by FIIs and therefore we see some softness in indices, the domestic investors who largely invest in either specific stocks or mid caps and small caps, that fund flows have been very strong. So we have seen very good buying in mid cap and small cap stocks to the broader market by domestic investors, and while FIIs who spend or who invest largely in large caps, they have been sellers. So there is this, I would say, diversion in the behavior of the two categories of investor in the market.
0: So would you say that now is the right time to actually, for those who want to, you know, stay invested, to actually go ahead and probably invest more, or, you know, in the mid cap and small caps?
2: So Anubha, you know,
0: or would again, that be too much
2: no,
0: of a...
2: Again, see, it depends largely on what kind of investor you are.
0: Yes.
2: See, if you are a long term investor and a passive investor and you do not have the time or the expertise to invest, you know, to research stocks and to make specific calls, then I would advise that you stick to investing through mutual funds, not to SIPs.
0: Yes.
2: And you follow the larger picture, which is the large caps, safer stocks. So if you are in that if you're that kind of an investor, then I think it is better to stick to large caps and to stick to broader diversified instruments like

0: mutual funds. But if you have the capability to research a stock, to now take a call on it, and bear that risk, because it is more risky to do this kind of thing. But if you can do that, then of course the rewards are there. So you can choose to be, to take a slightly higher risk and make more money, or you can choose the safer path, go to mutual funds, and now wait for your returns to come in.
1: Yeah, so the thing here is that you should have the ability to read the market and the appetite to take risks.
0: Absolutely.
1: That is the most important thing.
0: So what kind of investor you are,
1: yes,
0: will actually dictate the kind of strategy you can adopt.
1: And the kind of returns that you will get.
0: And the returns you will get.
1: Definitely.
2: Puneet, banking sector ne aaj, banking sector ko humne dekha aaj rebound karte hue.
0: देखिए बैंकिंग सेक्टर वैसे तो पूरी अर्थव्यवस्था की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, और बैंकिंग सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो हमें ये बताता है कि हम किस प्रकार से देख रहे हैं आर्थिक प्रदर्शन को. शुरुआती दौर में मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले अगर दो हफ्ते पहले हम जाएं तो हमने देखा था कि बैंकिंग सेक्टर में काफी कमजोरी आ रही थी. बड़े बड़े बैंक के स्टॉक्स थे वो भी गिर रहे थे. जो बैंक के नंबर्स आए, खासतौर से जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो क्वार्टरली नंबर्स आए, वो थोड़ा सा उससे मार्केट डिसअपॉइंटेड थी. मार्केट को लगा ऐसा कि क्या ये आने वाली आर्थिक कमजोरी का कुछ संदेश है इसके अंदर. पर मुझे लगता है जो हमने सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स देखे, जो कमेंट्री आई बैंकों के द्वारा, उससे ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है. कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है. अब एक और बात हमने रुख देखा है कि अगेन जो मैं पहले कह रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी बड़े पैमाने पर बैंकिंग क्षेत्र में शेयर्स बेचे हैं. इनफैक्ट हैवीएस्ट सेलिंग बाय एफआईआईज हैज बीन इन द फाइनेंशियल सेक्टर. तो वहां पर हमने शेयरों में गिरावट देखी थी, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी लगी और वहां पर हम देख रहे हैं बाइंग हो रही है. अगेन ये एक मैं कहूंगा एक आप टग ऑफ वॉर कह सकते हैं बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो चल रहा है. और कुल मिलाकर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है बैंकिंग में, और आज वैल्यू बेस्ड बाइंग थी तो इसलिए हमने मजबूती देखी.
2: ये आईटी सेक्टर को लेकर के भी आपका कहना है, क्योंकि कल हमारे साथ डॉक्टर शर्मा थे, एसपी शर्मा जी थे, और उन्होंने कहा बकौल एसपी शर्मा उनका ये कहना है कि भारत की जितनी भी सेक्टर्स हैं वो सारे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं. तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या क्या आप भी इससे सहमत हैं.
0: देखिए आईटी सेक्टर बहुत ही एक नाजुक मोड़ पर मेरे हिसाब से खड़ा हुआ है. अगर आप आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिल्कुल नामी कंपनियां हैं जहां पर 5 लाख 6 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, और जो भारत की जो आईटी सेक्टर स्टोरी है उसकी जो बिल्कुल कोर स्टोरीज हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि जो शेयर्स हैं वहां पर वो अपने पिछले 10 साल के निचले स्तर पर, लोअर लेवल्स पर वो ट्रेड कर रहे हैं. तो या तो वो बहुत बढ़िया वैल्यू बाइंग है, या जिसे हम कहते हैं वैल्यू ट्रैप है, कि आपको लग रहा है कि वो अच्छा है लेकिन आने वाले समय में और परेशानी आ सकती है. मैं अभी आई वुड से द ज्यूरी इज आउट, आई एम नॉट रियली क्लियर. ये जरूर मैं कह सकता हूं कि भारत का आईटी क्षेत्र काफी विकसित है, डेवलप्ड है, स्किल सेट बहुत है अभी, लेकिन हमें कितना समय लगेगा इससे उभरने में अभी ये पक्का नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता कि देखिए 6 महीने बाद आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस टर्न अराउंड हो जाएगी, ऐसा शायद कहना ठीक नहीं होगा. मुझे लगता है हमारे सामने चैलेंजेस हैं, इवेंचुअली हम ये चैलेंजेस फेस करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें समय लग सकता है.
1: एंड वुड यू से वन ऑफ द चैलेंजेस इज वेयर इंडिया इज प्लेस्ड सो फार एज एआई इज कंसर्न.
0: Absolutely, it is essentially AI which is challenging the services. See, Indian companies are largely IT services companies.
1: Yes.
0: And AI is going to replace many of these services. Yeah. Whereas many international companies, if you see the IT sector in let's say in USA or in other countries, has not taken that kind of hit, because those companies are product companies.
1: Yes.
0: So India is definitely going to take a hit in terms of impact of AI adoption in the industry. But I think there will be new opportunities. There will be new avenues where Indian companies will be able to grow. We have a very robust, very strong IT sector, and they have been preparing for this scenario for some time. So I'm not pessimistic about it. My assessment is that it will take us a couple of years to actually come out of it.
1: It may be challenging, but it's not the end of the road, because it's just starting out, and of course AI is the future, so let's hope. And we all know that Indian companies, like you said, IT companies have always been known
0: and,
1: for
0: and India will adopt AI in a very robust, very strong manner. Of course we're taking some time to go about it.
2: Right. Puneet, aapne kaha ki abhi badi anishchitta hai ki kab kis tarike se AI jo hai pure apne virat roop mein aayega aur market pe apna ek matlab varchasva kayam karega jisme ki log apne paise lagayenge, nivesh karenge. लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, और एक श्रोता पिछले कुछ दिनों उनका भी ये सवाल था, तो मैं आपके सामने इसे रखना चाहूंगी कि जब मार्केट्स गिर रही हों

0: इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसको आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू प्रोपोजिशन या वैल्यू बायर जो है वो नॉर्मली मार्केट के खिलाफ जाकर के ही वो इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप मार्केट के साथ हैं तो नेचुरली मोमेंटम में आपको चीजें महंगी मिलेंगी, और अगर आप सेफ प्लेयर हैं, आपको लगता है नहीं मुझे तो मार्केट के ट्रेंड को ही फॉलो करना है, तो आपके लिए ये शायद तरीका सही नहीं होगा। और मैं एडवाइस करूंगा ऐसे करना भी नहीं चाहिए उन इन्वेस्टर्स को जो रिस्क एवर्स हैं, और जिन लोगों की एपिटाइट है, होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप डेफिनेटली वैल्यू बाइंग जिसे हम कहते हैं वो करना चाहिए। अदरवाइज जिसे मोमेंटम बाइंग कहते हैं कि आप बाजार की धारा के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस प्रकार अगेन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं, आप किस प्रकार की निवेश करना पसंद करते हैं।
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। श्रोताओं, आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में तेजी देखी गई। जापान का निकेई 2.7%, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 1% तथा सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 0.5% से अधिक बढ़ा। आर्थिक मोर्चे पर जापान की मुद्रास्फीति दर अप्रैल में घटकर 1.4% हो गई, जो मार्च में 1.5% थी। ये लगातार चौथा महीना है जब मुद्रास्फीति दर बैंक ऑफ जापान के 2% के लक्ष्य के स्तर से नीचे रही है। बात अगर यूरोपीय सूचकांकों की करें तो यहां भी लिवाली देखी गई, यानी कि तेजी देखी गई। फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स 0.3% से अधिक बढ़ा, जबकि लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% ऊपर कारोबार करते नजर आया।
2: Let's move on to the US markets. The Wall Street ended on a positive note yesterday. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed over 0.5%. The S&P 500 advanced nearly 0.2% and the Nasdaq Composite Index added 0.1%. Meanwhile, investors were hopeful that the United States and Iran would soon finalize a peace agreement. Puneet, if I, you know, we talk about the US markets, of course, investors not just in the US but the world over, any market, are you know looking towards the US and Iran, you know, and they're all hoping that some kind of a peace agreement is agreed upon so that you know the markets can recover. But what specifically, if we talk about the US markets, because we're seeing Nasdaq 0.1%, not much, but it's a tech heavy index. So what is it that the investors in the US are actually, you know, hoping for?
0: So Anubha, interestingly, in the US, S&P 500 and Nasdaq are almost near record highs. Yes. At the current level. And this is despite all the confusion about Iran-Iraq war, Iran-US war.
2: That's very interesting, actually. Yeah.
0: So apparently in the US, we're going to see two very large IPOs, one from SpaceX and one from OpenAI, which are going to be more than $1 trillion companies. So several $1 trillion companies actually, and the IPOs themselves may be $1 trillion IPOs. So, and these are very large market events, and yeah, probably markets are preparing for this kind of huge events going forward. And if you have an unstable, yes, global situation, if you have a situation where there is uncertainty about inflation, about what kind of money flows are there, and there is no war going on in the Middle East, then the IPOs will, of course, the sentiment will be subdued. So my guess is that markets are hoping that before these IPOs hit the market,
2: yes,
0: this very large overhang on the market will be lifted, and probably that is the reason why investors are hoping that this war will get resolved before these IPOs come.
2: Right. And a very quick comment on the Asian markets. You know, we've been seeing, even yesterday we saw that the KOSPI and even, you know, the markets were going with, were quite high. It was a mixed trend, but most of the markets were high. So what is it that's driving the major Asian markets?
0: So this year and last, in fact, Japanese and Korean markets, they really shot up. In fact, they shot up by 60-70%. The record rise was there, largely driven by this AI mania, because there's this concentration of AI companies in Korea in Japan. And we saw a huge amount of money flow into these markets, and these went up. And then, of course, there was a big crash also last week. So they're very volatile markets. They're very narrow markets. But largely, I think the AI trade, the money flows from Europe and from US, they went into these markets.
2: Right.
1: और खबरों में श्रोताओं, भारत और साइप्रस ने आज नई दिल्ली में कई समझौतों का आदान प्रदान किया। इन समझौतों में आतंकवाद विरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्र निहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडेस के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित

0: और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संयुक्त वक्तव्य में बताया कि पिछले एक दशक में साइप्रस का भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के साथ कई नई संभावनाएं उभरी हैं और दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में निवेश प्रवाह को फिर से दोगुना करना है।
1: यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे।
0: पुनीत, भारत और साइप्रस के बीच मसौदे पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, इसको मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि किस तरीके से ये भारत के लिए, भारत को कैसे लाभान्वित करेंगे।
2: प्राची, साइप्रस हालांकि बहुत छोटा सा एक देश लगता है, लेकिन भारत के लिए उसके काफी बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के लिए गेटवे है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। साइप्रस के रूट से यूरोपियन यूनियन से भारत में काफी निवेश आता है, ऑलरेडी काफी बड़ा निवेश आता है। शायद टॉप 5 इन्वेस्टमेंट जो सोर्सेज में हमारे ये आते हैं इन्वेस्टमेंट वहां से, और यूरोप में भी जो हम निवेश करना चाहते हैं वहां भी साइप्रस के वाया के थ्रू हम वहां पर अच्छा निवेश कर सकते हैं। और उसके कई बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, सुविधाएं भी वहां पर बहुत दी गई हैं। तो जो 3-4 बड़े सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, उसमें साइप्रस का नाम भी आता है। दूसरा, मुझे लगता है कि भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिकली जो साइप्रस की लोकेशन है, जो इंडस्ट्री है वहां पर, हम काफी बड़ी मैरीटाइम इंडस्ट्री पर ध्यान देना चाहते हैं नेवल फोर्सेज के लिए, तो वो भी साइप्रस एक काफी भारत के क्लोज एक मित्र देश है। तो मुझे लगता है ये काफी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है उस नजरिए से।
0: पुनीत, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट साइप्रस एंड एट द मोमेंट साइप्रस होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द ईयू काउंसिल, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एट द टाइम व्हेन इंडिया जस्ट यू नो वी कंक्लूडेड आर एफटीए एग्रीमेंट इन जनवरी एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी वांट टू कंक्लूड इट बाय एज अर्ली एज 2027। बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गेटवे टू द यूरोपियन यूनियन, हाउ crucial or what role can Cyprus play in, you know, being a gateway or a platform for those businesses which are trying to get not only into EU but the wider Mediterranean region, the Gulf region, as well as the North African region.
2: So if you look at the geographical location of Cyprus, it is very interesting. It gives us access to European Union as well as to the African countries. And in fact, we already have very good relations with Greece, which is also a neighboring country to Cyprus. So and of course, we have some adversaries also in that region. So clearly, for India, I think it is a very important country because it gives us a foothold in a very crucial region, geographically also and economically.
0: Right. Let's move on to the next story. The 623rd meeting of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India was held in Mumbai today under the chairmanship of RBI Governor Sanjay Malhotra. The board reviewed the global and domestic economic situation, including risks to the outlook, and deliberated on the RBI's annual accounts for the financial year 25-26. According to the RBI, the bank's gross income increased by 26.42% over the previous year, while expenditure before risk provisions rose by 27.60%. Net income before risk provisions and transfer to statutory funds stood at 3.95 lakh crores rupees in FY 25-26, compared to 3.13 lakh crore rupees in FY 24-25. The RBI's balance sheet expanded by 20.61% to 91.97 lakh crore rupees as of March 31st, 2026. The Central Board approved the transfer of a surplus of 2.86 lakh crore rupees to the central government for the accounting year 25-26. Puneet, lots and lots of figures, facts in this particular story. But the most important, I think, here is the fact that the Central Bank, the Reserve Bank of India, has transferred a record 2.86 lakh crore rupees to the central government for this financial year. How important is this in the present scenario And this transfer that has been done by the, you know, central bank to the government, how much of a cushion will it provide at a time like this when the crude oil prices are rising?
2: So, Anubha, I think this transfer of almost 3 lakh crores to central government is extremely important, because government is really strapped for money right now. It is losing a lot of money on subsidizing energy prices for the masses. They're trying to hold it together for food prices. So, government is really right now really strained for resources. And I think this 3 lakh crore rupees could not have come sooner. Of course, RBI makes money on 2-3 things. Yeah. RBI makes money from fee on printing currency. They also conduct investment operations, because they buy and sell government securities.
0: Okay.
2: And they also make investments in assets like gold. So, and fortunately for RBI, this entire year has been very profitable. So RBI, of course, we had estimated that RBI will give a dividend of around 3 lakh crores. Government had budgeted for it in the projections. But even then, I think this cash flow of 3 lakh crores will be extremely welcome at this point of time, because government is looking for those resources. And I think it will be put to good use.
0: But there's also the government's fiscal deficit target, you know, is at 4.3%. So
2: you've touched a very raw nerve, no? So government has this enormous pressure of subsidizing fertilizer prices, subsidizing essential goods. They have to take care of the energy prices. So this 4.3% fiscal deficit target that we had for this current year, I think it will be difficult to meet. But government,
0: given the difficult circumstances and situation right now,
2: and in 2008, we had exceeded our fiscal targets. Then pandemic era, we had exceeded our fiscal targets to manage the economy for the larger good.
0: Right.
2: So I'm quite tolerant about it, but let's see how the government tackles this issue.
0: Right.
3: आगे बढ़ते हैं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 मई को 8 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 688 अरब अमरीकी डॉलर रह गया. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां इस सप्ताह 6.4 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 546 अरब अमरीकी डॉलर रह गई. स्वर्ण भंडार 1.5 अरब अमरीकी डॉलर से कम होकर 119 अरब अमरीकी डॉलर पर आ गया है. विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 49 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 18.82 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया. वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश का मुद्रा भंडार भी 25 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 4.85 अरब अमरीकी डॉलर शेष है.
0: Let's move on to the commodities. Global crude oil prices climbed today as investor skepticism rose surrounding the prospects of a diplomatic breakthrough in the ongoing U.S.-Iran peace talks. Brent crude was trading over 2.5% up at $105.11 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading 1.7% higher at $98 per barrel when reports last came in. Punita, very quick comment. U.S. markets, of course, we see a absolutely, you know, opposite investor sentiment, and here the skepticism in the.
2: So, Anubhav, of course, these are very two sides of the two opposite sides of the same coin. Crude oil prices right now are very dependent on the direction of U.S.-Iran war.
0: Yes.
2: It changes every day. So there's we have no ability to predict what will happen tomorrow.
0: Absolutely.
2: We have to live in the moment as far as crude prices are concerned.
0: Right. And let's move on to the other commodities, gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.5% down at 1,59,620 rupees per 10 grams, while silver was trading 1% down at 2,72,570 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट वाइल अगो.
3: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 0.4% की गिरावट के साथ 1,58,905 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 1.1% की गिरावट के साथ 2,71,819 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी.
0: Puneet, a very quick comment. Of course, the Prime Minister has asked people not to buy, very rightly asked people not to, you know, buy gold, physical gold. But what about the ETFs? What about the gold bonds?
2: So ETFs, we've seen that the price trend has softened a little bit in the last few days after government increased the duty on gold imports. In fact, international price of gold came down after that imposition. Okay. So I think we are moving in the right direction as far as we are investing in gold and silver.
3: पुनीत, कार्यक्रम में आने के लिए, मेरे और अनुभा के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद प्राची.
0: And before we close, a look at the headlines again. Benchmark domestic indices rise. Sensex jumps over 200 points. Nifty reclaims 23,700 level. Major Asian stock indices edge higher. And global crude oil prices climb around 2%. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do remember to join us. Till then, from the entire team, Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज की चर्चा का विषय है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सचदेवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: प्रोफेसर सचदेवा, साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोड्यूलिडेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। ऐसे समय में जब भारत और यूरोपीय संघ 2027 तक की शुरुआत तक अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं, साइप्रस इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से तब जबकि वर्तमान में वह यूरोपियन संघ परिषद का अध्यक्ष है।
1: ये उनकी जो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो ईयू प्रेसिडेंसी की यूरोपियन काउंसिल की वो 6 मंथ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, उसमें हर 6-6 महीने के बाद वहां पे जो है नया कंट्री जो है उसका प्रेसिडेंसी कंट्री बनता है। तो अभी इस साल के पहले 6 महीने की प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास है, तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी मीटिंग्स वहां पे यूरोपीय संघ की जो होती है वहां पे काउंसिल पे, उनकी जो अध्यक्षता है उन मीटिंग्स की, सब वो प्रेसिडेंसी कंट्री करता है। और उसका हर प्रेसिडेंसी कंट्री अपना एक एजेंडा लेके आता है कि मैं इस 6 महीने के अंदर ये चीजें जो है वो कोशिश करेंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक। तो वैसे तो ये रूटीन मैटर है, हर 6-6 महीने में कंट्री जैसे बदलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे संबंध हैं वो यूरोपीय संघ के साथ बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं पिछले कई सालों में। और अभी हमने देखा था जब जनवरी में भारत में यूरोपीय संघ और भारत की जो समिट मीटिंग हुई थी, उसके बाद से नया रोडमैप हमारा 2030 का उनके साथ उसको अपनाया गया है। और जैसा आपने कहा कि मुक्त व्यापार जो बात है ट्रेड एग्रीमेंट की, उसके नेगोशिएशन कम्प्लीट हो गए हैं, फॉर्मेलिटीज वहां पे चल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी है उसको क्रियान्वित किया जाए और उसमें जो भी प्रेसिडेंसी कंट्री है निश्चित तौर से उनका एक रोल रहता है, उसको थोड़ा आगे पुश जल्दी कर सकते हैं, तो उसमें साइप्रस भी अपनी भूमिका उसमें अदा कर सकता है। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री का भी दौरा भी था यूरोप का, इसमें 4 यूरोपीय देशों में गए थे, उसमें भी अपने संबंध है, द्विपक्षीय संबंध है उन देशों के साथ आगे बढ़ाए हैं। और उसी कड़ी में मुझे लगता है ये जो अभी साइप्रस के राष्ट्रपति डोलिडिस का यहाँ पे जो दौरा है, उसी की श्रृंखला में मुझे लगता है कि एक एक देश के साथ हम बिल्कुल अपने संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री भी साइप्रस का दौरा करके 2025 में वहां पे आए थे, तो संबंध काफी करीब हुए हैं पिछले कुछ सालों में।
0: प्रोफेसर सचदेवा, इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछूं, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत साइप्रस की मित्रता और भारत ईयू एफटीए में साइप्रस की भूमिका के बारे में क्या कहा।
2: भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। आज जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है।
0: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस संयुक्त प्रेस वक्तव्य में एक और घोषणा की कि भारत और साइप्रस अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया है और अगले 5 वर्षों में साइप्रस में भारत में होने वाले निवेश को दुगना करने का एक लक्ष्य रखा है। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: फ्रेंड, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को

0: फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
1: तो प्रोफेसर सचदेवा, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना और हम भी बात कर रहे थे कि दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है उसको दुगना करने का एक निर्णय लिया है और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर एलिवेट करने का जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, इन दोनों ही फैसलों पर आप क्या सोचते हैं?
2: इनफैक्ट ये एक काफी सोची समझी नीति मुझे लगता है भारत की है यूरोप के प्रति, जो काफी अभी बिल्कुल उभर कर आ रही है। आप जानते हैं कि हमारा यूरोपीय संघ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 से है और पहले हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कुछ बड़े देशों के साथ होती थी, जैसे फ्रांस के साथ थी, जर्मनी के साथ थी और यूके जब उनका हिस्सा होता तो उनके साथ थी। वो साझेदारी अभी भी है। पिछले कुछ सालों में हमने कई और देशों के साथ पार्टनरशिप किया स्ट्रेटेजिक, जैसे इटली के साथ किया, ग्रीस के साथ किया, पोलैंड के साथ किया और अभी जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो दो और पार्टनरशिप्स को, नीदरलैंड्स को, स्वीडन को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। उसी कड़ी में अभी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइप्रस के साथ है उसको भी एलिवेट किया गया है और उसके साथ डिफेंस का एक नया रोड मैप भी इनके साथ तैयार किया गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ के अंदर यह है कि कॉम्पिटेंसीज कुछ चीजों की जो है यूरोपीय संघ के पास है, बाकी चीजों की, क्योंकि सब अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज हैं, तो उन सब चीजों की बात आप उस देश के साथ कर सकते हैं। तो हम यूरोपीय संघ के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारी साझेदारी है, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट देश हमको लगता है उनके साथ हम अपने रिलेशंस को एलिवेट कर रहे हैं और जैसे इंडिया नॉर्डिक समिट में था तो हमने एक समूह के साथ भी वहां पे उनके साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं। तो क्योंकि साइप्रस जो है हालांकि एक छोटा सा टापू है, छोटा सा देश है, लेकिन भारत की दृष्टि में मुझे लगता है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री पिछले साल भी गए थे वहां पे और अभी वहां के राष्ट्रपति यहां पे हैं और इस रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया है, इसका मतलब यह है कि हम सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जगह पे स्थित हैं और मेडिटेरेनियन के अंदर इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है और जिस तरीके से निवेश की बात है क्योंकि वहां के जो नियम कायदे कानून है मॉरिशस की तरह काफी खुले हैं, उसकी वजह से वहां से निवेश चाहे वो साइप्रस का हो चाहे दूसरे देशों के व्यापारी हो वो भी साइप्रस के थ्रू काफी निवेश दूसरे देशों में करते हैं, तो उसी का कारण है कि काफी निवेश वहां से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हमारे टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से साइप्रस है और अगर उनके साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं और एक पूरा अच्छा प्लान बनता है तो निश्चित तौर से वहां से निवेश और भारत की तरफ अधिक आ सकता है और साइप्रस जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक गलियारा की हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए भी जो साइप्रस है काफी भूमिका अदा कर सकता है भारत और यूरोप को जोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे है जहां पे मेडिटेरेनियन के अंदर है और अफ्रीका के देश भी वहां से बहुत दूर नहीं है और पश्चिम एशिया के देश भी वहां से पास हैं, तो इसलिए मुझे लगता है सोची समझी नीति के मुताबिक भारत ने इनके साथ अपनी रिलेशंस को अपग्रेड किया है।
1: इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के बारे में क्या कहा।
0: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: तो प्रोफेसर सचदेव, जैसे भी हमने सुना प्रधानमंत्री को कि रक्षा और सुरक्षा दोनों की जो उन्होंने बात कही, डिफेंस कोऑपरेशन की दोनों देशों के बीच में बात कही, तो आज दोनों देशों के बीच में एक काउंटर टेररिज्म पर भी एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के लिए भी एक एमओयू साइन हुआ है, साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी एक रोडमैप तैयार किया है 2026 से 2031 तक के बीच में। तो भारत साइप्रस संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में रक्षा और समुद्री सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
2: एक तो ये है क्योंकि पूरी दुनिया का जैसा आप जानते हैं वातावरण काफी तनावपूर्ण है और क्योंकि साइप्रस का अपना एक तनावपूर्ण हिस्ट्री रही है और तीसरी बात यह है क्योंकि जैसे यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है और उसके चलते यूरोप के जितने भी देश हैं और साइप्रस भी उसका हिस्सा है तो उसमें पूरे का पूरा आप देखते हैं कि जो सुरक्षा का जो प्रबंधन है पूरे यूरोप के अंदर उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ और काफी जो नेटो के देश हैं यूरोप के अंदर उनकी भी, उसमें भी एक तरीके का टकराव एक तरीके की थोड़ी

0: दिक्कतें उसमें आ रही हैं। तो उसमें पूरे यूरोप के अंदर एक तो यह है कि अपनी सुरक्षा को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी ऑटोनॉमी को, उसको बढ़ाने के लिए सुरक्षा को और खासतौर से डिफेंस जो इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी कुछ महीने पहले वहां पे एक वो जो व्हाइट पेपर पूरा यूरोपीय संघ ने जो निकाला था अपने डिफेंस के लिए, उसमें ये कहा गया था कि आने वाले सालों में 2030 तक यूरोप के पूरे देश मिलकर 800-900 बिलियन यूरो और ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे प्रधानमंत्री पहले भी गए थे वहां पे चार देशों में जैसे मैंने कहा, और जर्मनी और फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे सुरक्षा संबंध बड़े हैं पहले डिफेंस के, तो उसमें जो पूरी नई पूरा डिफेंस इंडस्ट्री वहां पे जो पूरा बढ़ रहा है, काफी उसके अंदर निवेश हो रहा है। और भारत की हमारी जो है अपनी एम्बिशन है कि एक मेक इन इंडिया के अंदर हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री को हम मजबूत कर रहे हैं, और काफी अभी पिछले कुछ सालों में निर्यात भी हमारा डिफेंस से हुआ है। तो ये पूरा एक प्लान है जिसके अंदर हम उसको साइप्रस को अलग करके भी देख सकते हैं और पूरे यूरोप के साथ जो है हमारा जो संबंध, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, उसी पूरे संबंध के अंदर व्यापार की बात, निवेश की बात, तकनीक की बात और ग्रीन ट्रांजिशन की बात तो कर दें, लेकिन साथ में अभी सुरक्षा और डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला जो मामला है ये भी एक बहुत अहम मुद्दा उभरता हुआ आ रहा है। और ये जब हम देखते हैं कि जब साइप्रस के राष्ट्रपति भी यहां पे है, तो एक हमने पूरा रोड मैप पूरा डिफेंस कोऑपरेशन का वो साइप्रस और भारत के बीच में 5 साल के लिए वो भी एक पूरा तैयार किया है। और आतंकवाद के प्रति तो दोनों देशों की पहले से ही एक जैसी सोच रही है, और क्योंकि वो भी उससे जूझते रहे हैं पहले, तो इसलिए जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है उसका भी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भी और भारत के जो संबंध है यूरोपीय संघ के उसके अंदर भी इन दोनों के आने से काफी मजबूती मिलेगी।
1: जी
0: तो ओवरऑल संबंध है वो पूरा यूरोप के साथ हमारा संबंध है। जब वो 2004 में जब यूरोपीय संघ को साइप्रस ने ज्वाइन किया था,
1: जी
0: तो वो एज ए डिवाइडेड साइप्रस वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर वो जो है यूरो जोन का भी हिस्सा बन गए हैं। तो जो यूरोपीय संघ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी काफी अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं, क्योंकि अब भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उनकी चिंताएं भारत समझता है कि हमारी चिंताएं हैं, और क्योंकि तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका फायदा भारत भी लेना
1: जी
0: चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और कनेक्टिविटी और ये सब बातें को
1: जी
0: आगे बढ़ाने के लिए इसको पूरी रणनीतिक साझेदारी हमारी उनके साथ बन रही है।
1: एक आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर सचदेवा, भारतीय बिजनेसेस हैं जो यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो ऑफकोर्स हम बात कर रहे हैं कि साइप्रस एक लॉन्च पैड के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा, बट इसके अलावा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक वाइडर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों के लिए एक आधार के रूप में और लॉजिस्टिक हब के रूप में साइप्रस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है भारतीय बिजनेसेस के लिए?
0: नहीं, भारत के बिजनेस देखिए ऑलरेडी वहां पे काफी हमारा जैसे निवेश वहां से आ रहा है, काफी भारतीय वहां पे बसे भी हुए हैं, और अभी जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि हम जो मोबिलिटी और माइग्रेशन के
1: जी
0: एग्रीमेंट है और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बारे में भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है, तो उसके बारे में भी कुछ समझौते जल्दी होने की उम्मीद है। उसका मतलब ये है कि दोनों सरकारें ये कोशिश करेंगी कि जो भारतीय वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं, उनके लिए भी काफी सुविधा हो जाए कि वो आराम से वहां पे जा पाएं और अपने व्यापार को वहां पे स्थापित कर पाएं और दोनों देशों के बीच में संबंध वो बढ़ाएं। और इसीलिए क्योंकि पूरे जो जैसे आपने कहा कि जो उनकी भौगोलिक जो स्थिति है, हालांकि हर देश जैसे यूरोप में भी होता है अपने आप को कहता है कि हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, तो आप उसको एज ए गेटवे आप यूरोप के मान सकते हैं। चाहे आप इटली में गए थे तो इटली के प्रधानमंत्री वो कहती थी कि आप यहां से इंडियन ओशियन एंड मेडिटेरेनियन जो सी है दोनों का मिलाप
1: जी
0: होता है, तो इंडो मेडिटेरेनियन जो बनता है। इसी तरीके से दूसरे देश भी कहते हैं, फ्रांस की
1: जी
0: भी, सब देशों की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन इसकी एक क्योंकि खास भूमिका है यूरोप के अंदर, और जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त इस पूरे इलाके में है, उसके अंदर मुझे लगता है भारत के लिए उसकी जो स्थिति है उसके साथ अच्छे संबंध बनाना, अच्छे संबंध हमारे हैं उनके साथ, लेकिन उन संबंधों को और आगे इंस्टीट्यूशनलाइज करना और उनको प्रगाढ़ बना के उसको आगे बढ़े, तो उसमें दोनों देशों के लोगों का फायदा होगा, हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से
1: जी
0: भी, और वैसे भी यूरोपीय संघ के अंदर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए अच्छा मुझे लगता है मौका मिलेगा।
1: प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं और अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया जी।
1: श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है शाम के 7:26 और 3 सेकेंड्स। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम सांझ ढले। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ।

0: फिल्म आनंद से मुकेश की आवाज में ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, संगीत सलील चौधरी का और बोल योगेश के।
1: नमस्कार, मैं प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी एक बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: जरूरी सूचना, कृपया ध्यान दें, सर गंगाराम हॉस्पिटल में मिस्टर भगत सिंह को अर्जेंट ब्लड की आवश्यकता है। जिनका भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है वो इस सहयोग का दान अवश्य दें, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। एड्रेस नोट करें, सर गंगाराम हॉस्पिटल, ओल्ड बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, रूम नंबर 1379। जी हां, रूम नंबर 1379, बेड नंबर 6। फोन नंबर 8447958030। एक बार फिर नोट कर लें, 8447958030। जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, कार्यक्रम सांझ ढले सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म अलबेला से लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज में, संगीत C. रामचंद्र का और गीत यानी बोल राजेंद्र कृष्ण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम सांझ ढले सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला बाजार से एक बेहद ही खूबसूरत नगमा, आवाज मोहम्मद रफी की, संगीत SD बर्मन का और बोल शैलेंद्र के।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सांझ ढले यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक आज 8:10 पर कार्यक्रम मधुरिमा के साथ।

0: पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूचियों का घर घर जाकर सत्यापन 30 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क किफायती बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत बूथ स्तर के अधिकारी मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए 30 जून से घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। ये सर्वेक्षण 29 जुलाई तक चलेगा।
3: एसआईआर के संबंध में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ बैठक की। सभी दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। सभी दलों ने प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। मतदाताओं की मदद के लिए जागरूकता वीडियो भी जारी किया गया है। मतदाता सूची 5 अगस्त को जारी होगी, वहीं दावे और आपत्तियां 4 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: दिल्ली सरकार ने पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क को अधिक किफायती बनाकर नागरिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछली व्यवस्था के अंतर्गत जल और सीवेज सेवाएं अव्यवस्थित थी, बिलिंग प्रणाली में खामियां थीं और लोगों को अक्सर अनुमानित और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए बिलों का सामना करना पड़ता था। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई नीति के अंतर्गत बुनियादी ढांचा शुल्क प्रॉपर्टी के कुल क्षेत्रफल के बजाय पानी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये शुल्क केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होंगे। वहीं पुनर्निर्माण होने वाले मकानों में यदि पानी की आवश्यकता नहीं बढ़ती है तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस नीति के अंतर्गत बिना ढके या खुले क्षेत्रों की पानी की आवश्यकता की गणना नहीं की जाएगी। साथ ही विभिन्न श्रेणियों की कॉलोनियों के लिए विशेष छूट भी दी जाएगी।
5: दिल्ली में जो ई एंड एफ श्रेणी की कॉलोनियां है उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है आईएफसी चार्जेस में, और जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट आईएनएफसी चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पर लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पहले जहां कुछ संपत्तियों पर 13 लाख रुपए से अधिक का शुल्क लगता था, अब वह घटकर 5,40,000 रुपए रह जाएगा। इसके अलावा श्रेणी के अनुसार शुल्क में और कमी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, प्रक्रिया सरल होगी और लोग बिना किसी परेशानी के अपने शुल्क जमा कर सकेंगे। ईशानी के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
2: दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई निविदा प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और सरल बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दिल्ली सरकार के ई खरीद पोर्टल पर एकीकृत ई पेमेंट समाधान को लागू करना है। दिल्ली के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस समझौते से मैनुअल प्रक्रियाएं खत्म होंगी और लेन देन की तत्काल पुष्टि संभव होगी। उन्होंने कहा कि यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और कारोबार को आसान बनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने

0: पर्यावरण अनुकूल विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में एक ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लगभग 3 एकड़ में बनने वाला ये पार्क केवल हरित क्षेत्र नहीं होगा बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सामाजिक सहभागिता का आधुनिक केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि पार्क के निर्माण के लिए वन विभाग ने 1 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं तथा अतिरिक्त 1 करोड़ रूपये उनकी विधायक निधि से प्रदान किए जाएंगे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस ऑक्सीजन पार्क में वॉकिंग ट्रैक, सुंदर तालाब, बैठने के लिए छायादार जगह और विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही पर्याप्त हरित क्षेत्र और खुले स्थान विकसित किए जाएंगे जिससे नागरिकों को स्वच्छ और शांत वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह पार्क सैर, व्यायाम, योग तथा सामुदायिक गतिविधियों का आदर्श केंद्र बनेगा। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि इस परियोजना से मुखमेलपुर के अलावा जिंदपुर, बख्तावरपुर, हिरंकी और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में राजधानी में ऐसे और भी ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन और अन्य विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गांवों और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर काम जारी है। उन्होंने बुराड़ी अस्पताल में नई चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और बंद पड़े वाहन फिटनेस केंद्र को आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर में विकसित किए जाने की जानकारी भी दी। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी के साथ अक्षित वैद्यान।
0: मुख्यमंत्री ने आज साझा परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उबर की राइड शेयरिंग सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे से शुरू हुई इस सेवा से बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ मिलेगा।
2: दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी राइड को शेयर करें। ये व्यवस्था काफी समय से कोविड के दौरान बंद कर दी गई। अभी हमारी कई मीटिंगों के बाद उबर और बाकी सभी राइडर्स ने ये श्योर किया है कि वो इसको लागू करेंगे। ऐसे में जहां पैसे की बचत होगी वहीं पोल्यूशन नहीं होगा और तीसरा साथ में अब फ्यूल की बचत भी होगी, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है हमारी फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए।
0: केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और बढ़ी हुई बैठने की क्षमता मिलेगी।
3: जोधपुर से दिल्ली की जो वंदे भारत ट्रेन है बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन है। जब से चालू हुई तब से 150% से अधिक इसका रहता था ऑक्यूपेंसी, तो अब इसको 8 कोच से बढ़ाकर यह सीधा 20 कोच में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जैसलमेर से अहमदाबाद की सर्विस भी शुरू होगी और जोधपुर में नई गाड़ियां शुरू हो सके इसके लिए एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था भी जोधपुर से होगी और हरिद्वार की एक जो बहुत बड़ी डिमांड है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में वो डिमांड भी पूरी होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली में खाद्य और आपूर्ति विभाग के एक सहायक आयुक्त को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार आरोपी ने 475 राशन कार्डों के आवंटन और वितरण के लिए प्रति कार्ड 100 रूपये की मांग की थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया है। ये गिरोह उत्तर प्रदेश और मणिपुर सहित राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में 3 दिन की

0: अंतरिम जमानत दी है। उमर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जेल में बंद है। न्यायालय ने 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी है। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों के कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए हैं। बैठक के दौरान दिल्ली विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को पशु कल्याण से संबंधित सभी प्रावधानों और कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: श्री मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री पूरी तरह से अवैध है। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के अवैध परिवहन, अवैध बूचड़खाने के संचालन या कानून के उल्लंघन से संबंधित किसी भी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पशु कल्याण कानूनों और नागरिकों में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। दीपेंद्र और सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
0: इस बीच सरकार ने कहा है कि बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने सरायकाले खान नमो भारत स्टेशन पर व्यावसायिक स्थानों की लाइसेंसिंग के लिए निविदा आमंत्रित की है। यह कदम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टेशन परिसरों को विकसित करने की दिशा में उठाया गया है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने दिन में आवश्यकता न होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: इस बीच दिल्ली में आज भी भीषण गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल भी दिल्ली में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाता सूचियों का घर घर जाकर सत्यापन 30 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए पानी और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क किफायती बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया और दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले पशु कल्याण कानूनों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठियों को रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से तत्काल बाहर निकालने का भी प्रण लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार से मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई है। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है रात के 8:11:05। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम मधुरिमा में। आज के मधुरिमा कार्यक्रम में हम बात करेंगे राग यमन के बारे में और राग भोपाली के बारे में, और साथ ही आपको सुनवाएंगे इन रागों पर आधारित कुछ चुनिंदा गीत। राग यमन कल्याण ठाट का राग है, जिसमें मुख्य रूप से तीव्र मध्यम यानी तीव्र मां का प्रयोग किया जाता है। इसमें वादी स्वर के रूप में गंधार यानी गा का प्रयोग किया जाता है और संवादी स्वर के रूप में निषाद यानी नी का प्रयोग किया जाता है। बात करें यमन राग की जाति के बारे में तो ये संपूर्ण जाति का राग है, यानी इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग के गायन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, यानी सूर्य ढलने के तकरीबन 3 घंटे बाद तक।

0: राग यमुन पर आधारित ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर से। आवाजें केजे येसुदास की और हेमलता की, संगीत रविंद्र जैन का और बोल रविंद्र जैन के। दोस्तों अगला गीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ एफएम गोल्ड 100.1 पर,
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
0: जरूरी सूचना, कृपया ध्यान दें, सर गंगाराम हॉस्पिटल में मिस्टर भगत सिंह को अर्जेंट ब्लड डोनेशन की आवश्यकता है। जिनका भी ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है वो इस सहयोग का दान अवश्य दें, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। एड्रेस सर गंगाराम हॉस्पिटल, ओल्ड बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 1379, बेड नंबर 6। जी हाँ, रूम नंबर 1379, बेड नंबर 6। फोन नंबर 8447958030। एक बार फिर नोट कर लें, 8447958030। कृपया ध्यान दें, ब्लड डोनेशन के लिए जो समय है वो सुबह 9 से लेकर शाम 4 तक है, तो कृपया इस समय को ध्यान में रखकर ही जाएं। जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर। कार्यक्रम मधुरिमा सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राग यमन और राग भूपाली की। बात करें राग यमन की तो यमन राग हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में सबसे मौलिक और बुनियादी रागों में से एक माना जाता है, इसलिए ये अक्सर छात्रों को सिखाए जाने वाले सबसे पहले रागों में से एक है। आइए आपको सुनवाते हैं एक और राग यमन पर आधारित बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं राग भोपाली पर आधारित कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। राग भोपाली भी कल्याण ठाट का राग है और इस राग की जाति औडव है। औडव यानी जिसके आरोह और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। राग भोपाली का वादी स्वर गंधार यानी गा है और संवादी स्वर धैवत यानी धा है। राग भोपाली के भी गायन का समय रात्रि के प्रथम पहर को ही माना गया है।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मधुरिमा यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज की। ईस्ट बंगाल ने 22 वर्षों बाद इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हुई। और हॉकी इंडिया ने महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। स्वीटी कुजूर को सौंपी टीम की कमान। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने इस समय ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 2 विकेट खोकर 126 रन बना लिए थे। इस मैच से पहले कल अहमदाबाद में मेजबान गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज कर चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। आइए सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
1: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करो या मरो के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात टाइटंस ने बेहद शानदार शुरुआत की। पहले विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने 74 गेंद में 125 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की। गिल ने 37 गेंद में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 64 रन की पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने जॉश बटलर के साथ पारी को संभाला। दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 36 गेंद में 82 रन जुटाकर टीम को 207 के स्कोर तक पहुंचाया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन आउट हुए, जिन्होंने 53 गेंद में 4 छक्कों और 7 चौकों के साथ 84 रन की सधी हुई पारी खेली। जॉश बटलर ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाबाद 57 रन बनाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए। विपक्षी खेमे से मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कंबोज ने एक एक विकेट अपने नाम किए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन पहले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 13 गेंद में 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन कप्तान के आउट होने के बाद टीम बिखर गई। ऋतुराज ने 16 जबकि शॉर्ट ने 24 रन की पारी खेली। कार्तिक शर्मा भी महज 19 रन ही बना सके। टीम ने 63 के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए थे। शिवम दुबे ने डेवाल्ड ब्रेविश के साथ 21 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दुबे 17 गेंद में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका और पूरी टीम 13 ओवर 4 गेंद में 140 रन पर सिमट गई। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को धारदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही गुजरात ने शीर्ष दो में फिनिश करने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। वहीं इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आईपीएल में हर जीत और हर हार इस प्रतियोगिता को रोमांच के शिखर पर ले जाती हुई। और अब अहमदाबाद के बाद रुख करते हैं झारखंड की रांची का, जहां पर बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस समय अपने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के साथ सज चुका है 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के लिए, जिसकी आज शुरुआत हुई। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से आज प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन देखने को मिला।
2: रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आज से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। 4 दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 62 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 27 ओलंपियन और कई एशियन एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता हिस्सा ले रहे हैं, जिससे रांची में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: आज के दिन खेली गई प्रतियोगिताओं की स्पर्धाओं के रिजल्ट महवीश ने बताया। और अब महवीश

0: हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं महवीश। हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने रिजल्ट्स का तो जिक्र किया ही किया, बड़ी प्रतियोगिता है, कॉमनवेल्थ के टिकट यहां से मिलेंगे खिलाड़ियों को, कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी और सितारे हैं जो इस बार प्रतियोगिता में मेडल्स के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे?
1: जी हाँ, यहाँ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और बहुत बढ़िया खिलाड़ी शीर्ष एथलेटिक ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इनमें है भारतीय स्प्रिंट स्टार अनिमेश कुजूर हैं, अनु रानी हैं, तेजस शिरसे हैं, श्रीशंकर एम हैं, और सचिन यादव हैं, शैले सिंह, प्रवीण चित्रवाल जैसे कई बड़े नाम यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
0: जी महवीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफी बड़े खिलाड़ियों के बारे में बताया जिन पे नजरें रहने वाली हैं आने वाले इन चार दिनों में जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी। और अब एथलेटिक्स के बाद रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां पर कल एक बार रोमांच और इतिहास का संगम देखने को मिला। ईस्ट बंगाल ने कल 22 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए इंडियन सुपर लीग ISL 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया।
2: इंडियन फुटबॉल योर चैंपियंस दिस सीजन, East Bengal, unboxed, unlocked, unchained, like never before, Indian Super League winners for the first time.
0: एक रोमांचक फाइनल में ईस्ट बंगाल ने कोलकाता में इंटर काशी को 2-1 से हराकर 2004 के बाद इस वर्ष ये खिताब अपने नाम किया है। सुनते हैं जोश, जज्बे, रोमांच और भावुकता से भरे इस मैच की हर डिटेल।
3: कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में कल रात मैच की आखिरी सीटी बजने के साथ ही पूरा स्टेडियम रोमांच और भावुकता से भरे माहौल में बदल गया। खिलाड़ी जमीन पर बैठ गए, फैंस हैरानी में एक दूसरे से गले मिलने लगे और भरे हुए एरिना में ईस्ट बंगाल के नारे गूंजने लगे। मोहम्मद राशिद 72वें मिनट में अहम गोल करके हीरो बने। इससे पहले यूसुफ अज़ारी ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल कर ईस्ट बंगाल की मैच में वापसी कराई और स्कोर 1-1 से बराबर किया। मैच का पहला गोल अल्फ्रेड प्लानास ने 14वें मिनट में दाग कर इंटरकाशी को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इस जीत से ईस्ट बंगाल 13 मैचों में 26 पॉइंट्स के साथ ISL टेबल में टॉप पर रहा। मोहन बागान सुपर जायंट ने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ अपना आखिरी मैच भी 2-1 के स्कोर से जीता और पॉइंट्स में बराबरी पर रहा, लेकिन ईस्ट बंगाल के 5 गोल के बेहतर अंतर ने आखिरकार क्लब का नेशनल लीग टाइटल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: वाकई देखने लायक पल था जब खिलाड़ी तो खिलाड़ी, फैंस भी जिस तरह भावुक नजर आए एक दूसरे से गले मिलते हुए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए। हॉकी इंडिया ने महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 29 मई से 6 जून तक जापान में होने वाली इस प्रतियोगिता में टीम की कप्तान स्वीटी कुजूर होंगी। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम का हिस्सा बनाया गया।
4: भारतीय टीम भोपाल में नेशनल कैंप में कई हफ्तों की तैयारी के बाद टूर्नामेंट में उतर रही है, जहां रानी रामपाल की अगुवाई में टीम ने तालमेल, फिटनेस और तकनीक के सभी पहलुओं पर भरपूर काम किया है। अगर टीम की बात की जाए तो महक परिहार और खिली कुमारी को बतौर गोलकीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया है, जबकि सुगन सांगा, नीलम टोपनो, रुबीना बक्सला, किरण एक्का और सुलोचनी डिफेंस का मोर्चा संभालते नजर आएंगी। मिडफील्डर के तौर पर श्रुति कुमारी, दिया, स्नेहा दावड़े, रश्मिन कौर, निम्मी गीताश्री और पुष्पा मांझी टीम का हिस्सा हैं। वहीं नौशीन नाज कप्तान, स्वीटी कुजूर, प्रियंका मिंज, संदीपा कुमारी और नैन्सी सरोहा अटैक ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगी। भारत को प्रतियोगिता में पूल ए में कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 मई को मलेशिया के खिलाफ करेगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: देखना होगा कि ये युवा टीम एक लंबे अभ्यास और कई मैचों में पसीना बहाने के बाद किस तरह इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। 23 ग्रैंड स्लैम और 100 से अधिक खिताब जीतने वाले टेनिस की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का आज जन्मदिन है। 22 मई 1987 को जन्मे सर्बियन खिलाड़ी ने टेनिस की दुनिया के हरेक बड़े खिताब को जीता है। उनके जन्मदिन पर उनके संदेश को जरूर सुनना चाहिए जो हर युवा खिलाड़ी को मैदान पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पाठ पढ़ाता है।
5: द मैसेज रियली फॉर एनी यंग टेनिस प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड हु इज इन ड्रीमिंग टू बी हियर वेयर स्टेफनस एंड आई एम, ड्रीम बिग, डेयर टू ड्रीम बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट लेट एनीबॉडी टेक अवे द ड्रीम, डजंट मैटर where you're coming from. I actually think that the more this advantage.

0: advantaged childhood you have, the more difficulties and more challenges you have, the stronger you become. And don't really let anybody take away that dream from you. Nurture it, water it like you water the flowers. Even if you find only one person in this world that will accept, embrace, and support your dreams, find that person and dream big, because you can make it.
1: एक दिग्गज खिलाड़ी जिसने सपने देखे और टेनिस के कोर्ट पर हर सपने को पूरा होते हुए भी देखा, अपने जज्बे से, अपने हौसले से, अपनी मेहनत से। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं अपने मजबूत हौसलों से चुनौती की हर ऊंचाई लांघने वाले प्रवीण कुमार की। विश्व के नंबर एक पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने 2024 पैरालंपिक्स खेलों में तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। प्रवीण को 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सुनते हैं उनके जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
2: हिम्मत की ऊंची झलक, प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026। 15 मीटर दूर दो पोल्स पर टिका 4 मीटर का क्रॉसबार, बरसों की मेहनत, सिर्फ एक मिनट और एक चांस, और पूरी दुनिया की आंखें सिर्फ आप पर। आसान नहीं है ना? प्रवीण कुमार का जन्म सन 2003 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। बचपन में वॉलीबॉल खेलते खेलते प्रवीण ने हाई जंप की ऊंची छलांग लगाकर हर मुश्किल को चुनौती देने की ठान ली। स्कूल में जब टीचर ने प्रवीण को चोट लगने के डर से हाई जंप में भाग लेने से मना किया, तो वो 8 दिन तक टीचर से जिद करते रहे। टीचर को मानना पड़ा और 10 बजे के इवेंट में 8 बजे इनका नाम लिखा गया।
3: सबको लगा पैर में प्रॉब्लम है, मैं 2-3 फीट से ज्यादा क्या ही कूदूंगा।
2: प्रवीण ने उस कंपटीशन में गोल्ड जीता, वो भी एबल बॉडीड कैटेगरी में।
4: ये छोटा था तो उसको जैसे बाजार लेके गई तो उसको बाबा मिले, तो बाबा ने पैर देखा, बोले कि बेटा ये तो तांबे के पैरों से है, बच्चा ये तो देश का नाम रोशन करेगा।
2: प्रवीण के हुनर को बेहतर दिशा और रफ्तार मिली जब इन्हें इनके कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह मिले।
5: हाई जंप करने के लिए इंसान की हाइट और लेग स्ट्रेंथ दोनों ही चाहिए, लेकिन प्रवीण के पास दोनों ही नहीं था। फर्स्ट डे जब मेरे पास प्रवीण आया तो वो उसने 1.80 मीटर बिना टेक्निक के क्लियर किया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि प्रवीण रिकॉर्ड बनाएगा भी और रिकॉर्ड तोड़ेगा भी।
2: अब लक्ष्य था इंडिया के लिए गोल्ड लाना, लेकिन 2019 प्रवीण के लिए सबसे मुश्किल रहा। एक तरफ उनकी इंजरीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके गेम की कैटेगरी भी चेंज हो गई थी। प्रवीण एक साल के लिए दिन रात बस मेहनत करते रहे, हार नहीं मानी।
3: मुझे बस एक चीज याद थी कि जिसका गोल्ड मेडल होता है उसकी कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाता है।
2: प्रवीण ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस पैरा ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक भी जीता।
3: अब मैं आने वाले खिलाड़ियों को बताता हूँ कि हिम्मत और मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मैं मेडल के लिए नहीं खेलता, खेलता हूँ क्योंकि मुझे इंडिया के लिए खेलना पसंद है।
2: प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026, कोटि-कोटि नमस्कार।
1: स्पोर्ट्स कैन भी नमस्कार करता है उन खिलाड़ियों को जो मेडल के लिए नहीं खेलते, जो खेलते हैं इस देश के लिए, इस देश के मान के लिए, उससे जुड़े गौरव के लिए। ऐसे ही एक खिलाड़ी और हजारों युवाओं की प्रेरणा प्रवीण कुमार। और अब एक बार चलते चलते रुक करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का, जहां आईपीएल का एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। और सनराइजर्स हैदराबाद जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, 13 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट खोकर के 162 रन बना चुकी है। और हेनरिक क्लासन इस समय 16 गेंदों पर 34 और ईशान किशन 26 गेंदों पर 38 रन बना करके अपनी पारी को गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ, खेल के मैदान के तमाम अपडेट के साथ। आप अपनी राय और अपने सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद

0: ने अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमी की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिनभर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के

0: बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: their dependence on fossil fuels. Prabhudayal ji, once again, thank you for being with us on Akashvani.
1: Thank you so much.
0: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on EIR, and our YouTube channel, News on EIR Official.
2: Current Affairs.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
4: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
3: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
5: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
5: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
3: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्नि वन कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनस और डिप्टीथ्रिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों

0: in Hyderabad. Batting first after winning the toss, Sunrisers Hyderabad posted 255 runs for the loss of 4 wickets in stipulated 20 overs. In reply, Royal Challengers Bengaluru was 71 for 1 in 5 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक बढ़ाया। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीकों के लिए 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी। और अमेरिका तथा ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के नए राजनयिक प्रयास के अंतर्गत कतर का वार्ताकार दल तेहरान पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में कहा कि दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद से निपटने पर मुख्य रूप से बातचीत हुई। उन्होंने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले के निकट आतंकी कार विस्फोट घटना की कड़ी निंदा की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: श्री जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक ले जाने का निर्णय लिया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत साइप्रस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
4: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री सीबी जॉर्ज ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विभिन्न समझौते हुए, इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन तथा सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और साइप्रस की राजनयिक अकादमी के बीच राजनयिक प्रशिक्षण से संबंधित समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं। श्री जॉर्ज ने कहा कि साइबर सुरक्षा संवाद, वाणिज्य दूत संवाद, 2026 से 2031 तक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की कार्य योजना और हिंद प्रशांत सामुद्रिक पहल में साइप्रस के शामिल होने के बारे में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। अगले साल 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे होंगे। दोनों देशों के संबंधों में आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण आधार है। साइप्रस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा स्रोत है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव नूर लान येरमेक बायेव से मुलाकात की। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की विभिन्न पहल और गतिविधियों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स युवा राजनयिक मंच के प्रतिभागियों और राजनयिक अकादमियों के प्रमुखों के साथ बातचीत भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने ब्रिक्स संगठन के लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता तथा वैश्विक विकास में योगदान देने के विषय पर विचार साझा किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BCG, टेटनस और डिप्थीरिया के टीकों के लिए 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF के प्रतिष्ठापन समारोह और रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। एक रिपोर्ट।
5: श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। ये पहल शुरू होते ही सीमा सुरक्षा बल का काम बहुत ही आसान और सशक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि भारत को साइबर खतरों, हाइब्रिड युद्ध और ड्रोन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियां अपनानी होगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नीति का उद्देश्य केवल समस्याओं को रोकना नहीं बल्कि उन्हें समूल नष्ट करना होना चाहिए। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल से घुसपैठ रोकने में ऐसा ही संकल्पित रवैया अपनाने का आग्रह किया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
1: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के नए राजनयिक प्रयासों के अंतर्गत कतर का एक वार्ताकार दल तेहरान पहुंच गया है। यह कदम कतर के लिए महत्वपूर्ण है जिसने संघर्ष में मध्यस्थता से दूरी बनाए रखी थी। स्वीडन में नेटो विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव पारित कराने का प्रयास कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए और उन्होंने सहयोगी देशों से जलमार्ग को खुला रखने में मदद करने का आह्वान किया। जर्मनी ने कहा कि वह सुरक्षा मिशन में भाग लेने पर विचार कर रहा है और यूरोपीय संघ ने नौवहन के लिए खतरों को लक्षित करते हुए प्रतिबंध बढ़ाने की बात की। संयुक्त अरब अमीरात से राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गाश ने समझौते की संभावना को 50% से बेहतर नहीं बताया और कहा कि ईरान से अत्यधिक बातचीत हो चुकी है। उन्होंने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे लड़ाई रोकने के बजाय शत्रुता के मूल कारणों का निवारण करने वाले स्थायी राजनीतिक समाधान की तलाश करें। कई मोर्चों से राजनयिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। सऊदी मीडिया ने खबर दी है कि अंतिम मसौदा समझौते की घोषणा कुछ ही घंटों में की जा सकती है। हालांकि इजरायली अखबार होरेट्स की एक अलग रिपोर्ट है कि किसी भी संभावित समझौते में परमाणु मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय सेना ने रसद और आपूर्ति प्रबंधन सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत एप्लीकेशन Q-Force का शुभारंभ किया है। सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह एप्लीकेशन कई लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म को एकीकृत कर आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन प्रबंधन को मजबूत करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक बढ़ाया।

नमस्कार आदाब, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपका स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, रात की इस नरम चादर में जब दिन की भागदौड़ थोड़ी सी थम जाती है और ख्याल धीरे धीरे यादों का दामन थाम लेते हैं, ऐसे ही एक खूबसूरत सफर में हम आपके साथ रहते हैं। मैं हूं आज आपका हम सफर, आपका दोस्त शमीम खान, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार, जहां बातें होंगी पुराने दिनों की, महकती यादों की और कुछ अनकहे एहसासों की, थोड़ी सी मोहब्बत और बहुत सारी सकारात्मक सोच की। वो तो कहते हैं ना कि कुछ यादें उम्र नहीं पूछती, बस एक धुन सुनते ही लौट आती हैं। तो चलिए आज की इस शाम को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों कुछ गीत गीत नहीं होते, जैसे पुरानी डायरी में रखा हुआ गुलाब जिसकी खुशबू वक्त के साथ भी फीकी नहीं पड़ती। दोस्तों जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी तेज रफ्तार तो कभी ठहरी हुई, मगर हर मोड़ पर कोई ना कोई खूबसूरत कहानी छोड़ जाती है। अगर आज का आपका दिन थोड़ा थका देने वाला रहा हो तो बस इतना याद रखिए कि हर शाम अपने साथ एक उम्मीद लेकर आती है कि कल की सुबह शायद कुछ और बेहतर होगी। और अब पेश खिदमत है एक ऐसा गीत जो शायद कभी आपके दिल की खिड़की पर जरूर दस्तक देकर गुजरा होगा।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि पुरानी यादों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो हमें पीछे नहीं ले जाती, बल्कि ये एहसास दिलाती हैं कि हमने कितना सुंदर सफर तय किया है। किसी बारिश की शाम, रेडियो पर बजता हुआ कोई गीत, और किसी का मुस्कुरा देना या किसी का चिट्ठी का इंतजार करना। और मोहब्बत हमेशा बड़े बड़े इजहारों में नहीं मिलती, कभी कभी वो चाय के कप में पूछे गए छोटे से सवाल में होती है, ठीक इस गीत की तरह जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है हरसिंगार और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें लगता है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन शायद जो मिला है उसकी तरफ देखने का हमें वक्त ही नहीं मिला। एक छोटी सी बात है कि खुश रहने के लिए जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस दिल का शुक्रगुजार होना काफी होता है। और अब जो गीत आ रहा है आपके लिए, उसे सुनते हुए शायद आपको किसी की याद जरूर आए, और अगर आए तो बस धीरे से मुस्कुरा दीजिएगा।

मोहब्बत कितना खूबसूरत लफ्ज है ना, लेकिन मोहब्बत सिर्फ किसी से मिलने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी किसी की खुशी की दुआ करने का नाम भी होता है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, जहां सच्चा अपनापन वही मिलता है जहां आपको बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश की जाए। रात खामोश है, चांद भी कुछ सोचता होगा, किसी की याद में कोई जरूर मुस्कुराता होगा। लीजिए अब वक्त है कार्यक्रम के अगले और आखिरी गीत का, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम हर सिंगार से मुलाकात होती है आपसे अगले कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में। ये लीजिए वो गीत आपकी तरफ यूं आ गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार

0: आरती के ऐप, न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड आरोप।

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरूग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said, both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितना प्यारा है ये रात का समा, जब सोचने के लिए कुछ नहीं, बस खामोशी ही खामोशी। कंपेयर किया जाए तो दोपहर से थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है और दिल कुछ देर के लिए हर उलझन से आजाद महसूस कर रहा है।

ये वादा रहा फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन ने संगीत दिया। इन लफ्जों में एक अजीब से अपनेपन की भरी तसल्ली है, जैसे बरसों बाद भी कोई रिश्ता दिल में वैसा ही महफूज हो। रात की खामोशी में जब ये गीत बजता है तो बीते हुए लम्हे, पुरानी मुस्कुराहटें और अधूरी बातें सब धीरे धीरे याद आने लगती हैं।

बड़े दिलवाला फिल्म से आपने गाना सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहीं न जा, आज कहीं न जा, दिल के ये लम्हे फिर लौट कर कहाँ आएंगे। बस यूं ही पास बैठे रहो कि खामोशी भी आज कोई मीठा सा गीत लग रही है।

याराना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 यानी 90 जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

दर्द फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। अहले दिल अक्सर अपने जज्बातों का शोर दुनिया को नहीं सुनाते, वो मुस्कुराहटों के पीछे तकलीफ छुपा लेते हैं और अपने हिस्से का दर्द खामोशी से सह लेते हैं। शायद इसी खामोशी में उनकी मोहब्बत की गहराई और दिल की मजबूती दिखाई देती है।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से आपने गाना सुना, किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

टावर हाउस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया रवि ने। दिले नादान गम से यूं न घबराना, जिंदगी की राहों में खुशी और उदासी दोनों साथ चलती हैं। कभी कोई याद दिल को बेचैन करती है तो कभी वही याद जीने का सहारा बन जाती है। दिल अगर सच्चा हो तो दर्द भी उसे और गहरा और खूबसूरत बना देता है।

दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में। केएल परदेसी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। रात जब खामोश होती है तो दिल की दबी हुई बातें और भी साफ सुनाई देने लगती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ दिया जाए तो नींद नहीं सिर्फ बेचैनी लौटती है। कभी कभी तन्हाई ही इंसान की सबसे अच्छी हम सफर बन जाती है।

ज़रक खान फिल्म से आपने गाना सुना आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस मोहिंदर ने। शाम की तन्हाइयां में तन्हाइयां हैं, ऐसे में तू आजा सनम। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम खामोशी ओढ़ लेती है तब किसी अपने की कमी और गहरी महसूस होती है। दिल चाहता है कि कोई पास बैठे, कुछ न कहे, बस साथ होने का एहसास दे।

चार दिल और चार राहें फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। कुछ मुलाकातें इतनी कीमती होती हैं कि उनका इंतजार भी अपने आप में एक एहसास बन जाता है। दिल हर आहट पर ठहर जाता है, हर गुजरते पल से यही कहता है कि शायद अब वो सामने आ जाए। मोहब्बत में कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका इंतजार होता है।

जहां आरा फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पठान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। इसे लिखा ऐश कंवल ने और संगीत दिया जिमी ने। जब कोई दिल में गहराई से बस जाता है तो फिर आसपास की दुनिया धीरे धीरे धुंधली लगने लगती है। हर बात, हर रास्ता, हर खामोशी उसी की याद से जुड़ जाती है। इंसान लोगों के बीच रहकर भी कहीं भीतर अकेला हो जाता है, जिसे उसकी सारी दुनिया सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट आई हो।

आसमान फिल्म का गाना आपने सुना सीएच आत्मा की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। ये दुनिया भी अजीब है, कभी छोटी सी मोहब्बत को ठुकरा देती है और कभी दिखावे को सर आंखों पर बिठा लेती है। इंसान जितना लोगों को समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। शायद इसीलिए सुकून अक्सर भीड़ में नहीं अपने ख्यालों और चंद सच्चे रिश्तों में मिलता है।

सगाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और तलत की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सुहागन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। किसी का साथ इतना अजीज होता है कि उसकी मुस्कान में सुकून और उसकी मौजूदगी में पूरी दुनिया नजर आने लगती है। तब मोहब्बत सिर्फ चाहत नहीं रहती, दिल की सबसे खूबसूरत इबादत बन जाती है।

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

भक्ति फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। सुहानी चांदनी रातें अक्सर दिल को ऐसी बेचैनी दे जाती हैं कि नींद भी आंखों के पास आकर ठहर जाती है। ठंडी हवा, खामोश गलियां और यादों में धुली कोई मीठी सी आवाज रात को और भी लंबा बना देती है। ऐसे लम्हों में इंसान सोना नहीं चाहता, बस उन एहसासों को चुपचाप जीते रहना चाहता है।

अनुरोध फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि वक्त गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें, उनकी हंसी और उनका एहसास दिल में कहीं ठहर जाता है, और कुछ लोग तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आते हैं, मिलते हैं, फिर धीरे धीरे यादों से उतरते चले जाते हैं। शायद फर्क रिश्तों का नहीं, एहसास की गहराई का होता है।

मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज में। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:30 और ठीक 6 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना, मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों को मेरे सुरों में बसा लो, जैसे कोई मीठी धुन धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आवाज का हर एहसास मेरी खामोशियों को भी गीत बना दे, और फिर जिंदगी बस एक खूबसूरत सा साज बनकर रह जाए।

चेतना फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इन शब्दों में जैसे पूरी दुनिया की सादगी और गहराई समाई हुई है। जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो पल अपने हों, जिन्हें किसी अपने के साथ महसूस किया जा सके, उन्हें खुलकर जी लेना चाहिए।

वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 44 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने क्षेत्रीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेवे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके एहसास से जुड़े होते हैं। इस गीत में मोहब्बत की वो सादगी है जो दिल को बिना शोर किए छू जाती है, और ये गीत है एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्म राजकुमार से। ये फिल्म आई थी 1964 में, तुमने पुकारा और हम चले आए। सिर्फ एक गीत नहीं, किसी के लिए बे इंतहा चाहत का एहसास है। जब अपना कोई दिल से पुकारे तो फासले मायने नहीं रखते, बस कदम खुद ब खुद चल पड़ते हैं। ये गीत याद दिलाता है कि सच्चा प्यार इंतजार नहीं करता, बस पुकार सुनकर चला आता है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उनमें से ही ये भी नगमा है, तुमने पुकारा और हम चले आए। बेहद खूबसूरत है नगमा, मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए खास तौर से। तो आइए इसी नगमे के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। बेहद खूबसूरत ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और कोशिश भी यही करते हैं कि ये नगमे हमेशा हमारे दिल में बसे रहें और यूं ही हम भी उसे प्यार करते रहें। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में अगले नगमे के साथ। और अगला नगमा बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला। कहते हैं कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, नजरों से शुरू होते हैं। जैसे तुम्हारी आंखों में कोई अपना सा

जहां दिखता है, जहां हर खामोशी एक बात कहती है और हर मुस्कान दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आंखों में देखना ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो और वो दुनिया की सारी आवाजें बस एक एहसास में बदल गई हों। अगर मोहब्बत का कोई सबसे खूबसूरत पता होता तो शायद वो तुम्हारी आंखें होती, जहां दिल हर बार खोकर भी खुद को पा लेने की कोशिश करता है। बिल्कुल इस नगमे की तरह। और ये नगमा है गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में फिल्म प्यासा से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस बेहद खूबसूरत महफिल हमराही में। और आज के इस हसीन रात में मैं हूं आपका हमराही, आपका दोस्त, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, जिसमें गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत नगमे बना करते थे और एक गीत को बनने में कई कई दिन लग जाया करते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक इतने विस्तार से नहीं हम लोगों के दरमियान पहुंचे थे कि हम आज की तरह उन गीतों को तैयार कर पाए। मगर वो दौर था जिसने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया, सिर्फ गीतों के जरिए ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी इन गीतों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किए। और शायद इसीलिए ये नगमे हमारी जिंदगी से जुड़ गए और इन सब के बीच एक सबसे खूबसूरत एहसास जो हम लोगों के लिए है वो है प्यार, मोहब्बत। प्यार शायद वही होता है जब किसी एक इंसान के लिए इंसान खुद को बदलने लगे। तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, किसी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। तुम्हारे प्यार में जाने कितने रंग उड़ लिए हमने, कभी बेवजह मुस्कुराना सीखा तो कभी तुम्हारी यादों में घंटों खो जाना। ये दिल भी कितना अजीब है ना, तुम्हारे लिए हर बार कुछ नया बन जाने को चाहता है, बस तुम्हारे करीब रहने की एक छोटी सी वजह के लिए। अगर कोई पूछे मोहब्बत कैसी होती है तो बस इतना ही कहना, किसी एक शख्स के लिए खुद को हर रोज नए अंदाज में पा लेना, वही मोहब्बत है।

जदे फिल्म का यह नगमा था और ये आवाजें थी गीता दत्त और मन्ना डे साहब की। ये फिल्म आई थी 1964 में। इस फिल्म में जो म्यूजिक दिया था वो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, हम सब के बहुत ही प्यारे सचिन देव वर्मन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप सभी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, और इस हमराही की महफिल में आप भी हमारे हमराही बनकर चल रहे हैं इस सफर पर, क्योंकि यह सफर इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है। क्या बस इस सफर पर यूं ही चलते रहना चाहते हैं हमारे हमराही बनकर, और हम भी आपके हमराही बनकर यूं ही बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ आपके कदम से कदम मिलाकर यूं ही चलते रहेंगे ऐसे ही नगमों के साथ। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत

फिल्म सहरा से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रामलाल ने।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी इस पसंदीदा महफिल में जो आपके दिल के बेहद करीब है और गोल्डन एरा के वो सुनहरे वो खूबसूरत नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1966 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जिसमें मुख्य किरदार निभाया था विश्वजीत, राजश्री, प्रेम चोपड़ा, रहमान, जैन, राज मेहरा, दुर्गा कोटे, राजेंद्र नाथ, असित सेन वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रवि साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सगाई फिल्म का यह नगमा था मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में यह फिल्म आई थी 1966 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था हम सबके बहुत ही प्यारे रवि साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में ऐसा कोई आपकी जिंदगी में मिल जाए जो आपके दिल के इतना करीब हो जाए कि बस सिर्फ आप उसी के बारे में सोचते रहें। शायद ऐसे ही नगमे हैं इस हमराही की महफिल में और आपको जरूर उन पुराने दिनों की याद दिलाएगा। ये ऐसा नगमा है कि कई बार आप उस दौर में चले जाते हैं जब आपकी जिंदगी में भी कोई था। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल में चुपचाप जगह बना लेते हैं, बिना दस्तक दिए, बिना शोर मचाए। तुमसे मिलना भी कुछ ऐसा ही था जैसे किसी अधूरी दुआ को उसका जवाब मिल गया हो। तुम्हारी हंसी में सुकून है, तुम्हारी बातों में अपनापन, और तुम्हारे साथ जैसे हर मौसम थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। कभी सोचा नहीं था कि किसी का होना इतना खास लग सकता है, लेकिन अब दिल हर धड़कन में बस एक ही बात कहता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में अगर किसी को चुनना हो तो हर बार सिर्फ तुम्हें चुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम हमें जरूर बताइएगा अपने पैगामात के जरिए। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और ये नगमा है 1967 में आई फिल्म नाइट इन लंदन। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने, और आवाजें हैं दत्ता जी और महेंद्र कपूर साहब की।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और हमराही में आज हूं मैं आपका हमराही, आपका दोस्त, आपके साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप भी यूं ही हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ हम भी हाजिर हैं आपके लिए इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और ये महफिल इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है कि वो हमें सीधे गोल्डन एरा के उस दौर में लेकर चली जाती है, क्योंकि ये दौर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। ये दौर एक ऐसा दौर था जब फिल्में हमारे समाज का आईना हुआ करती थी और फिल्में ऐसा प्रभाव डालती थी समाज पर कि बस सब कुछ ऐसा लगता था कि हमारे इर्द गिर्द चल रहा हो। फिल्में जब बनती थी तो हकीकत से काफी करीब हुआ करती थी, और भले ही वो दौर बहुत पीछे छूट गया हो, लेकिन जब भी

बिल्कुल वैसा ही है। ऐसी ही एक फिल्म थी जो आई थी 1957 में, और वो फिल्म थी नया दौर। एक दौर एक गांव को शहर बनने की तरफ किस तरीके से लेकर के जाता है और किस तरीके से वहां पर चीजें बदलती जाती है, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, शमशाद बेगम और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। आप ये कह सकते हैं कि ये एक कव्वाली है तो भी गलत ना होगा। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

0: आशा जी और शमशाद बेगम के गाए इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को आप दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं रहूंगा आपके साथ लेकर अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।

0: ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की पहली भारत यात्रा शुरू करेंगे। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वे कोलकाता में मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो के विक्टोरिया मेमोरियल जाने की भी संभावना है। रविवार को श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को वे आगरा और जयपुर की यात्रा करेंगे और फिर मंगलवार सुबह नई दिल्ली लौटेंगे, जहां वे भारत द्वारा आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसी बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 10 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है जब किसी का साथ सिर्फ साथ नहीं सुकून बन जाए और प्यार हो तो जिंदगी मुश्किलों में भी मुस्कुराने की वजह दे देती है। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां प्यार और अपनापन कदम कदम पर साथ हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो जीने का अंदाज ही बदल देते हैं, हर दिन एक नई कहानी लिखती है और प्यार उसे खूबसूरत बना देता है। जब दिल में मोहब्बत और आंखों में उम्मीद हो तो जिंदगी और मौसम में हसीन लगती है। सही इंसान का साथ मिल जाए तो फिर साधारण आम सी जिंदगी भी किसी खूबसूरत गीत जैसी लगती है, जैसे फिल्म उजाला का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं, अरुणिमा के सफर का आगाज करते हैं इसी नगमे के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर बेहद खूबसूरत महफिल अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में

किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में नगमा था फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल से। ये फिल्म आई थी 1981 में और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। अरुणिमा की इस महफिल में हम बात जिंदगी से जुड़ी हुई जिंदगी की बातें करते हैं। जिंदगी में भले ही कितनी मुश्किल आता है भले कितनी परेशानियां हैं लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी के साथ अगर आप प्यार से बढ़ाते हैं तो बस जिंदगी खूबसूरत बन ही जाती है। कहते हैं सही इंसान का साथ मिल जाए तो साधारण सी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत बन जाती है। अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कोई मुस्कुराने की वजह बन जाए वही सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वही सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। जहां प्यार सच्चा हो वहां जिंदगी हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आती है और इसी उम्मीद के साथ हम भी जिंदगी को बड़ी ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही चुलबुला सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म शागिर्द से। ये फिल्म आई थी 1967 में जिसमें बेहद खूबसूरत कलाकारों ने काम किया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके नगमे भी बनाए गए थे। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जॉय मुखर्जी IS जौहर नासिर हुसैन अचला सचदेव मदनपुरी असित सेन AK हंगल साहब शिवराज और शेट्टी वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा मोहम्मद रफी साहब और जोगिंदर की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आपके लिए।

तुम्हें हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 10 सेकेंड। अरुणिमा की बेहद खूबसूरत महफिल जिसमें हम जिंदगी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की, फिल्मों के नगमों की और उन नगमों में बसी जिंदगी की। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन जब दिलों का रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद फिर से मिल जाते हैं। ये दुनिया इस नगमे के मुताबिक बहुत ही छोटी सी है और अनजाने रास्ते हैं और इस उम्मीद में हम जीते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमारी मुलाकात हो जाए। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं पर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं और कुछ लोग बस एक बार मिलकर भी दिल में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं। जिंदगी का सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ में खूबसूरत यादें हों तो हर मोड़ थोड़ा आसान लगने लगता है। मुझे अच्छा लगता है ये सोचकर कि इस छोटी सी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे रास्ते फिर से मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वो बस वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। जैसे हमारा और आपका रिश्ता बेहद गहरा, बेहद प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के जरिए, अपने ईमेल्स के जरिए। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और जल्दी से आप जहां भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काम, आप अपने ईमेल के जरिए अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। तब तक मैं आपको वही नगमा सुनवाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। रंगोली फिल्म का यह नगमा किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

जी हाँ, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। बहुत ही छोटा सा ये नगमा और बहुत ही खूबसूरत बातें। कहते हैं कि बातें कम अल्फाज में भी बहुत कुछ कह जाती हैं, छोटी सी लाइनों में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। ऐसा ही ये नगमा था कि छोटी सी ये दुनिया है, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, फिर पूछेंगे हालचाल क्या है, कैसे हैं और अब कैसे रहें। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरीके से कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल को सुकून देते हैं। जैसे किसी अपने का हाथ थाम कर ये यकीन होना कि अब हर मुश्किल में कोई तो हमारे साथ खड़ा है। तुम्हारा साथ किसी खूबसूरत दुआ जैसा है जो हर दिन थोड़ा और हसीन बना देता है। अब खुशियां बड़ी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती है, और ऐसा तब होता है जो जब आपका अपना कोई आपके दिल के बेहद करीब होता है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे खूबसूरत एहसास यही दिया कि जब कोई दिल से अपना बन जाए तो हर मौसम, हर रास्ता, हर दिन

हर वक्त बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है, बहुत ही प्यारा लगने लगता है। बिल्कुल इस नगमे की तरह जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म हनीमून से। यह फिल्म आई थी 1973 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है, मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, जिसको बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने और गीत लिखे हैं योगेश ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। और अरुणिमा में बातें जिंदगी की, और जिंदगी में तमाम मुश्किलात के बावजूद किस तरीके से इसको आगे बढ़ाई जाए उसकी, ऐसी ही बातें जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है जब हमारा कोई अपना हमारे साथ होता है। लेकिन कहते हैं जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं होती, जिंदगी वो होती है जहां किसी की मुस्कान में अपनी खुशी मिलने लगे, जब कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ हर मुश्किल हल्की लगने लगे और हर खुशी दोगुनी। तो समझ लेना चाहिए कि जिंदगी ने आपको सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया है। प्यार सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ हर दिन को बेहतर बनाने का एहसास है, जहां उम्मीद हो, सम्मान हो और एक दूसरे के लिए प्यार हो और साथ निभाने का वो जज्बा हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर आप ना मिलते तो शायद जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब लगता है सच्चा जीना वही है जहां दिल में प्यार हो और साथ में कोई अपना जो हर दिन को जीने की नई वजह दे जाए। बिल्कुल इस अगले नगमे की तरह जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, 1971 में आई फिल्म अधिकार। ये बेहद खूबसूरत फिल्म जिसके गीतों को लिखा है रमेश पंत ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। उसी फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपके लिए।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो

0: तो छोड़ जाएंगे, हाय हाय बनेंगे किसी के, किसी के होके जाएंगे, बनेंगे किसी के, किसी के होके जाएंगे।
1: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये नगमा था फिल्म लाट साहब से। इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस

0: के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: इस बीच दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। वे कोलकाता में मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो का विक्टोरिया मेमोरियल जाने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो रविवार को विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में पंप एंड डंप रैकेट चलाने के आरोप में कई अपंजीकृत फाइन इन्फ्लुएंसर और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में जारी बाजार नियामक ने कहा है कि इन संचालकों ने स्मॉल और मिड कैप शेयरों को खरीदा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुझाव साझा करके कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और बाद में मुनाफे पर शेयर बेच दिए। इससे खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी ने कहा कि आरोपियों ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में चल रहे इबोला के मौजूदा संक्रमण से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को अत्यंत उच्च कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोइम घेब्रेयेसस ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 82 मामले और 7 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन संक्रमण के इससे कहीं अधिक व्यापक होने की संभावना है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 6 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और खुलूस आदाब। और दोस्तों, आज हम एक नई सुबह में कदम बढ़ा चुके हैं, एक नए दिन की शुरुआत करने ही वाले हैं, क्योंकि आज हम एक नए दिन में कदम, जैसे मैंने पहले बताया, रख चुके हैं। तो हर काम की शुरुआत हम खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से करते हैं। हम जो भी नया काम करते हैं, नए दिन की शुरुआत हम करते हैं, तो उसी ईश्वर के नाम से करते हैं, उसी भगवान के नाम से करते हैं, उसी खुदा के नाम से करते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ करने वाला है। कहते हैं कि खुदा की रहमत अक्सर खामोशी में मिलती है, बस दिल में यकीन होना चाहिए। और जब इंसान थक जाता है, तब उस ईश्वर को याद करता है और वही ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है। ईश्वर देर करता है, मगर बेहतर देने के लिए करता है। हर दुआ तुरंत पूरी नहीं होती, कुछ दुआओं का खुदा सही वक्त पर जवाब देता है, सही वक्त मुकर्रर कर रखा है। इसीलिए ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और तभी हम कोई नया काम करते हैं। इसीलिए हम भी आज के इस नए दिन की शुरुआत उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम से करेंगे। फिल्म पवित्र पापी के इस बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ आवाज है मोहम्मद रफी साहब की।

अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे। पवित्र पापी फिल्म का ये नगमा रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। और दोस्तों, जैसा कि इस नगमे में बताया गया है, बेहद खूबसूरत ये नगमा। और हम हर काम, हम भारतीयों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन तमाम मजाहिब होने के बावजूद, अलग अलग मजाहिब होने के बावजूद, हम सिर्फ और सिर्फ हर काम उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं, उस खुदा के नाम से शुरू करते हैं। उसी तरीके से हम हर दिन की शुरुआत भी उन्हीं के नाम से करते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ करने वाला है। और हर सुबह हम उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, फिर जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, वो एक नया मौका लेकर आती है, फिर से मुस्कुराने का, फिर से कोशिश करने का और खुद पर भरोसा करने का। कल कैसा था ये जरूरी नहीं, आज कैसा होगा ये हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए कोशिश हम यही करते हैं कि हमारा हर दिन अच्छा हो, खूबसूरत हो, प्यारा हो और खुशियों से भरा हो। सूरज हर रोज ये सिखाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी वापस लौटती जरूर है। इसीलिए आज की सुबह को शिकायतों से नहीं, शुक्रिया से शुरू करें। जो है उसकी कदर करें और जो चाहिए उसके लिए उम्मीद के साथ मेहनत करें। यकीन माने, हर नई सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। बस दिल में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इस नगमे की तरह बेहद खूबसूरत यह नगमा फिल्म अय्याश से आवाज है यशोदास की।

बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप भी जल्दी से जग जाइए, देखिए परिंदे भी जग चुके हैं और वो चहचहाने भी लगे हैं।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:27:15 महफिल आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जिसमें जिंदगी की बातें और जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाए उसकी बातें। मुस्कुराहट के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे आसपास भी वही मुस्कुराहट बिखरी हुई होती है। कहते हैं कि माना सफर थोड़ा मुश्किल है जिंदगी का, लेकिन रास्तों में थकान भी बहुत होगी। कुछ मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां लगेगा कि अब आगे बढ़ना आसान नहीं, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बाद भी हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है बेहद खूबसूरती के साथ, बहुत ही प्यार से। लेकिन हर मुश्किल रास्ता किसी खूबसूरत मंजिल की तैयारी भी होता है। जिंदगी कभी सिर्फ आसानियों से नहीं बनती, ये तो उन हौसलों से बनती है जो गिरकर भी मुस्कुराना जानते हैं। और याद जरूर रखें, धीरे चलना हारना नहीं होता, और थोड़ा रुक जाना मंजिल से दूर हो जाना नहीं होता। बस खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो आज मुश्किल लग रहा है कल वही सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाएगी। माना सफर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और जब इरादे सच्चे हो तो रास्ते भी एक दिन मुस्कुराने लगते हैं और आपको राह दिखाने लगते हैं इस नगमे की तरह।